सुप्रभात श्रोताओं, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 आषाढ़ माह की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 जुलाई सन 2026। इस स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं, आइए अब सुनते हैं समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का

0: भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस एनसीडी और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं आज का चिंतन, ध्यान का महत्व। वाचन स्वर है सुशील त्यागी के।
2: हम अपना अधिकांश समय मात्र सोचते हुए व्यतीत करते हैं। हम जानते हैं कि हमारी समस्त गतिविधियां हमारे मस्तिष्क द्वारा परिचालित होती हैं। आज हम आपसे कहते हैं कि आप अपने सब काम बंद कर दीजिए और अपने दिमाग से परिचय प्राप्त कीजिए। दिमाग से संपर्क करने का मतलब है हम अपने सब काम बंद कर दें और शांतिपूर्वक उसके पास बैठ जाएं। सचेतन होकर मस्तिष्क से संपर्क को ध्यान लगाना या मेडिटेशन कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि गतिविधि का विपरीत या विलोम ध्यान लगाना है। मस्तिष्क बड़ा चंचल है, हर पल कुछ न कुछ करता रहता है। हमारे शरीर के अंगों के संकल्प के अलावा उहा पोहो उखाड़ पछाड़ करता रहता है। इसकी चंचलता की ओर इंगित करते हुए गांडीवधारी महारथी अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा था, हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। उत्तर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, निसंदेह मन बड़ा चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है।

बाहरी गतिविधियों को रोकना वैराग्य का प्रथम सोपान है। आपने इस सोपान को पार किया है, अब आप इस स्थिति में हैं कि विश्वास कर सके कि हमारे पास मस्तिष्क या दिमाग नाम की वस्तु है। मस्तिष्क से परिचय होने की स्थिति में हम अपने कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने लगते हैं, वरना हमारा दिमाग हमें चाहे जिधर ले जाता है और चाहे जिस कार्यक्रम के अनुसार कार्य कराता रहता है। इसको आप सुनामी लहरों का भाई बंधु समझ लीजिए। हम जब ध्यान की स्थिति में होते हैं तो हमारे मन में बसने वाले विचार प्रकट होने लगते हैं। हमको विदित होता है कि हमारे पास मानसिक विकारों का कितना बड़ा खजाना है, परंतु धीरे धीरे उनका आवेग कम होने लगता है। यदि हम एक निश्चित समय पर ध्यान करने का अभ्यास करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारा मस्तिष्क हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है। एक निश्चित समय पर ध्यान द्वारा उत्पन्न कंपन अपने स्वभावानुसार पुनरावृत्ति करते हैं और अनुकूल वातावरण का सृजन कर देते हैं। समय और अभ्यास के साथ ध्यान की अवधि बढ़ती जाती है, हमारा मस्तिष्क मनमानी करना कम कर देता है। ध्यान की प्रक्रिया दिमाग के साथ हमारी मित्रता करा देती है, वो

0: सकता है। सब कुछ स्वाभाविक रूप से करते हुए केवल अपने दिमाग से दोस्ती करके अपनी ऊर्जा का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार करना है। याद रखिए, सच्ची दोस्ती की पहचान है दोनों के मध्य सुखद शांति।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन ध्यान का महत्व, वाचन स्वर थे सुशील त्यागी के। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मातृ वंदना के साथ।

विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, बुद्धि और ज्ञान के दाता भगवान श्री गणेश जी हर हृदय में विराजमान है। जब भी हम सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं, वो हमारी हर बाधा को दूर कर देते हैं और जीवन को सुख, शांति और सुकून से भरते हैं। आइए सुमिरन करते हैं भगवान श्री गणेश का।

नहीं बल्कि मर्यादा, सत्य, करुणा और धर्म का जीवंत संदेश है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, विनम्रता और कर्तव्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब जब मन विचलित हो, श्री राम का स्मरण भीतर विश्वास का दीप जला देता है।

जहाँ शिव का वास होता है वहाँ भय नहीं केवल विश्वास होता है। जहाँ ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती है वहाँ मन के सारे संशय स्वयं शांत हो जाते हैं।

0: जो दिन प्रभु के नाम से शुरू होता है वो हर मोड़ पर सुकून देता है।
1: पलक झपकते ओ पलक झपक

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति।

श्री रामचरित मानस की रचना प्रक्रिया में गोस्वामी तुलसीदास ने मानस रूपी एक अद्भुत रूपक की कल्पना की है। कहते हैं, जिनके पास श्रद्धा का पाथेय नहीं है और ना ही जिन्हें संत जनों का साथ प्राप्त है, जिनके हृदय में भगवत प्रीति नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये मानस सर्वथा अगम्य अप्राप्य है। यदि कोई कष्ट उठाकर इस सरोवर तक पहुंच भी जाए तो उसे अज्ञान का ज्वर धर दबाता है, जिसके कारण वो इस पवित्र सरोवर में स्नान से वंचित रह जाता है। जो इससे वंचित रहा, जिसने कभी इसके पवित्र जल का पान नहीं किया, वो सरोवर की निंदा के अतिरिक्त और क्या कर सकता है। लेकिन जिन पर प्रभु की अनुकंपा है, उन्हें यह व्याधि नहीं छू पाती। वे दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों में भी नहीं जलते। इस पवित्र सरोवर से रामकथा रूपी कविता निकली है। इस कविता रूपी नदी में प्रभु का यश रूपी जल प्रवाहित होता है। इस कीर्ति नदी का नाम है सरयू, जो सबके लिए सर्वदा मंगलकारिणी है। वेदमत और लोकमत इसके दो किनारे हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, गाए कलाकार थे वाणी जयराम। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा कार्यक्रम स्पॉटलाइट। रात 10 बजे आज आप सुनेंगे कार्यक्रम कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि होंगे मीरा शर्मा, श्री दीपक अरोड़ा और श्री राकेश जैन। कार्यक्रम शैल संगीत में प्रातः 7:30 पर सुनेगा शंकर उप्रीति के गाए कुमाऊनी लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा 8:30 पर। कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत आप सुन सकेंगे 9:00। कार्यक्रम लोक संगीत में प्रातः 10:35 पर आज आप सुनेंगे नीलम सबरवाल के गाए रूहिल खंडी लोकगीत। श्रोता सुनेंगे अपने फरमाइशी गीतों पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश, समय वही 11:00। कार्यक्रम सुगम संगीत में डॉक्टर मधुरलता भटनागर के गाए भजन आप सुनेंगे 12:12 पर। दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम घर गृहस्थी में श्रीमती रीनू कोठारी की वार्ता का विषय रहेगा बदलते परिवेश में बच्चों का लालन पालन। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे 12:01 पर।

कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में शाम 4:02 पर आज आप सुनेंगे पार्थो रॉय चौधरी का संतूर वादन। आप प्रस्तुत करेंगे राग हंस ध्वनि। शाम 5:10 पर युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। पर्वतीय अंचलों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत आप सुन सकेंगे शाम 5:45।

0: किसान साथी सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत शाम के 7 बजे। शाम 7:50 पर प्रसारित किया जाएगा क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति ज्ञान दर्पण। रात्रि 8 बजे श्री कमल किशोरी डुकलान की हिंदी वार्ता का विषय रहेगा लोक परंपराओं में भारतीय ज्ञान। फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 10:02 पर, दोपहर 1:15 पर, अपराह्न 3:02 पर, कार्यक्रम गाने नए तराने में शाम 7:40 पर, रात्रि 8:30 पर और रात 9:30 पर। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर और कार्यक्रम एक कलाकार के अंतर्गत फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 4:30 पर। कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगे अभिनेता रणबीर सिंह। ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: प्रवाची का निधि ही झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्यारभ्य इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देशानां षड् दिवसीय यात्रायै प्रस्थितः। अस्याः त्रिदेशीय यात्रायाः प्रथमे चरणे असौ अद्य इंडोनेशिया देशं प्राप्स्यति। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः इयं चतुर्थ इंडोनेशिया यात्रा वर्तते। अत्रावधेयं यत् स्वयात्रावधौ प्रधानमन्त्री इंडोनेशिया देशस्य नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिना प्रवोवो सुबियांतो इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तालापं विधास्यति। सन्धेः प्रगतिमालक्ष्य समीक्षां च करिष्यति। तदीय मुख्याः आधिकारिकाः कार्यक्रमाः जकार्ता नगरे भविष्यन्ति। परं असौ योग्यकर्ता इति कञ्चन ऐतिहासिकं सांस्कृतिकं च नगरम् अपि गमिष्यति। जकार्तानगरे प्रधानमन्त्री सुविशालं भारतीयप्रवासीसमुदायं सम्बोधयिष्यति। केन्द्रीय गृह एवं सहकारितामन्त्री अमितशाहः अद्य नवदेहल्याम् आयोजितं सहकारितामन्त्रालयस्य पञ्चमं स्थापनादिवससमारोहम् अलङ्करिष्यति। मन्त्रालयेन ज्ञापितं यत् अयं समारोहः सहकारात् समृद्धिः इति राष्ट्रिय संकल्पनामाधृत्य विधीयते। अस्मिन् मंगलप्रसंगे श्रीशाहः अनेकासां प्रमुखाभिनव परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनं च विधास्यति। एतासु योजनासु 32,200 अन्नसंग्रह भण्डारानां लोकार्पणं, सहकार वनस्य भूमिपूजनं, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र राज्ययोः ट्रिशु कल्चर इति सुविधायै भूमि पूजनम्, राष्ट्रिय सहकारी डेटाबेस NCD 3.0 इत्यस्य भौगोलिक चिन्हांकन दूरभाषानुप्रयोगस्य च आरम्भः। जम्मू कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेशे प्रचलन्त्यां वार्षिक श्री अमरनाथजी यात्रायां श्रद्धालूनां महत्सम्मर्धः दृश्यते। यत्र यात्रायाः प्रथमेषु त्रिषु दिनेष्वेव 650,000+ जनाः पवित्रगुहामन्दिरे समागताः। रविवासरे प्रायः 25,000 भक्तैः बाबा बर्फानी इत्यस्य दिव्यदर्शनं विहितम्। इतः पूर्वं द्वितीयदिने प्रायः 20,000 जनाः, उद्घाटनदिवसे च 12,000+ तीर्थयात्रिणः भगवतः दर्शनं लब्धवन्तः। अनेन सहैव जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा श्वः नुवान पहलगाम इति आधारशिबिरस्य निरीक्षणं विधास्यति। सममेव ह्यः तत्र तीर्थयात्रिभ्यः कल्पितानां व्यवस्थानां प्रबन्धानां च सूक्ष्म पुनरीक्षणं तेन कृतम्। देशस्य विशालेषु भूभागेषु प्रावृत् स्थितिः अत्यधिकं तीव्रीभूता सञ्जाता, येन हि अतिवृष्टिः मेघगर्जनं विद्युत्पातः प्रचण्डचक्रवाद्वायुः च प्रचलति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्षु दिनेषु गुजरात राज्यस्य कतिपय भागेषु हरियाणा पंजाब राजस्थानेषु च प्रावृत्स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। विभागेनाद्य छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश राजस्थान कर्नाटक उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अपरतः आगामिषु द्वित्रिदिनेषु राष्ट्रीय राजधान्यां दिल्ल्यां उत्तर प्रदेशे पंजाबे चंडीगढ़ क्षेत्रे विकीर्ण रूपेण वृष्टिः संभाव्यते। विम्बल्डन टेनिस प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सर्बिया देशस्य लब्ध प्रतिष्ठेन क्रीडकेन नोवाक जोकोविचेन रूस देशस्य रोमन सफ्यूलिनं पराजित्य पुरुषेकल क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। इतः परम् असौ फेलिक्स नगरे उत डेवी वोचेस इत्यनेन सह क्रीडां करिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रम्बनन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सत्र में सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य हितधारक उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ भी शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास को बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़त दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। ब्राजील की हार के बाद नेमार जूनियर ने संन्यास की घोषणा कर दी। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे अब तीसरी टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his 3-nation tour, he will reach Indonesia today on a 3-day visit. Mr. Modi will hold bilateral discussions with Indonesian President Prabowo Subianto and review the progress made in the partnership. His main engagements will be in Jakarta, but the Prime Minister will also visit a cultural and historic city, Yogyakarta. In Jakarta, Mr. Modi will address a large gathering of the Indian diaspora. In the second leg of his tour, the Prime Minister will reach Melbourne on the 8th of this month on a 3-day visit, where he will participate in the 3rd India-Australia Annual Summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. On the last leg of his visit, Mr. Modi will be in New Zealand from 10th to 11th of July. He will hold talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. India will chair the 9th session of the Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy in Geneva, Switzerland. The session is being organized by the United Nations Trade and Development from today to Wednesday. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the session will bring together member states, international organizations, consumer protection authorities, academia, and other stakeholders to deliberate on emerging issues in consumer protection law and policy. Secretary Department of Consumer Affairs Nidhi Khare will chair the session. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has convened a meeting of its members today to deliberate on several important administrative and financial matters, including the findings of the special investigation team probing the counting of donations received by the trust. We have a report.
4: The agenda of the meeting includes consideration of the resignation letters submitted by General Secretary Champat Rai and Trustee Dr. Anil Mishra. Members will also be briefed on the interim report of the SIT regarding the counting of donations received through the trust's donation boxes. The meeting will further deliberate on arrangements related to the future management of the Ram Temple. Another key item on the agenda is the presentation and approval of the unaudited income and expenditure statement, balance sheet and other financial documents for the financial year 2025-26. Sushil Chandra Tiwari, Akashvani News, Lucknow.
3: The nation pays homage to Bharatiya Janasangh founder Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Ministry of Culture, in association with the West Bengal government, will organize a program in Kolkata to mark the occasion. The program will be organized as part of the 2-year official commemoration of the 125th birth anniversary of Dr. Shyama Prasad Mukherjee, announced by the ministry last year. Union Home Minister Amit Shah will preside over the program along with Union Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat and West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari. Union Minister of Cooperation Amit Shah will attend the 5th Foundation Day ceremony of the Ministry of Cooperation in New Delhi today. The ministry said the ceremony will be held in line with the vision of Sahkar Se Samriddhi. On the occasion, Mr. Shah will lay the foundation stone and inaugurate several key initiatives. Assam Cabinet has approved a series of major policy decisions aimed at strengthening emergency services, promoting industrial growth and improving governance ahead of the commencement of budget session of the State Assembly today.

मुगले आजम फिल्म से सुनवाते हैं आपको अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत का शकील बदायूनी और संगीत है नौशाद का।

रुदाली फिल्म से आइए सुनते हैं ये अंतिम गीत भूपेन हजारिका की आवाज में। गुलजार के बेहतरीन बोल भूपेन हजारिका का संगीत।

0: कार्यक्रम चित्र रागिनी अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रागिनी बिंजोला।

0: पहले मुख्य समाचार। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राज्य में सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाने का आह्वान किया। देहरादून जिले के सहसपुर विकास खंड की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने पेश की आत्मनिर्भरता की नई मिसाल। आईटीबीपी तक पहुंचा रही हैं ऑर्गेनिक सब्जियां। भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजित किए गए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का परिणाम जल्द घोषित किया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाने का आह्वान किया है। देहरादून में सहकारिता दिवस के उपलक्ष्य में सहकार भारती द्वारा आयोजित एमपैक्स नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सहकारिता केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं बल्कि सेवा, स्वावलंबन और ग्रामीण विकास का सशक्त माध्यम है। एमपैक्स ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ उनकी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा मिली है और उत्तराखंड सरकार भी प्राकृतिक खेती, बागवानी और कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। साथ ही राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए सहकारिता को सशक्त बनाने के साथ साथ मिलेट मिशन को भी प्राथमिकता दे रही है। देहरादून जिले के सहसपुर विकास खंड की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। समूह की महिलाएं स्थानीय किसानों से ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदकर उन्हें सीमा द्वार स्थित आईटीबीपी के जवानों तक पहुंचा रही हैं। जिला प्रशासन की इस पहल से ग्रामीण किसानों को जहां उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को घर बैठे रोजगार और आय के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। जिला परियोजना प्रबंधक रीप सोनम गुप्ता ने बताया कि उड़ान कोलेस्ट्रॉल लेवल फेडरेशन की महिलाएं आईटीबीपी को उनकी मांग की 25% ऑर्गेनिक सब्जियां उपलब्ध करा रही हैं।
1: हमारा एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन है सहसपुर ब्लॉक का, वो ये कार्य कर रहा है कि आईटीबीपी की जो टोटल उनकी रिक्वायरमेंट है उसका 25% सप्लाई सब्जियों की हमारी सेलेब द्वारा आपूर्ति की जा रही है और अप्रैल से ये कार्य शुरू हुआ है और अभी तक हमारी 5 बार वो सप्लाई कर चुके हैं, आपूर्ति कर चुके हैं और उनका लगभग इसमें प्रॉफिट भी 1,000 से 2,000 रुपये पर आपूर्ति पे हो रहा है, तो एक अच्छा उनको आजीविका का साधन मिला है। हमारा सीएलएफ जो है अपनी समूह की महिलाओं से या जो अन्य किसान वहाँ पे हैं उनसे सब्जियाँ, ताज़ी सब्जियाँ कलेक्ट करता है और आईटीबीपी को सप्लाई करता है। इससे हमारे आईटीबीपी वालों को एक अच्छी मतलब सब्जी ताजी भी मिलती है और हमारे जो महिलाएं हैं सीएलएफ से जुड़ी हैं उनको भी रोजगार मुहैया कराया जा रहा है।
0: मुख्य उद्यान अधिकारी डीके तिवारी ने बताया कि अब तक 1,00,000 रुपए से अधिक की सब्जियां आईटीबीपी को भेजी जा चुकी हैं।
2: इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि सीधे किसानों के पास एक अच्छा रेट जा रहा है और ये जो रेट तय हुए हैं हमारे वो हुए हैं पूरे 1 साल के लिए, तो कभी रेट अप एंड डाउन होता रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि टमाटर का रेट जैसे जो किसान को इस समय मिल रहा है वो 30 रुपया मिल रहा है लेकिन बाहर जो है 60 रुपये में बिक रहा है, लेकिन टमाटर का जो हमारा रेट है जो अनुबंध हुआ है वो 60 रुपया 50 पैसा हुआ, तो किसान को 60 रुपया 50 पैसा मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक तो सुनिश्चित है, उसको रेट पहले से पता है और कहीं इधर उधर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है।
0: भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजित किए गए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का परिणाम अगले 3 से 4 दिन में घोषित किया जाएगा। भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा के अनुसार अभ्यर्थी अपना रिजल्ट भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट में देख सकेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों के केंद्रीय कैटेगरी और जोनल कैटेगरी के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 25 और 26 जुलाई को रानीखेत के सोमनाथ मैदान में आयोजित की जाएगी। इस दौरान अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने सभी दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ उनकी प्रतिलिपि और 20 पासपोर्ट साइज फोटो रखने की सलाह दी गई है। दस्तावेजों के बिना रैली ग्राउंड में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: वर्ष 2026 की कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले दल का पिथौरागढ़ पहुंचने पर पारंपरिक और भव्य स्वागत किया गया। जिला प्रशासन और कुमाऊं मंडल विकास निगम के अधिकारियों ने श्रद्धालुओं का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान ढोल दमाऊं की थाप और छोलिया नृत्य ने माहौल और अधिक भव्य बना दिया। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि पहले दल में देश के विभिन्न राज्यों से आए 49 श्रद्धालु शामिल हैं, जिनमें 15 महिलाएं हैं।
4: टोटल 49 सदस्य इस पहले दल में हैं, जिसमें से 15 हमारी जो हैं वो महिलाएं हैं, और सभी यात्री बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है उत्तराखंड में आके। मैं उनकी यात्रा की मंगल कामना करता हूं और ये कामना करता हूं कि अत्यंत मंगलकारी ये यात्रा उनके लिए रहेगी।
0: तीर्थयात्रियों ने उत्तराखंड में मिले आत्मीय स्वागत के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन का आभार जताते हुए यात्रा को अपने जीवन का सौभाग्यपूर्ण अवसर बताया।
5: ओम नमः शिवाय। मेरा नाम हरिकृष्ण है और मैं 21 ईयर्स ओल्ड हूँ। रिपोर्ट लेक फर्स्ट बैच में हूँ। मैं और मेरे मदर कैलाश यात्रा में जा रही है, और जब हम यहाँ आए तब हमें कैलाश और उसका जितना कितना महत्व है और क्या मतलब लोगों ने क्या क्या योगदान दिए, क्या क्या मीन्स ITBP जो काम कर रही है, आर्मी गवर्नमेंट कह दीजिए, कुमाऊं मंडल कह दीजिए, वो लोग मतलब हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं कि उसको शब्दों में तो आप बयां ही नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: ओम नमः शिवाय। मेरा नाम भूपेश पंत है। बहुत अच्छा लग रहा है जैसा उत्तराखंड में हमारा स्वागत हुआ। मैं पिथौरागढ़ का ही रहने वाला हूँ, पिथौरागढ़ में ही मेरी पढ़ाई वढ़ाई हुई है। बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा स्वागत सत्कार हो रहा है उत्तराखंड में। जैसे कि कहते हैं अतिथि देवो भव, तो वो सार्थक कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी और सारे अधिकारीगण।
0: दल की लाइजनिंग अधिकारी वंदना चौधरी ने बताया कि पहले दल में विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु शामिल हैं और यात्रा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने प्रमुख राष्ट्रीय नवाचार मंच नवाचार मंत्र के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने कहा कि देशभर के नवोन्मेषकों की अत्यधिक रुचि को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि आधिकारिक नवाचार मंत्र पंजीकरण पोर्टल पर अब तक हजारों इच्छुक उद्यमियों और नवोन्मेषकों ने पंजीकरण कराया है। नवाचार मंत्र राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान द्वारा फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर FITT और IIT दिल्ली के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। हिंदुस्तान ने रामनगर में धनगढ़ी पुल के लोकार्पण के समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। समाचार पत्र मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है, गढ़वाल और कुमाऊं की राह होगी आसान। दैनिक जागरण ने पत्राय के विकल्पों की तलाश शुरू, ट्रस्ट की अहम बैठक आज समाचार की सुर्खी बनी है। इस समाचार पर अमर उजाला लिखता है, चढ़ावा चोरी में चंपतराय व अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला आज, विदाई तय। नवोदय टाइम्स ने इस समाचार पर RSS प्रमुख मोहन भागवत के हवाले से लिखा है, दोषियों को सजा के होस बाले के बयान से सहमत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राज्य में सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाने का आह्वान किया। देहरादून जिले के सहसपुर विकास खंड की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने पेश की आत्मनिर्भरता की नई मिसाल। ITBP तक पहुंचा रही हैं ऑर्गेनिक सब्जियां। भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजित किए गए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का परिणाम 3 से 4 दिन में घोषित किया जाएगा। और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नवाचार मंत्र के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वान्ह 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शैल संगीत में शंकर उप्रेती के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

0: रविंद्र, ये बताओ सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
1: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
0: सच में? क्या क्या है उसमें?
1: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
2: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: कार्यक्रम शैल संगीत के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं शंकर उप्रीति के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

कार्यक्रम शैल संगीत में अभी आप सुन रहे थे शंकर उप्रेती के गाए कुमाऊनी लोकगीत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। सुबह के 8 बजने को है। अब समय है समाचार प्रभात और अंग्रेजी में समाचार का, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। वार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
4: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
2: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
5: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
2: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
6: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
7: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और मोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
8: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

0: मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
1: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया और फीफा विश्व कप में पांच बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया

गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम, पैलाग श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार देहरादून लेकर हाजिर हूं मैं आज आपकी दोस्त और होस्ट माधुरी दानुपुंडी। श्रोताओं, भारतीय इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका परिचय किसी एक पद या उपलब्धि से पूरा नहीं होता। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन्हीं में से एक थे। वे एक विद्वान, शिक्षाविद, कुशल प्रशासक, प्रभावशाली सांसद और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले नेता थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म आज ही के दिन यानी कि 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। बचपन से ही मेधावी रहे श्यामा प्रसाद कम उम्र में ही कई शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल कर ली थी उन्होंने और केवल 33 साल की उम्र में ही वे कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने थे। स्वतंत्रता के बाद वे देश के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने। उन्होंने औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने साल 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी क्योंकि वे राष्ट्र की एकता और अखंडता को सर्वोपरि मानते थे। इसी सोच के साथ वे 1953 में जम्मू कश्मीर गए जहाँ उन्हें हिरासत में ले लिया गया और 23 जून 1953 को उनका निधन हो गया। श्रोताओं, आज उनकी जयंती है और उनकी जयंती पर राष्ट्रहित में उनके अमिट योगदान को लेकर पूरा आकाशवाणी परिवार उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विश्व जूनोसिस दिवस पर दून मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और MD मेडिसिन डॉक्टर अंकुर पांडे से बात, साथ ही उर्दू के मशहूर शायर अनवर जलालपुरी की जयंती पर हमसे जानकारी साझा करेंगे शायर शादाब मशहदी। लेकिन श्रोताओं, उससे पहले एक नज़र डालते हैं आज के क्षेत्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू, 49 श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना। केंद्र ने गैस आपूर्ति संबंधी आपात पाबंदियां हटाई। इस बार कांवड़ यात्रा में नहीं रोका जाएगा दिल्ली का रास्ता। 20 दिन में तैयार होगा भंडारी बाग रेलवे ओवर ब्रिज का बो स्ट्रिंग सेतु। इस माह उपभोक्ताओं को मिलेगा 3 महीने का राशन, गेहूं चावल के साथ नमक का भी वितरण किया जाएगा। रेगुलर होगी ऋषिकेश हुबली स्पेशल ट्रेन। बीटेक प्रथम सेमेस्टर प्रवेश के लिए 20 व 21 जुलाई को होगी ऑफलाइन काउंसलिंग। और अब खबर मौसम से जुड़ी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय हैं। सोमवार को भी देहरादून समेत कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग ने कहीं कहीं तेज बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। तो श्रोताओं, ये तो थे आज के क्षेत्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियां। अब वक्त हो चला है एक और म्यूजिकल ब्रेक का।

0: इस खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। श्रोताओं, आज विश्व जूनोसिस दिवस है, तो आइए इस दिवस और इसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं दून अस्पताल के एमडी मेडिसिन डॉक्टर अंकुर पांडे से।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में।
2: नमस्कार मैम। विश्व जूनोसिस जो दिवस होता है ये 6 जुलाई को मनाया जाता है, और इसको मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम जानवरों से होने वाली बीमारी के प्रति सचेत रहें तथा हम उनकी भी रक्षा कर सकें। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो लुई पाश्चर जी ने 1885 में 1885 में रेबीज का फर्स्ट टीकाकरण किया था, तो इसके लिए इसको मनाया जाता है।
1: जी, तो सर जूनोसिस क्या जानवरों से फैलता है?
2: मैम बिल्कुल, ये जानवरों से होने वाली बीमारी है। अगर हम स्पेशली बोलना चाहें तो पेट, जैसे कि डॉग्स, कैट्स और चमगादड़ या फिर बंदरों से होने वाली बीमारी के रूप में बात करें तो रेबीज इज सो कॉमन। रेबीज बहुत कॉमन हो चुका है, और इसका मैं भी बताना चाहिए कि ये जो बीमारी है ये लाइलाज बीमारी है। अगर इसका समय से टीकाकरण नहीं किया जाता है तो इसके बहुत गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं, और तथा मृत्यु भी देखी जा सकती है। तो इसलिए हमें ससमय इसका टीकाकरण करना चाहिए, और साथ साथ अपने टीकाकरण के साथ साथ जो आपका पेट है, जो आपका डॉग है या कैट है, उसको भी टीकाकरण कराना चाहिए आपको।
1: जी, कोरोना भी जूनोसिस में आता है, तो जिस तरह से कोरोना के परिणाम सामने आए हैं तो जूनोसिस से लोगों को अवेयर होने की बहुत जरूरत है।
2: मैम बिल्कुल, एक्चुअली जब जब भी कोरोना का संक्रमण आया, इससे पहले एंथ्रेक्स या फिर और भी बीमारियां इस टाइप की आई, तो लोगों के अंदर ये जागरूकता बिल्कुल ये बढ़ाया, और लोगों को ये भय दिखाया गया कि एक साथ किस तरीके से लोगों को संक्रमित हुए और कितनी उनकी मृत्यु हुई। इसके लिए बहुत से अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाए गए, और उसमें इस वर्ल्ड जूनोसिस डे का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमें ये याद दिलाता है कि ये काफी संक्रामक अगर रूप में आता है, और अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत ही घातक हो सकता है। कोरोना का आपने एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही एंथ्रेक्स बहुत घातक रूप में आया था। स्वाइन फ्लू आपको याद होगा कितना ही एक बार भयानक रूप में आ चुका है। और इसके अलावा मैम इस तरीके से बीमारियां आती रहती हैं। अभी मौसम का बदलाव हो रहा है, बरसात हो रही है, बारिश हो रही है, आप समझ सकती हैं। एक तरीके से सर्मोलेंसिस होती है बीमारी, जो कि सर्मोनेला टाइफी का जन्म देती है, जो कि फेकल ओरल रूट के थ्रू जाती है। फेकल रूट को मैं सिंपल भाषा सुनाना चाहूँ तो आपकी मतलब जो हम मल का त्याग करते हैं, और जहाँ पे वो हम करते हैं, अगर ओपन शौच करते हैं, या जो सीवेज लाइन जो पाइप लाइन होती है, अगर वो वहां पे जा रही है और काफी पुरानी हो चुकी है और उसमें से लीकेज होती है, और वो हम उस पानी को पीते हैं, तो हम टाइफॉइड के रूप में डायरिया इस तरीके से आते हैं। और इसका उपाय क्या हो सकता है? कितना सिंपल उपाय है कि अगर हम जन जागरूकता के माध्यम से ये बता दें कि हम पानी को उबाल लें, सिर्फ पानी के उबालने से ही 100% बैक्टीरिया मर जाते हैं और हम स्वच्छ जीवन का जी सकते हैं। साथ ही चीज और जोड़ना चाहूंगा, अपने हाथ को खाने से पहले धुले, कितना छोटा चीज है। तो इस तरीके से हम अब काफी तरीके से बच सकते हैं। और बिल्कुल जैसा आपने कहा, स्पेशली मैं पेट्स की बात हम अभी कर रहे थे, है ना, तो पेट्स के में कैटल्स, कैटल से भी बीमारी फैलती है। तो अगर हम मान लीजिए कोई ऐसी चीज खा रहे हैं, कोई मांस खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उसको प्रॉपर धुलें, उसको प्रॉपर उबालें, उसको प्रॉपर पका कर खाएं, तो हम इससे बच सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, तो इसकी रोकथाम के लिए, क्योंकि कई सारे लोगों ने अपने घरों में जानवर पाल रखे हैं, तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा अपने पेट से क्लोज रहते हैं, तो उन बच्चों की सावधानी और पेट की सावधानी के लिए उनको क्या करना चाहिए?
2: मैम बिल्कुल, मैं आपसे बात डिस्कस ही करता हूँ। मेरे बहुत अच्छा मित्र है, वो डॉक्टर ही है, उसने घर में एक डॉग को पाला है, छोटा बच्चा है, उसको वैक्सीन भी किया हुआ है, बट खेलते खेलते उसके उसके नाखून लग गया और ब्लड दिया गया, तो उसने वैक्सीनेट किया हुआ है। प्रिकॉशन में उसने हमने एडवाइस किया कि फिर से उसको एक वैक्सीन लेना चाहिए, कहते हैं। तो मेरे बोलने का मतलब मैम सिर्फ इतना है, जागरूक करने के लिए मैं बात बोल रहा हूँ कि आप अपने पेट को भी प्रॉपर टाइमली वैक्सीनेट करें। आपके आसपास जो जानवर घूम रहे हैं, जो डॉग्स हैं, आप पेट लवर्स हैं, अच्छी बात है, आप डॉग लवर्स हैं, तो जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं कृपा करें कोशिश करें कि उनका नियमित रूप से चेकअप हो या फिर उनको वैक्सीनेशन मिले। क्योंकि कई बार आवारा डॉग्स की बात मैं करूं तो कई बार हमने देखा गया है, हमारे दोनों अस्पताल में भी कई बार आते हैं, बहुत बुरी कंडीशन में आते हैं। साथ ही एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, कुछ ऐसे भी पेट्स हैं, आई मीन स्पेशली डॉग्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे हैं कि जो विश्व में कई देशों में प्रतिबंधित हैं और लोग यहाँ पे रख रहे हैं, चलन है, पब्लिक लेके जाते हैं, और लोग डर जाते हैं कई बारी। आई एम ऑल्सो डॉग लवर, आई एम ऑल्सो पेट लवर, बट हमें सोचना पड़ेगा कि हमें ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। और ये दिवस भी हमें दिखाता है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, लुईस पाश्चर जी ने आज के दिन ही पहली बारी कहते हैं रेबीज का टीकाकरण किया था 1885 में, इसलिए मनाया जाता है। तो हमें ये भी दिखाता है कि हमको कितना सतर्क होने की जरूरत है, और केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं ना, इसमें जागरूकता का अभाव है।
1: बिल्कुल, और केवल ये एक डॉग का ही ना होकर अन्य जानवर जो है उनसे होने वाले खतरे से भी बचाने का दिवस है ये ज़ूनोसिस डे। तो लास्ट में इसकी थीम के बारे में बात करेंगे डॉक्टर अंगूर, 2026 की थीम की अगर बात करें तो वो क्या है और उसे कैसे हम अमल में ला सकते हैं?
2: मैम, जो इस बार की थीम है वो है वन वर्ल्ड वन हेल्थ एंड प्रिवेंट ज़ूनोसिस, जो कि साफ साफ ये बताता है कि मानव पशु और पर्यावरण का स्वास्थ्य हम सबसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि हम अपने पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे और समय पर टीकाकरण कराएंगे, जो कि बहुत जरूरी है, जो आपने इंगित भी किया, अपना भी और पशुओं का भी कराएंगे, तो हम अपनी गंभीर बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। और तथा मेरे सभी श्रोताओं से यही अनुरोध रहेगा कि जागरूक रहें, सतर्क रहें, स्वास्थ्य को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाएं।
1: तो डॉक्टर अंकुर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी कार्यक्रम में साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: तो उम्मीद है श्रोताओं, ये जानकारी आपके काम आएगी और आप अपना और अपने पशुओं का ध्यान भी रखेंगे। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत नगमा।

0: इस खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। श्रोताओं जरा गौर फरमाइएगा, अब नाम नहीं काम कायल है जमाना, अब नाम नहीं काम का कायल है जमाना, अब नाम किसी शख्स का रावण ना मिलेगा। श्रोताओं ये शेर है मुशायरों की जान माने जाने वाले शायर अनवर जलालपुरी की। श्रोताओ आज शायर अनवर जलालपुरी की जयंती है, तो आइए उनके बारे में और जानते हैं शायर शादाब मशहदी से।
1: सर सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत शुक्रिया माधुरी जी।
1: तो सर किस तरह का उनका व्यक्तित्व था?
2: हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एक ऐसी शख्सियत के धनी, एक ऐसी व्यक्तित्व के मालिक जिन्होंने हिंदुस्तान को एक नई रिवायत दी, जो कि कौमी यकजहती की थी, आपसी सद्भाव की थी, लोगों से मेल जोल की थी। आपका जन्म जिला अंबेडकर नगर उसके एक छोटे से कस्बे जलालपुर में हुई
1: जी।
2: आपके परिवार बहुत संपन्न तो नहीं था, लेकिन आपने उस स्थिति में अपने साहित्यिक सफर का आगाज किया और आपकी शिक्षा, शुरुआती शिक्षा आजमगढ़ में हुई। उसके बाद आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए, जहां से उन्होंने हायर एजुकेशन हासिल की। तत्पश्चात उन्होंने जलालपुर में ही एक इंटर कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में अपना काम शुरू किया और करीब 17-18 साल तक वहां सेवा की। आपका देहांत 2 जनवरी 2018 में लखनऊ में हुआ, जबकि आपकी पैदाइश 6 जुलाई 1947, जबकि हमारा देश आजाद होने वाला था उस समय हुई। चूंकि आजादी के वक्त में आप पैदा हुए, तो देश के प्रति भावना उनमें बहुत अटूट भरी।
1: और सर उन्होंने भगवत गीता और गीतांजलि को उर्दू में ट्रांसलेट किया, उसके पीछे भी उनका कोई कारण था?
2: बेशक, चूंकि अनवर जलालपुरी साहब कौमी यकजहती के, आपसी सद्भाव के, भाईचारे के द्योतक थे
1: जी।
2: आपने लगभग 700 श्लोक गीता के उर्दू में पोएट्री के माध्यम से उनका ट्रांसलेशन किया। इसके साथ ही चूंकि वो कौमी यकजहती के अलमबरदार थे, आपने रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, उनकी किताब गीतांजलि का बंगाली और अंग्रेजी से उर्दू में ट्रांसलेशन किया
1: जी।
2: उसके साथ ही साथ आपने कुरान के 11वें पारे का भी अनुवाद उर्दू में पोएट्री में किया, नज्म के रूप में किया
1: जी।
2: इसके अलावा उमर खय्याम की जो रुबाइयात हैं, उन पर भी आपने काम किया, उनका भी ट्रांसलेशन किया
1: जी। बिल्कुल। और सर उनकी शायरियों की अगर बात करें, तो उनकी शायरियों की एक खास विशेषता हुआ करती थी, उनका एक विषय हुआ करता था।
2: आपने हमेशा ये कोशिश की कि देश में भाईचारा पैदा हो, देश में लोगों के दिलों से नफरतें गायब हो जाएं, लोगों के दिलों में मोहब्बतें कायम करने लगे। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं माधुरी जी, कि आपने तमाम दुनिया में अपनी निजामत का, अपने संचालन का लोहा मूंगा। अगर मैं ये कहूं कि हिंदुस्तान में अगर कोई संचालक, कोई नाजिम पैदा हुआ है जिसने बहुत दिनों तक इस फन में महारत हासिल की और तमाम हिंदुस्तान के शहरों में, तमाम दूसरे देशों में जाके मुशायरों की निजामत की, 1963 से आपने ये काम शुरू किया, शायरी के मैदान में आप आए और आपने मुसलसल अपने आखिरी वक्त तक उर्दू के माध्यम से, हिंदी के माध्यम से इस राष्ट्र की सेवा की है।
1: बिल्कुल, उनकी यही उपलब्धियां, यही खूबी के कारण उन्हें कई सारे सम्मान से भी नवाजा गया है
2: जी। बेशक, बहुत सही सवाल। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है यश भारती, वो आपने पाया। उसके अलावा मरणोपरांत आपको पद्मश्री उपाधि से भारत सरकार ने नवाजा, और मैं ये कहूंगा कि ये भारत सरकार का एक बहुत बेहतरीन कदम था।
1: बिल्कुल, और आज के दौर में उन्हें याद करना कितना प्रासंगिक लगता है आपको?
2: देखिए, आज का दौर बड़ा क्रिटिकल दौर है, जब कि पैसे का बोलबाला हो गया है समाज में, रिश्ते पैसों में बिकने लगे। आप में, आपकी शायरी में, आपके तसनीफात में, आपकी कोशिशों ने, काबिशों ने इस देश में ये संदेश लोगों में दिया और कहा, इस धरती की जो पहचान है, हिंदुस्तान की जो खास पहचान है, वो यही है कि तमाम तरीके के लोग, तमाम मजाहिब को मानने वाले लोग, तमाम छोटी छोटी संस्कृतियों में जीवन यापन करने वाले लोग कैसे मिलजुल कर रहते हैं, ये हिंदुस्तान की विशेषता है। और उसकी पैरवी करने वाला अगर हिंदुस्तान में कोई पहला शायर, तो मैं ये कहूंगा कि अनवर जलाल साहब हैं।
1: बिल्कुल। और सर आज उनकी जयंती है और इस जयंती पर आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं समाज से ये प्रार्थना करूंगा कि जब आप अनवर जलालपुरी साहब को याद करें तो ये जरूर याद करें कि हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब, हमारे मुल्क में आपसी सद्भाव किस तरह से कायम हो सकता है। नफरतों का कोई अंत नहीं होता है, नफरतें अपनी रास्ते बनाती रहती है, लेकिन हमें ये प्रयास करना है तो नफरतों को वही रोकना है। हमें अपने देश के मुस्तकबिल को सोचना है, मुल्क के मुस्तकबिल को सोचना है। और तमाम शोरा से मैं ये गुजारिश करूंगा कि अनवर जलालपुरी साहब को पढ़ें, सुने। एक शेर वो अक्सर अपने निजामत के दौरान पढ़ा करते थे कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ऐसे थे अनवर जलालपुरी साहब।
1: तो शादाब सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में साझा करने के लिए।
2: बहुत धन्यवाद।
0: उम्मीद है श्रोताओं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आइए श्रोताओं अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला और अंतिम गीत।

तो श्रोतो, इसी गीत के साथ आज कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, आप अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है namaskardehradun@gmail.com। तो इसी के साथ श्रोताओं, अब अपनी दोस्त और होस्ट माधुरी दानू पुंडीर को दें कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। नमस्कार देहरादून।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत।

सुप्रभात श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्रोताओं, वक्त बदल जाते हैं पर कुछ गीत दिल से कभी नहीं जाते। सदाबहार गीत सिर्फ सुनाई नहीं देते बल्कि महसूस होते हैं। कभी सफर में साथी बनकर साथ निभाते हैं, कभी तन्हाई में सहारा बन जाते हैं, तो कभी आंखों में बिना कहे ही मुस्कान छोड़ जाते हैं। तो आइए महकते हैं कुछ ऐसे ही नगमों से जिनकी खुशबू आज भी वैसे ही बरकरार है। हर गीत है यादगार, हर धुन है अमर।

साहिल लुधियानवी की खूबसूरत बोल अभी आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज़ में जमीर फिल्म के इस गीत की धुन बनाई थी सपन चक्रवर्ती ने। श्रोताओं, जहां शब्द थम जाते हैं वहां सदाबहार गीत अपनी अमर धुन बिखेरते हैं। जी हां, अगला नगमा शारदा फिल्म से लता मंगेशकर के स्वर में, आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का मधुर संगीत।

0: गीतों का सिलसिला हम रखेंगे जारी, लेकिन पहले सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: श्रोताओं, कुछ नगमे वक्त नहीं एहसास लिखते हैं, इसीलिए हर दौर में बेहद खास लगते हैं।

श्रोताओं, सदाबहार गीत यानी कभी ना खत्म होने वाला सफर। ये गीत सिर्फ सुरों का संगम नहीं, बल्कि ये गीत भावनाओं की विरासत है। कभी मुस्कान बनकर तो कभी जीवन में रंग भरने वाली प्रेरणा बनकर।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आरोप फिल्म से गोविंद के बोल थे, संगीत दिया था भूपेन हजारिका ने। श्रोताओं, घर से बाहर जब भी जाएं, दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहने और चार पहिया वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें।

ये गीत आपने सुना अनुराधा पौडवाल और भूपेंद्र सिंह की आवाज में, विनोद की शब्द रचना थी और रघुनाथ का संगीत। जी हाँ श्रोताओं, ये हवा जब पौधों को छूकर गुजरती है तो लगता है प्रकृति खुद अपना मधुर गीत गुनगुना रही हो।

श्रोताओं, बीते हुए लम्हे कभी लौट कर नहीं आते, लेकिन उनकी यादें जब भी आती हैं हर दफा मुस्कुराती है। कुछ लम्हे वक्त के साथ गुजर तो जाते हैं, मगर दिल में हमेशा महकते रहते हैं, जैसे जीवन यादों का मेला।

श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपको कार्यक्रम में आखिरी गीत सुनवाने का, लेकिन जाते जाते आपसे यही कहेंगे, आप सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, अपना और अपनों का खास ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहे। इसी के साथ आइए सुनते हैं हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से ये अंतिम गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, आर डी बर्मन का संगीत, आनंद बख्शी के बेहतरीन बोल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं सेहत कार्यक्रम में ओरल हाइजीन और स्वास्थ्य विषय पर दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीता झा से रमेश चंद्रा की भेंटवार्ता।
1: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीता झा को। आज हम डॉक्टर साहब से

0: जानेंगे ओरल हाइजीन और स्वास्थ्य के बारे में। डॉक्टर रीता झा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, ओरल हाइजीन है क्या?
1: ओरल हाइजीन मतलब आपका सारा मुंह, मुंह में आपके दांत आते हैं, मसूड़ा आता है, जीव आता है, सलाइवा आता है,
0: जी
1: उन सब की साफ सफाई और उन सब को स्वस्थ रखने को ओरल हाइजीन कहते हैं।
0: डॉक्टर रीता, ओरल हाइजीन से हमारा जो स्वास्थ्य है वो किस तरह से जुड़ा हुआ है?
1: ओरल हाइजीन से हमारा स्वास्थ्य एकदम जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर आपका ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है तो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डायबिटीज हो सकते हैं। तो आपको अपने मुंह का और ओरल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ओरल हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो हो सकता है आपके हार्ट प्रॉब्लम्स कम हो, कहीं ना कहीं डायबिटीज भी इससे रिलेटेड है।
0: डॉक्टर रीता, दांतों की या ओरल हाइजीन की बात करें तो इसको किस तरह से सही बना के रखा जा सकता है?
1: देखिए, ओरल हाइजीन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने दांतों को 2 बार ब्रश करें कम से कम। खाने में ज्यादा मीठे चीज ना खाया करें, पानी खूब पीजिए और
0: जी
1: डेंटल फ्लॉस का यूज किया कीजिए, अपने जीभ की सफाई किया कीजिए, और खाने पीने में ज्यादा जो आजकल बच्चे वगैरह खाते हैं कुरकुरे चिप्स, वो सब कम खाया करिए।
0: जी
1: जंक फूड्स कम खाना चाहिए और हेल्दी फूड्स पे ज्यादा आप जोर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
0: डॉक्टर रीता झा, अगर किसी की ओरल हाइजीन खराब है तो कैसे पता चलेगा?
1: देखिए, मुंह से बदबू आना, मसूड़ों से खून आना, दांतों में कैविटी होना, दांतों में झंझनाहट होना, ये सब लक्षण होते हैं कि आपका ओरल हाइजीन खराब है।
0: कुछ कारण भी होते हैं ओरल हाइजीन खराब होने के?
1: अगर आप अपने दांतों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका ओरल हाइजीन खराब होगा। मतलब
0: जी
1: आपको कैविटीज अगर होगी तो आपके दांतों में दर्द होगा, और आप दांतों में दर्द होगा, झंझनाहट होगा। अगर मसूड़े स्वस्थ नहीं है तो ब्लीडिंग होगी, मसूड़ों में सूजन होगी। इतने बार गालों में भी सूजन आ जाता है क्योंकि दांतों में कैविटीज होती है, उससे एब्सेस बन जाता है, पस बन जाता है। तो अगर आप इन सब चीजों का ख्याल रखेंगे तो आपका ओरल हाइजीन ठीक रहेगा।
0: डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि मुंह से बदबू आती है, तो ऐसा हम क्या करें ताकि हमारे मुंह से बदबू ना आए?
1: देखिए, बदबू आने के बहुत से कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके दांतों में प्लाग है, मतलब पायरिया जिसको कहते हैं आम भाषा में, पायरिया मेन कारण है जिसकी वजह से बदबू आती है। कितने बार आपको अगर पेट में भी दिक्कत है तो आपको मुंह में बदबू आ सकती है। जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, उसकी वजह से भी बदबू आती है। तो
0: जी
1: सबसे पहले तो आपको अगर मुंह से बदबू आती है तो आप अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करिए, वो आपके दांतों की सफाई करेंगे तो आपके मुंह से बदबू फिर नहीं आएगी।
0: आपने कैविटी की भी बात की थी,
1: हाँ जी,
0: क्या वजह है हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है?
1: कैविटी, देखिए, हमारा जो दांत है वो 3 परतों में बना होता है। एक होता है एनामल, फिर डेंटिन, फिर पल्प। एनामल हमारा बाहरी परत है।
0: जी
1: कितनी बार क्या होता है, जैसे हमारा सलाइवा होता है वो एसिडिक होता है, मतलब 6.2 to 7.6 के आसपास का पीएच होता है उनका।
0: जी
1: पर जब पीएच कम होता है तो एनामल हट जाता है, तो जिसकी वजह से हमें कैविटी हो जाती है।
0: जी
1: तो अगर हम प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हैं, खाने में जंक ज्यादा खाते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं, तो ये हमारे एनामल को इरोड करते हैं और हमें कैविटी होने के चांसेस होते हैं। प्लस बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है
0: जी
1: तो वो भी हमारे एनामल को इरोड करते हैं, और उन पेशेंट्स में ये ज्यादा हो सकता है कैविटीज।
0: जी
1: तो बेसिकली आपको अपना पानी बहुत ज्यादा पीजिए, दांतों को ब्रश करिए 2 टाइम कम से कम, तो इससे आपके कैविटीज कम होंगे। और शुगरी फूड्स कम खाइए, मीठा,
0: जी
1: और स्पेशली जो दांत में चिपकते हैं, जंक फूड तो बहुत ही कम कर दें। जैसे आजकल बेसिकली बच्चों में भी अगर आप देखोगे तो कैविटीज बहुत हो रही है और दांत के प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे हैं क्योंकि वो जंक बहुत खाते हैं।
0: जी
1: तो जंक फूड को जितना कंट्रोल करिएगा उतना अच्छा रहेगा, आपके दांतों में कैविटीज कम होगी।
0: डॉक्टर रीता जी, आपने मसूड़ों में खून आने की बात की थी,
1: हाँ जी,
0: क्या वजह है मसूड़ों में खून आने के पीछे?
1: मसूड़ों में खून आने की वजह है कि मसूड़ों में मैल जम जाता है, जिसको हम अगर डेंटल इसमें गए तो उसको प्लाक कहा जाता है, प्लाक और कैलकुलस।
0: जी
1: धीरे धीरे वो, जैसे प्लाक जो है वो मसूड़ों के अंदर जाने लगता है और वो मसूड़े ढीले करता है, जिसके
0: जी
1: वजह से मसूड़ों में खून आता है।
0: क्या करें हम ऐसा ताकि वो खून है वो बंद हो जाए?
1: आप अपने दांतों की सफाई 6 महीने में एक बार कराइए। खाने में आप विटामिन सी ज्यादा लीजिए, आप थोड़ा सा सिट्रस फ्रूट्स ज्यादा खाइए,
0: जी
1: एप्पल भी खा सकते हैं। मतलब खान पान का भी अगर आप ध्यान रखोगे ना तो उससे आप गम स्ट्रांग होंगे। अगर आप अपने गम्स को स्ट्रांग बनाओगे तो ब्लीडिंग के प्रॉब्लम्स कम होंगी।
0: डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा था कि मसूड़ों में सूजन आ जाती है ओरल हाइजीन सही न होने के कारण, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे जो मसूड़े हैं उनमें सूजन ना आए?
1: देखिए, मसूड़ों में सूजन आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कितनी बार आपकी कुछ मेडिसिन चलती हैं, एपिलेप्सी वगैरह, उसकी वजह से भी मसूड़ों में सूजन आता है, ठीक है। पर मेन कारण है मसूड़ों में गंदगी जमा होना, जिसको आप पायरिया कहते हो आम भाषा में। जब लोगों को पायरिया होता है तब ज्यादातर मसूड़ों में सूजन आता है, मेन कॉज हम अगर डेंटल मान के चले तो।
0: डॉक्टर साहब, अभी आपने ब्रश करने की बात की थी कि कम से कम दो बार ब्रश करें, कब करें ब्रश दो बार?
1: देखिए, सुबह एक बार और एक बार रात को सोने से पहले। और ब्रश जो आप यूज करोगे वो हार्ड ब्रश यूज मत करिए, और दांतों पे ब्रश को रगड़िए मत, हल्के हाथों से घुमा घुमा के करिए। अगर आप ब्रश को ज्यादा जोर से दांतों पे रगड़ते भी हो तो भी आपके दांत की परत हट जाती है और फिर आपको झंझनाहट की दिक्कत होती है। सेकेंडली, आप जो ब्रश यूज करते हो वो सॉफ्ट ब्रश यूज करो, हार्ड ब्रश यूज मत करो। और ब्रश को भी आप 3 से 4 महीने में एक बार बदलो, प्लस आप डेंटल फ्लॉस का यूज करो ताकि दो दांत के बीच में भी आप दांतों की सफाई कर सको।
0: डॉक्टर साहब, क्या ब्रश करने का भी कोई तरीका होता, कैसे करना है, रगड़ना है, गोल गोल घुमा के करना है, कोई तरीका?
1: आप 45 डिग्री पे गोल गोल घुमा के धीरे धीरे करिए। ऐसा भी नहीं है कि आपको आधे घंटे तक ब्रश करना है, 3 से 4 मिनट काफी है, पर हल्के हाथ से घुमा घुमा के। ये नहीं कि आप सीधा सीधा जोर जोर से दांतों पे रगड़ रहे हो, उस वो आपको नुकसान देता है।
0: डॉक्टर साहब, टूथपेस्ट कोई भी ले सकते हैं?
1: हाँ, अगर आप फ्लोराइड रिलेटेड टूथपेस्ट लोगे तो ज्यादा बेटर है, पर टूथपेस्ट आप यूज कर सकते हो कोई भी। पर सेंसिटिव टूथपेस्ट आप नॉर्मल टूथ पे मत करिए। एड्स देख के कितनी बार ऐसा होता है ना, आपने सेंसोडाइन यूज कर लिया, अगर आपको झंझनाहट नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप सेंसिटिव टूथपेस्ट मत यूज करो।
0: जो लोग डॉक्टर रीता जी सेंसिटिव टूथपेस्ट है वो यूज कर रहे हैं तो कितने समय तक करें?
1: पेस्ट को आप यूज कर सकते हो जब तक आपको झंझनाहट की दिक्कत खत्म ना हो जाए, पर अगर एक बार अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद आप यूज मत करिए।
0: डॉक्टर रीता जी, अभी आपने डेंटल फ्लॉस की बात करी थी, डेंटल फ्लॉस को यूज करने के भी कुछ तरीके होते हैं क्या?
1: हाँ जी, वो एक धागा टाइप का होता है, आप दोनों हाथों से इसे पकड़िए और दो दांत के बीच में लेके उसको ऊपर नीचे कीजिए, उससे आपके दांतों के बीच में जो भी डेब्रीज फंस जाता है वो निकल जाता है। तो कितनी बार क्या होता है ना, दो दांतों के बीच में कैविटीज हो जाती है, उसका मेन कॉज ये होता है कि वहां पे खाना फंसा रह गया, आपने कुछ ऐसा खाया जिसमें रेशे हैं तो वो फंसा रह जाता है, तो बहुत बार ब्रशिंग से वो नहीं निकलता है। तो आप डेंटल फ्लॉस का यूज रोज करिए, प्लस आप पानी बहुत पीजिए, जितना आप पानी पियोगे उतना अच्छा, हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है
0: जी। डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि डेंटल फ्लॉस का यूज करने से हमारे जो दांत हैं उनके बीच में गैप ज्यादा होने लगता है, गैप अगर नहीं है तो भी बन जाएगा, कितना सच है ये?
1: नहीं नहीं, ये एक मिथ है, डेंटल फ्लॉस से आपको कभी भी गैप नहीं बनता है। कितनी बार क्या होता है, जो आप पायरिया समझते हो उसमें क्या होता है, हमारे दांतों में बहुत सारे कचरा मतलब हार्ड कोट आ जाते हैं जिसको हम प्लाक कहते हैं, जब ये धीरे धीरे बढ़ता है तो ये दो दांत के बीच का स्पेस भी लेता है
0: जी,
1: और गम्स को भी बहुत सूजन प्रोवाइड करता है
0: जी।
1: तो उसके वजह से आता है। कितनी बार आपको एज के साथ भी आपके दांतों के बीच में गैप आता है, कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं उसकी वजह से आता है, फ्लॉस की वजह से कभी गैप नहीं आता।
0: डॉक्टर साहब, क्या ओरल हाइजीन को बनाए रखने में माउथ वॉश होता है, उसका भी कुछ?
1: हाँ,
0: यूज है,
1: आप माउथ वॉश यूज करिए। मैंने अभी आपको बताया ना, कितने बार क्या होता है ना, जो डेब्रीज होते हैं दांतों के बीच में फंसे रहते हैं तो आप ब्रश से नहीं निकाल पाते हो, तो आप अच्छे से जोर से कुल्ला करोगे तो उससे आपको फायदा होगा, प्लस उसमें फ्लोराइड और बहुत सारे ऐसे चीज होती है जो आपको मदद करता है। वो सब मेडिकेटेड जो माउथ वॉश होते हैं उन्हें यूज करना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो होते हैं तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, पान मसाला, इस तरह की तमाम चीजें खाते हैं, क्या इनसे भी हमारी ओरल हाइजीन प्रभावित होती है?
1: हाँ जी, ये बहुत ही नुकसानदायक चीज है, क्योंकि ये एक तो वो मसूड़े में उसे रखते हैं जिसकी वजह से ऑलरेडी मसूड़ों में प्रॉब्लम होता है, ये आपको उसकी वजह से आपके गालों में भी प्रॉब्लम होगा, और उसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सलाइवा के साथ मिलके आपके शरीर के अंदर जा रहा है, सलाइवा से बॉडी में मतलब खून में जाएगा, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स या सब कुछ आ सकता है
0: जी।
1: ओरल कैंसर का मेन कॉज यही है, तो ये तंबाकू और ये सब जो भी पान मसाला है वो नहीं खाना चाहिए मेरे हिसाब से।
0: डॉक्टर रीता झा, बच्चों में जो ओरल हाइजीन की अच्छी आदतें हैं, कोई भी माता पिता या गार्जियन है वो कैसे विकसित कर सकता है?
1: देखिए, बच्चा जब छोटा होता है, जब वो मदर्स फीड पे रहता है, तब आप वाइप लेके उसके गम्स को साफ कर सकते हो, जब उसका पहला दांत आता है तब से आप उसको हल्के से ब्रश करो, जो आपको करना पड़ेगा, धीरे धीरे जैसे दांत आते हैं और जब वो खुद करने लायक हो, केपेबल हो जाता है, तो कम से कम 6 से 7 साल तक माँ के गाइडेंस में ब्रश करना चाहिए और जितना जल्दी आप ब्रशिंग की हैबिट डलवाओगे बच्चों में उतना अच्छा है और कम से कम दो बार। सेकेंडली बच्चों को आप चॉकलेट स्वीट्स जो भी है वो जितना कम दे उतना अच्छा है, पर अगर आप खिलाते हो तो कम से कम उसके बाद कुल्ला जरूर कराइए और रात को ब्रश करवाइए। और जो सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे बॉटल लेके सो जाते हैं, उसमें चीनी होता है,

0: वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो कभी भी बॉटल फीडिंग तो वैसे भी मैं कहती हूँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि केरीज का या छोटे बच्चों में आप देखोगे जो सामने के दांत होते हैं बड़े काले काले से दिखाई देते हैं,
1: जी
0: तो उसका मेन कॉज यही होता है। बॉटल फीडिंग अगर है भी तो
1: जी
0: रात को कभी ना कराएं, कोशिश करें कटोरी चम्मच से दूध पिलाएं। पर
1: जी
0: अगर कितनी बार ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि आपको बॉटल देना पड़ता है, तो नाइट फीडिंग बॉटल से तो बिल्कुल भी बंद कर दीजिए।
1: डॉक्टर झा, बहुत से लोग अपनी जीभ साफ नहीं करते, जीभ साफ होने की कितनी भूमिका है ओरल हाइजीन को बनाए रखने में?
0: बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि टंग क्लीनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर आप याद करिएगा तो पुराने जमाने में लोग करते ही थे दो बार, अगर आपने ब्रश किया है तो आप टंग क्लीनिंग भी करिए, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत बैक्टीरिया जमा होते हैं, तो
1: जी
0: जब आप उसको साफ करोगे तो वो सारे निकल जाते हैं। मेंटेन मतलब वो भी आपका एक कारण हो सकता है कि आपके मुंह से बदबू आए।
1: डॉक्टर रीता जी, क्या कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं जिनको हम अपने खाने में शामिल कर लें और उनकी वजह से हमारा जो ओरल हाइजीन है अच्छा
0: देखिए
1: बना रहे?
0: आप लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, नट्स खा सकते हो, दाल,
1: जी
0: जिसमें मान लीजिए कैल्शियम या फास्फोरस ज्यादा है, वो अगर आप लोगे उससे क्या होगा, आपका एनामल बनेगा।
1: जी
0: जैसे आपके ये चेरीज हो गए, उसमें मैलिक एसिड होता है,
1: जी
0: फिर आपके गम्स के लिए अच्छा होता है। ग्रीन टी हो गई, उसमें पॉलीफिनॉल्स होता है, वो भी आपके गम्स को और इन्फ्लेमेशन को कम करता है।
1: जी
0: तो बेसिकली अगर आप नॉन वेज खाते हो तो ये चिकन हो गया, फिश हो गया,
1: जी
0: ये सब आप लोगे तो फिर कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जो कि आपके दांत के बाहरी परत को मजबूत करने में बहुत मदद करता है।
1: डॉक्टर रीता, ओरल हाइजीन को लेकर जो एक डेंटिस्ट हैं उनसे हमें कितने समय बाद मिलते रहना चाहिए?
0: हर 6 महीने में आपको अपने डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए, उससे ये होगा कि आपके डेंटिस्ट को पता चलेगा कि आपके दांतों में प्रॉब्लम क्या हो रही है।
1: जी
0: बेसिकली तो लोग जागरूक हुए हैं तभी जाते हैं डेंटिस्ट के पास जब प्रॉब्लम बढ़ जाता है, पर
1: जी
0: साल में एक बार हर किसी को अपने दांतों की सफाई कराना चाहिए, उससे आपके मसूड़ों में प्रॉब्लम नहीं होगा और दांत भी ठीक रहेंगे। और 6 महीने से साल भर में एक बार तो डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं आए। मतलब अगर कैविटी हो रही है तो उस वक्त अगर वो भर देंगे तो दांत में RCT नहीं कराना
1: डॉक्टर
0: पड़ेगा।
1: साहब, हमारे यहाँ घरेलू नुस्खों का चलन बहुत है। हल्दी वाला पानी से कुल्ला कर लो, नमक वाला पानी से कुल्ला कर लो, या नमक वाला मंजन कर लो, इस तरह की तमाम चीजें हैं। ये कितनी सुरक्षित हैं ओरल हाइजीन के लिए?
0: देखिए गरारे तो ठीक है, अगर आप गरारे करते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे लौंग है, लौंग का क्लोविक एसिड, वो भी आपके दांतों के लिए सही है, पर इससे ज्यादा तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि हल्दी वल्दी आप यूज करें। हल्दी एंटीसेप्टिक होता है, तो घाव वगैरह में आप लगा सकते हो, पर मुंह में उसका मेन कोई रोल नहीं है।
1: क्या उसकी वजह से हमारे दांत और पीले हो सकते हैं?
0: अगर वो देखिए आजकल हल्दी कितना सिंथेटिक है या कितना नेचुरल है वो तो हम नहीं कह सकते ना, तो वो इफेक्ट कर सकता है।
1: डॉक्टर रीता जी, अगर किसी को कोई समस्या हो जाती है तो ओवर द काउंटर ड्रग्स ले लेते हैं, ओरल हाइजीन में अगर कोई ओवर द काउंटर ड्रग्स या इस तरह की चीजें इस्तेमाल करता है, कितना सुरक्षित है?
0: देखिए अगर ओरल उसमें लेता है और अगर ओवर द काउंटर अगर फार्मासिस्ट है दुकान पे, तो
1: जी
0: फिर भी वो जो दवाइयाँ देता है ठीक ही देता है, क्योंकि मेनली आपको एंटीबायोटिक दी जाती है। पर विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई एलर्जी है किसी दवाई से
1: जी
0: तो वो आपको रिएक्ट कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि हर दवाई का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। और आप सिर्फ जाते हो वहां पे, बोलते हो मुझे दर्द हो रहा है आप दवाई दे दो, या
1: जी
0: मसूड़े से खून आ रहा है, पर जब तक उसे कॉज नहीं पता होगा और आप दवाई लोगे तो बहुत जरूरी नहीं है कि हर बार वो आपको फायदेमंद होगा, कभी नुकसानदायक भी हो सकता है।
1: डॉक्टर रीता जी, कार्यक्रम के समापन में कोई 3 ऐसे टिप्स ओरल हाइजीन के लिए हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहें?
0: आप 2 समय ब्रश जरूर करें, पानी बहुत ज्यादा पिए, और शुगर जितना कम इंटेक करेंगे आपके दांतों के लिए उतना ही अच्छा है।
1: डॉक्टर रीता जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई और हमारे श्रोताओं को ओरल हाइजीन और स्वास्थ्य के बारे में आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सेहत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ओरल हाइजीन और स्वास्थ्य विषय पर दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीता झा से रमेश चंद्रा की भेंटवार्ता। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए अब सुनते हैं न्यूज हेडलाइंस।
3: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप रागिनी बिंजोला से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। बागेश्वर जिले में भारी बारिश के कारण मलबा आने से 14 मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क प्रभावित हुआ है। प्रशासन बंद सड़कों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने प्रमुख राष्ट्रीय नवाचार मंच नवाचार मंत्र के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15

0: जुलाई तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने कहा कि देशभर के नवोन्मेषकों की अत्यधिक रुचि को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाने का आह्वान किया है। देहरादून में सहकारिता दिवस के उपलक्ष्य में सहकार भारती द्वारा आयोजित एमपैक्स नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सहकारिता केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं बल्कि सेवा, स्वावलंबन और ग्रामीण विकास का सशक्त माध्यम है। देहरादून जिले के सहसपुर विकासखंड की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। समूह की महिलाएं स्थानीय किसानों से ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदकर उन्हें सीमा द्वार स्थित आईटीबीपी के जवानों तक पहुंचा रही हैं। जिला प्रशासन की इस पहल से ग्रामीण किसानों को जहां उनकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को घर बैठे रोजगार और आय के नए अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजित किए गए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का परिणाम अगले 3 से 4 दिनों में घोषित किया जाएगा। भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा के अनुसार अभ्यर्थी अपना रिजल्ट भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट में देख सकेंगे। देहरादून में सेवा सप्ताह के तहत साधुराम इंटर कॉलेज में नवीन पहल और योजनाओं का क्रियान्वयन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विगत 5 वर्षों में राज्य में पहली बार लागू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं, सुधारों और उपलब्धियों के साथ साथ देहरादून जिले में विभिन्न विभागों द्वारा प्रारंभ की गई अभिनव पहलों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आप सभी प्यारे श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए कुछ पल संगीत के नाम करें जहां हर सुर अपनापन सुनाए, हर धुन सुकून दे और हर गीत दिल में एक नई मुस्कान जगा जाए।

लाडा की आवाज में समीर के बोल थे मोंटी शर्मा का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं अरमान मलिक और नीति मोहन का गाया बार बार देखो फिल्म से अगला गीत। शब्द रचना कुमार की और धुन बनाई है अरमान मलिक ने।

समय 11:31 और 37 सेकंड हुए हैं। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम वर्ष फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपाल ताड़े वसंतरा भोजनी पी एस ने बांधकर साथ में तुषार करांगले ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं आप हैं। आकोट से विनायक बेंडे मंगला बेंडे विजय शुभम पवन जरिए के संजीव डाबेराव साथ ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं। बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जुड़ा मंजीत कौर करणवीर करण दपिंद्र वरिंद्र कुलदीप सिमू एकम दमन अभिजीत और साथ में ये इनके परिवारजन ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं। करनाल से ही ज्ञानभूषण शर्मा सोमनाथ काली और साथ में इनके परिवारजन और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं। आप हिम्मत पद्मा टाकी से नेपानगर से सुदर्शन शाह पल्वी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगलाबेन शाह साथ में राजेंद्र जी शाह और इसी गीत को सुनना चाह है। पाकुंड झारखंड से उत्तम कुमार भगत श्वेता किशुता सुवर्ण और साथ में सत्यमानंद बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी पूजा पायल और साथ में जगदीश जौहरी और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब साबिराही और मेहरा जहां साथ ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं। आप है नाभा जिला पटियाला पंजाब से श्रोता सोमदत्त कैरव ज्योति रानी गुरमंद कौर मनु और साथ में इनके परिवारजन ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं। उत्तम नगर दिल्ली से हैं आप हैं श्रोता कमला रानी बोधराज खुरबाल भानु प्रकाश और साथ में गीतिका खुरबाल और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज लिखते हैं। करुला मुरादाबाद से अयूब खान इरम गुड़िया शेब खान सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी और इनके परिवारजन साथ ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आप हैं सहारनपुर से आशा नारंग सोनाली और सुरेश नारंग साथ ही ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं। नलगोंडा तेलंगाना से मोहम्मद अमजद सलमा फिरदोश और साथ में मोनी रेशा और ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। गांव करेली जिला बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी शमी अंसारी नसरीन अंसारी और साथ में इनके परिवारजन आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं अमित कुमार की आवाज़ में गीत फिल्म का नाम तेरी कसम।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: कार्यक्रम का ये अगला गीत है आप सभी की पसंद पर। खरसावा झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक जलेश्वर और साथ में गौरव नायक, और इसी गीत को सुनना चाहे आप हैं कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन और साथ में मयंक शर्मा, कस्बा चिलकाना जिला सहारनपुर से जरीफ अंसारी, नईम अंसारी, डॉक्टर आमिर और साथ में मुन्ना नजीम। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश होता हमें लिखते हैं मेन रोड फारबिसगंज बिहार से प्रकाश कुमार पप्पू, नैतिक पीहू कुमार बीमल, नवरत्न हाता बाड़ीहाट पूर्णिया बिहार से ममता रानी छवि अनोखी, अर्पिता लाडो, दीक्षा देवांशु और साथ में डब्लू जी। ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आप है मोहल्ला बारादरी महमूद खा रामपुर से भैरव साहेब, सईद भाई, राशिद भाई, असद भाई, फिरोज मुस्कान और साथ में नगमा नाज मंसूरी। नजीबाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं मनोज वर्मा। साथ ही फरमाइश श्रोता लिखते हैं नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और साथ में है नदीम पटेल। जिला अम्बागढ़ चौकी से आप है रिजवान।

खान, आयशा सबिहा, अनसूरी हान साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा है। आप हैं जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु प्रिया, देवाश्री, कीर्ति भारती और साथ में हैं अनुराग मोहन। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं गार्ड मोहल्ला मैलिंगापुर से अनुद्दीन बनर्जी, मुमताज, रियाज, रुबीना, अंजुम, जुनेद, मारिया और साथ में इनके परिवारजन। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता लिखते हैं, आप हैं बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुनेशा, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और साथ में यश मंसूरी। ये फरमाइश होता हमें लिखते हैं गांव डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, साथ में करमजीत कौर। इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है। आप हैं शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सबकाल, आशा, सोनिया, साईराज और विशाल सबकाल। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर। फिल्म का नाम है सरगम।

श्रोताओं, कार्यक्रम बड़ से फरमाइश प्रसारित किया जा रहा है 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने जिला खरगोन सनावत से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, साथ में इनके परिवारजन। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा और साथ में इंद्रजीत कौर। मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं गाँव झगुड़ी जिला यमुनानगर से रणधीर बांगड़, गुरमेजो गौरव, परवीन, युगम, वीरेन, मन कीरत और साथ में मनराज। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं तेलंगाना छोटू पास से कस्तूरी डामाडू वमाडू और साथ में नारायणा। ये मैसेज श्रोता लिखते हैं गांव पांडरकवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा अनुश्री और साथ में धनश्री बुरांडे। ये मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा है। आपने फरमाइश हमें लिखी है गांव पेहरा दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोर, चंद्र किरण प्रीति और साथ में है छाया बंछोर। ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबी, राधिका, बीबी अनिष्का और साथ में तन्मय। ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गव्या भाई, सुचा सिंह पाठक, विनोद पुरी और साथ में है जयपाल यादव। ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आप हैं श्रोता जिन्होंने फरमाइश लिखी है सहावर रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी, शमशुल कमर राही और साथ में इनकी बहुत सारे मित्र। ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं मैगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, बेबी निशा और साथ में इनके परिवारजन। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज लिखते हैं आप हैं लाल माता सुदामा नगर अटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, कान्हा, मनोहर बाई बागरी और साथ में प्रभुलाल बागरी। और इसी गीत को सुनना चाहा है वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंह अंकर, दिशांत कुमार और साथ में है अर्पिता जी। पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है कृष।

आइए श्रोता, बढ़ते हैं आप सभी की फरमाइश के इस अगले गीत की ओर। मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं शांति निवास लहेगांव रेलवे जिला अमरावती से कुमारी कल्पना कुरहाड़े, वंदना आशीष और दीपक कुरहाड़े। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज लिखते हैं कुंभार गले श्री रामपुर से अशोक दले, सविता निकेत रोहिणी ऋषिकेश जीविका और सानिका दले, पुनावले पुणे से जय सुनबरी करिश्मा विका और साथ में विशाखा। ये मैसेज श्रोता हमें लिखते हैं गाँव गाला अम्बाला से राजेंद्र कुमार, मलकी कौर, आरती रानी, राघव हरमन साथ में इनके परिवारजन। ये मैसेज श्रोता लिखते हैं पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से नील मोहन शाटिल्लू नायक और साथ में मधु नायक। और इसी गीत को सुनना चाहा है सब्जी मंडी बुलढाणा से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा जनम और साथ में ही मुद्दसिर हुसैन। धनतरेगी के हैं भागवत वर्मा, लीलावती शांति देवी, विनीता वर्मा और साथ में है रुद्र वर्मा। ये फरमाइश श्रोता हमें लिखते हैं राहट गांव कोम अमरावती से हर्ष आरामिक, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, रुचिका आरामिक और साथ में इनकी परिवारजन। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा चेतन और साथ में है सुलोचना भगत। और इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज लिखते हैं ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी राम, कारी मीना, कारी पुंजराज, आरती आकर्षण और साथ में है जयश्री। पुरानी बिलाई छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीबुद्दीन जी शान शाहनवाज और साथ में इनका पूरा सिद्दीकी परिवार। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अरिता और इनकी परिवारजन। इसी गीत को सुनना चाहा है आप हैं गांव हिंगड़ी आलोट रतलाम से जगदीश धाकड़ नाइमा, रंजूबाई युवराज सिंह धाकड़ और साथ में है शिवांगी धाकड़। तेलंगाना निजामाबाद से शेख लाबख्श, बेगम राबिया, शेख रहीमुन्ना, दानिश आसिफ शेख, दनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद बेबी आलिया और साथ में ही आयन बाबू। और इसी गीत को सुनना चाहा है गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता, राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार और साथ में इनके परिवारजन। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है कामचोर।

0: इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइशों में लिख भेजी थी सिद्धपुरा टाउन से जुबेर अली खान, सबीहा जुबेर और अंजुमन खान ने। गांव रामसेवाला सहारनपुर से नामदेव राय, संदीप कुमार देविया और साथ में इनके परिवारजन। गुमला झारखंड से एस एम जावेश गुप्तन, जुमरज बुलहुदा। साथ ही ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी थी। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल ने ये मैसेज श्रोताओं ने हमें लिख भेजा था। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेड़ी से नाना लाम से मीना, तेजस जय लाम से हर्षित और साथ में इनके परिवारजन ने। रघुवीर नगर से ही दिलावर खान, असीना बानू और साथ में एलिजा नायब ये फरमाइश होता लिखते हैं। आप ही हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, साथ में नफीसा परवीन। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बनी, आरुषौर्य और साथ में दिनेश। साथ ही इसी गीत को सुनने के लिए मैसेज हमें लिख भेजा था। आप हैं दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शो, अजय कुमार, रिमी तनु, श्री गुप्ता, पीरा बाजार जुमरी तलैया से अभय कुमार, शिवानी कुमारी, प्रियंका, आर्या, जिया टूशी, आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, मुन्नी देवी शो, जयप्रकाश, बसंत लाल और साथ में इनके परिवारजन ने। और मैसेज श्रोता लिखते हैं हैदराबाद बी एन रेड्डी नगर से मोनिका बालू और साथ में है विनय कुमार। और ये मैसेज श्रोता लिखते हैं परिमहल कासकन से आबाद खान, नबील, आरफा खान, इल्मा खान और साथ में एम असलम से भी ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं। आप हैं जिन्होंने हमें मैसेज लिख भेजा है। अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले देवयानी और गणेश कामले। करनाल से मैसेज श्रोता लिखते हैं गुरविंदर सिंह पाधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनवीत, मनविंदर सिंह पांधा और साथ में जी एस रामगढ़िया। साथ ये फरमाइश श्रोताओं ने हमें लिख भेजी है। आप हैं लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी निमी पम्मी, सिया हर्षिता और साथ में निशांत ध्रुव ने। साथ इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है। आपने मैसेज लिख भेजा है, ये फरमाइश श्रोता लिखते हैं। फरुखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, सुरोज सुबोध, सलोनी संजू लल्ला, बाबू शिवा और साथ में इनके परिवारजन ने। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश पायल जोशी, मनीष शर्मा, बेबी वेदेही जोशी, बेबी हंसिका जोशी और साथ में इनके परिवारजन ने। फरमाइश श्रोता लिखते हैं श्रीरामपुर से डी अशोक कुंभार और इनके परिवारजन। श्रोता इसी के साथ आज का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी देहरादून है, इस समय 12 बजने को है। अब समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने आज से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। बिहार में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव मौजूदा सांसद नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण हो रहा है। गुजरात में मंजलपुर विधानसभा सीट योगेश भाई नारंदास पटेल के निधन के कारण तथा मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती की अयोग्यता के कारण दतिया सीट खाली हुई थी। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक आलेख में कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। रूस ने आज सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In his departure statement, the Prime Minister said his visit to Indonesia, Australia and New Zealand will further strengthen India's Act East policy, Mahasagar vision as well as the country's outlook towards a free and open Indo-Pacific. Prime Minister Modi said his visit to Indonesia will further deepen the comprehensive strategic partnership which was elevated during his 2018 visit. From Indonesia, the Prime Minister will travel to Melbourne at the invitation of Australian Prime Minister Anthony Albanese. He said the visit will strengthen the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership through discussions on defence and security, trade and investment. He will also interact with the Indian diaspora. The Prime Minister will then visit Auckland at the invitation of New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. He said the visit will build on the momentum in bilateral ties following Prime Minister Luxon's visit to India in March last year, with discussions focusing on economic, trade and commercial engagement. India will chair the 9th session of the Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy in Geneva in Switzerland today. Our correspondent reports that the 3-day session being organized by the United Nations Trade and Development will continue till Wednesday. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said the session will bring together member states, international organizations, consumer protection authorities, academia and other stakeholders to deliberate on emerging issues in consumer protection law and policy. India will host the two-day BRICS Women Working Group meeting under its BRICS chairship beginning today in Kochi in Kerala. Ministry of Women and Child Development said senior government officials from BRICS member countries will come together to deliberate on key issues relating to women's empowerment across all sectors and women-led development while advancing cooperation across shared priorities. The Election Commission has announced the schedule of by-elections to three assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. The by-elections will be conducted for Bankipur constituency in Bihar, Manjalpur constituency in Gujarat and Datia constituency in Madhya Pradesh. As per the notification, nominations will be accepted until the 13th of July and scrutiny will be held on the 14th of July. The polling for these seats is scheduled to be held on the 30th of July. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has convened a meeting of its members today to deliberate on several important administrative and financial matters, including the findings of the Special Investigation Team, SIT, probing the counting of donations received by the trust. According to an official notice issued on June the 28th, 2026, the agenda of the meeting includes consideration of the resignation letters submitted by General Secretary Champat Rai and Trustee Dr. Anil Mishra. Members will also be briefed on the interim report of the SIT regarding the counting of donations received through the Trust's donation boxes. The India Meteorological Department, IMD, has issued red alert for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra and Chhattisgarh today. The weather agency predicted heavy to very heavy rainfall over East Rajasthan, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Mahe, Madhya Pradesh and Uttarakhand during the day. In Delhi, IMD has forecast cloudy sky with moderate rainfall for the day. England stormed into the FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 3-2 victory over Mexico at the Azteca Stadium in Mexico City today. In another match, Brazil's veteran player Neymar Jr. has announced his retirement from international football after the five-time world champion suffered a stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup round of 16 last night. For Brazil, the defeat marked a seventh consecutive World Cup knockout loss to European opposition. In the Wimbledon tennis, Serbia's Novak Djokovic defeated Roman Safiulin of Russia to reach the men's singles quarterfinals last night. Djokovic will next face either Felix Auger-Aliassime or Alejandro Davidovich Fokina in the quarterfinals. And with that, we end this news bulletin.
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 12:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए FM न्यूज हेडलाइंस।
4: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप रागिनी बिंजोला से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। मौसम विभाग ने आज राज्य के बागेश्वर जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बागेश्वर जिले में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़ और नैनीताल में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने प्रमुख राष्ट्रीय नवाचार मंच नवाचार मंत्र के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने कहा कि देश भर के नवोन्मेषकों की अत्यधिक रुचि को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। देहरादून जिले के सहसपुर विकासखंड की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। समूह की महिलाएं स्थानीय किसानों से ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदकर उन्हें सीमा द्वार स्थित आईटीबीपी के जवानों तक पहुंचा रही हैं। भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजित किए गए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का परिणाम अगले 3 से 4 दिन में घोषित किया जाएगा। भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा के अनुसार अभ्यर्थी अपना रिजल्ट भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट में देख सकेंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाने का आह्वान किया है। देहरादून में सहकारिता दिवस के उपलक्ष्य में सहकार भारती द्वारा आयोजित एमपैक्स नेतृत्व

एफ एम 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 12:12 हुए हैं। लीजिए सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिए डॉक्टर मधुरलता भटनागर के गाए भजन।

सुगम संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मधुरलता भटनागर के गाए भजन। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 12:30 हुए हैं। अब इन्हें सुनेंगे कार्यक्रम घर गृहस्थी।

नमस्कार बहनों, FM 100.5 MHz पर आप सुन रही हैं अपना मन पसंद कार्यक्रम घर गृहस्थी। और आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी बहन सुरुचि वर्मा। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न होंगी और अपना और अपने परिवार का ध्यान भी बहुत अच्छे से रख रही होंगी। और बहनों, परिवार की सेहत और रसोई दोनों को समृद्ध बनाने में किचन गार्डन आपकी बहुत मदद कर सकता है। जी हाँ बहनों, किचन गार्डन यानी घर के आंगन, छत, बालकनी या घर के आसपास उपलब्ध थोड़ी सी जगह में रोजमर्रा की उपयोगी सब्जियां, मसाले और हरी पत्तेदार फसलें उगाना आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है। क्योंकि बहनों, ये सिर्फ एक बगीचा नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली की शुरुआत है। आज के समय में बाजार की सब्जियों में कई बार अधिक रासायनिक दवाओं के इस्तेमाल की चिंता रहती है और ऐसे में यदि घर पर ही ताजी और पौष्टिक सब्जियां उगाई जाए तो परिवार को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिल सकता है। किचन गार्डन में आप आसानी से धनिया, पुदीना, मेथी, पालक, सरसों, टमाटर और हरी मिर्च, बैंगन, भिंडी, लौकी, तोरई जैसी और अन्य मौसमी सब्जियां भी उगा सकती हैं। और अगर आपके पास जमीन नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है बहनों, आप गमले में, ग्रो बैग में, बाल्टी में, पुराने डिब्बे में, प्लास्टिक की बोतलें, यहां तक कि टूटे हुए टब का प्रयोग भी आप कर सकती हैं और एक सुंदर सा किचन गार्डन आप बना सकती है। किचन गार्डन किस तरह से बनाना है इस विषय पर अभी और भी बातें करेंगे आपसे, पर बहनों अभी थोड़ा मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं ये सुंदर सा लोकगीत।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है बहनों। आप सुन रही हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम घर गृहस्थी। तो बहनों, हम बात कर रहे थे कि आप अपने किचन गार्डन की शुरुआत कैसे कर सकती है। तो उसके लिए आप सबसे पहले ऐसी जगह चुनें जहां प्रतिदिन कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आती हो। उसके बाद अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी में गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट मिलाएं, इससे पौधों को पर्याप्त पोषण मिलेगा। और मौसम के अनुसार आप बीज या पौधे लगाएं। पौधों को समय समय पर पानी भी जरूर दें, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि पानी ज्यादा ना दें ताकि पानी जमा ना हो। आप जितना उनको जरूरत है उतना ही पानी दें। साथ ही खरपतवार भी निकालते रहें और पौधों की नियमित देखभाल करें। यदि कीट दिखाई दे तो उसमें नीम के घोल या अन्य जैविक उपायों का प्रयोग आप जरूर करें। बहनों, किचन गार्डन के बहुत फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि परिवार को ताजी, स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जियां मिलती है, बाजार पर निर्भरता कम होती है और घर का खर्च भी कुछ हद तक कम हो जाता है। साथ ही बच्चों को भी आप पौधों की देखभाल कराएं, उन्हें प्रकृति से जोड़ें और पर्यावरण संरक्षण की सीख भी दें उन्हें। जब बच्चे अपने हाथों से उगाई हुई सब्जियां खाते हैं तो उनमें पौष्टिक भोजन के प्रति भी रुचि बढ़ जाती है। तो बहनों, आप भी अपने घर में किचन गार्डन बनाएं। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो आज ही शुरुआत कीजिए। शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन उसका लाभ पूरे परिवार को मिलेगा। और अब बहनों, हमेशा की तरह हम आपके लिए एक भेंटवार्ता भी लाए हैं जिसका विषय है बदलते परिवेश में बच्चों का लालन पालन। श्रीमती रेणु कोठारी से बातचीत कर रही है डॉक्टर अनिता तितलियाल। तो आइए बहनों, सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
2: घर गृहस्थी सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को मेरा, डॉक्टर अनिता तितलियाल का प्यार भरा नमस्कार। वक्त से पहले ही वो हमसे रूठ गई, बचपन की मासूमियत ना जाने कहाँ छूट गई। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमती रेणु कोठारी जी। बहनों, हमारी आज की बातचीत का विषय है बदलती परिवेश में बच्चों का लालन पालन। इस विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं श्रीमती रेणु कोठारी। रेणु जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद अनीता जी।
2: हाँ जी,
3: आपने मुझे बुलाया है यहाँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आकाशवाणी में आज आने पर।
2: जी, सभी माता पिता के लिए बच्चों की परवरिश एक तपस्या के समान है और आज का युग तेजी से बदल रहा है। विज्ञान, तकनीक और आधुनिक जीवन शैली ने हमारे समाज और परिवार को बहुत प्रभावित किया है। तो रेणु जी, इस बदलते परिवेश में सामाजिक और तकनीक का बच्चों के लालन पालन और पोषण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?
3: बच्चा ईश्वर की सबसे सुंदर देन है। पहले समय में पालन पोषण बहुत सरल था।
2: जी जी।
3: क्योंकि पहले संयुक्त परिवार होते थे, कितने सारे रिश्ते होते थे, अम्मा, बाबा, चाचा, चाची, ताई, ताऊ। लेकिन आज पेरेंट्स जॉब में आ गए हैं, लेकिन वो भी एक प्राथमिकता है आज की महंगाई को देखते हुए।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन उसके साथ बच्चों का बचपन है वो खो गया है।
2: बिल्कुल।
3: क्योंकि रिश्ते भी कम हो गए परिवार में।
2: हाँ जी।
3: और संयुक्त परिवार से एकल परिवार में कब ये बदल गया, रिश्ते कब कम हो गए, आस पड़ोस सब दूर हो गए। तो पहले क्या होता था कि बच्चे जब छोटे होते थे तो आस पड़ोस से भी बहुत कुछ सीखते थे।
2: बिल्कुल।
3: अपने रिश्तेदारों से भी बहुत कुछ सीखते थे, तो बच्चों पे पूरी निगरानी रखी जाती थी। परंतु अब क्या है, अब खाली एक पेरेंट्स, दो बच्चे। पेरेंट्स क्या अपने लगे हुए हैं जॉब में, तो बच्चों को अपना दे देते हैं मोबाइल।
2: जी, आज के महंगाई के दौर को देखते हुए माता पिता दोनों का कामकाजी होना भी बहुत जरूरी
3: है, हम मान रहे हैं, लेकिन उसका एक निश्चित टाइम होना चाहिए।
2: जी।
3: या मोबाइल दे रहे हैं
2: जी,
3: तो उसका एक निश्चित समय हो। अच्छा, क्या देख रहा है ये भी आपको पता हो।
2: जी।
3: अच्छा, मोबाइल आप दे भी दे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं बच्चों को देने के लिए।
2: जी।
3: आप बच्चों के साथ कैरम दे दो, आप बच्चों को कैरम खेलें, बच्चे आप कलर्स वाले ब्लॉक लाके दे दो, आप वो दे दें बच्चों को। इतनी सारी चीजें हैं बच्चों को देने के लिए, ये जरूरी नहीं है कि हम मोबाइल और टीवी से ही बच्चों को खुश रखें।
2: बच्चों की तो आजकल गर्मी की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो उसमें आउटडोर या इंडोर गेम्स भी खेल सकते हैं।
3: मैं तो आउटडोर गेम्स के लिए ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उससे क्या है बच्चों को शुद्ध हवा मिलती है
2: जी।
3: बाहर निकलते हैं तो बहुत लोगों से मिलना जुलना होता है
2: जी।
3: जब मिलते जुलते हैं तो उससे अलग ही शारीरिक विकास भी होता है, योगा भी हो गया उसमें, मानसिक शांति भी हो गई, फिटनेस भी बढ़िया हो गई। तो इंडोर से बढ़िया है कि आप आउटडोर गेम ज्यादा आप प्रेफर करें।
2: रेनू जी, हमारी श्रोता बहनों को अपने बारे में बताइए कि आप अपने बच्चों का लालन पालन और पोषण कैसे करती हैं?
3: मेरा नाम रेनू कोठारी है, मेरे हस्बैंड यहाँ जेलर के रूप में तैनात हैं यहाँ देहरादून जेल में, और मेरे तीन बच्चे हैं, और मैं जहाँ तक समझती हूँ मेरे तीनों ही बच्चे पढ़ लिख लिए हैं। मेरा बेटा IIT खड़गपुर में है, बीटेक कर रहा है, मेरी बेटी NIT जालंधर में है, MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग कर रही है, बड़ी बेटी डिलॉइट में जॉब कर रही है।
2: बहुत ही अच्छी बात है।
3: मैं समझती हूँ मेरे हस्बैंड की जो नौकरी है वो बहुत व्यस्तता वाली, बहुत स्ट्रेसफुल, और मैंने उस स्ट्रेसफुल और उस व्यस्तता वाली नौकरी में बच्चों का पालन पोषण सही से कर पाई।
2: जी, कहते भी है ना, एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो आपने इसको भरपूर निभाया है। जी, बदलते परिवेश में बच्चों का लालन और पोषण पहले की अपेक्षा अब अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है, तो इस विषय पर रेनू जी आप क्या कहना चाहेंगी?
3: उसका कारण यही है कि परिवार एकल हो गया है
2: जी,
3: तो इसलिए पेरेंट्स को टाइम नहीं मिल पा रहा है। बच्चों को लैपटॉप दे दिया गेम खेलने के लिए, टीवी दे दिया तुम अपना कार्टून देख लो, बच्चे गलत दिशा में चले जाते हैं
2: जी।
3: पहले क्या होता था, पहले बच्चों को कहानियां सुनाई जाती थी,
2: बाबा दादी
3: दादा होते थे तो वो कहानियां सुनाते थे, बच्चों का विकास होता था, उन्हें पता होती थी कि पहले समय में क्या था, अब के समय में क्या है हम। और बल्कि दादा दादी पहले अपने गीता रामायण उनके बारे में भी बताते थे, बच्चों को अपने धर्म के बारे में भी पता होता था कि कौन राम है कौन कृष्ण है। अब तो यही नहीं पता है, अब तो बस खाली बच्चों से पूछो कार्टून कौन सा देख रहे हो, टॉम एंड जेरी पता होगा उनको।
2: बच्चों के हाथ में आपने देखा होगा कि अक्सर मोबाइल रहता है, इसके बिना ना वो खाता है ना पीता है और ना कोई और काम करता है। वैसे भी आजकल डॉक्टर 2 साल तक बच्चों को स्क्रीन से दूर रखने की सलाह देते हैं, तो ऐसे में उन्हें हम साइबर सुरक्षा के प्रति कैसे जागरूक बना सकते हैं?
3: उसके लिए आप बच्चों को किताबें लाके दो, किताबों का शौक लग गया तो समझो सब कुछ बढ़िया हो गया। आप लूडो लाके दो, कैरम लाके दो, चेस, एबाकस, पजल्स लाके दो। और मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि अगर बदल रहा है युग तो उसके साथ बहुत सारी अच्छी चीजें भी आ रही हैं, वो हम देख नहीं पा रहे हैं
2: जी। पहले कहते हुए थी ना कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, अभी उल्टा हो गया,
3: ये उल्टा हो गया
2: जी। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक विकास के लिए उनकी संतुलित दिनचर्या भी माता पिता ही सुनिश्चित करते हैं। एक जिम्मेदार, संवेदनशील और संस्कारी नागरिक बनाने की जिम्मेदारी भी घर के बड़ों की ही होती है। तो ऐसे में रेनू जी, आपके अनुसार बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उनकी संतुलित दिनचर्या क्या होनी चाहिए?
3: बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपने घर का खाना खिलाएं
2: जी।
3: आजकल क्या है, खुद अपने घर का खाना नहीं बना पा रहे हैं पेरेंट्स, तो वो अपना बाजार से लाते हैं, पाव भाजी खिलाई, पाव खिलाए, तो वो बच्चों पे गलत
2: जी, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। आजकल ज्यादातर माता पिता कामकाजी हैं, तो कई बार उन्हें मजबूरी में ही सही कई बार दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है।
3: हाँ, चलिए हम मान रहे हैं 5 डेज आप थोड़ा बहुत मैनेज कर लें, लेकिन आप कम से कम वीक में 2 दिन तो अपने बच्चों को दे ही सकते हैं।
2: बिल्कुल,
3: तो उस टाइम पे आप बच्चों को अपने घर बना हुआ खाना खिलाएं, उससे प्यार भी बढ़ता है, अपने हाथ से खिलाओ, बच्चों को बनाओ खिलाओ, तो उससे ममता भी बढ़ती है बच्चों को।
2: बिल्कुल, और शुद्ध खाना भी
3: मिलता है।
2: जी, अच्छा ये बताइए, एक माँ होने के नाते रेनू जी, आप इस बात को अच्छे से समझती हैं कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए माता पिता या समाज की क्या नैतिक भूमिका या जिम्मेदारी होनी चाहिए?
3: पहले समय में जो दादा दादी होते थे, पेरेंट्स होते थे, थोड़ा कठोर व्यवहार भी रखते थे।
2: बिल्कुल,
3: कि अगर किसी ने कोई गलती कर दी चांटा मार दिया या उन्हें समझा दिया डांट दिया। लेकिन आज के समय में थोड़ा युग भी चेंज हो रहा है, बच्चों की मेंटेलिटी भी थोड़ी अलग हो गई है, तो अब ये बहुत प्यार से हमें बच्चों को रखना है। पहला वाला आप छोड़ दीजिए कि हम तो ऐसे पिटते थे, बच्चों को प्यार से ही आप टैकल कर सकते हैं।
2: जी,
3: प्यार से।
2: हाँ जी, जैसे पहले के लोग सोचते थे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाने से बच्चे अनुशासन में रहेंगे,
3: लेकिन अब वो नहीं है, प्यार से ही कोई भी हो। अब आज के समय में ये बच्चे हैं, मैं तो कहती हूँ अपना हस्बैंड भी आप प्यार से बात करोगे तो तभी सही चलता है।
2: बिल्कुल, प्यार ही हर मर्ज की दवा है।
3: जी
2: रेनू जी, आपने आजकल देखा होगा कि बच्चे ही क्या, माँ बाप भी मोबाइल में लगे रहते हैं रील्स बनाने में और स्क्रॉल करने में, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
3: मेरा मानना है आज के समय में

0: माता पिता को बच्चों का दोस्त बनना पड़ेगा।
1: बिल्कुल
0: जब आप दोस्त बन जाएंगे, फिर आप अपनी हर बात अपने बच्चों से कह पाएंगे, बच्चे आपकी बात समझ सकेंगे, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको रील्स बनाने की और स्क्रॉल करने की। वो तो जब चलाते हैं, स्क्रॉल जब करते हैं,
1: जी
0: जब उन्हें कोई नहीं मिल रहा है घर में, ना बात करने के लिए, ना खेलने के लिए, जब कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर बच्चों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है।
1: जी और बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ही बढ़ गया है
0: बढ़ गया है। बच्चों से
1: इससे।
0: बात करिए, आपने आज स्कूल में क्या किया, आप चलिए आप जॉब करके आए, उसके बाद आप बच्चों से पूछिए आपने सुबह से क्या किया,
1: जी
0: क्या खेले, क्या तुमने खाया, थोड़ा सा उनको टाइम दीजिए। यही है
1: जी
0: कि जब बच्चों के मन में आपके प्रति डर नहीं रहेगा, तो वो सब बातें आपको खुलकर
1: जी
0: बताएंगे।
1: आजकल बच्चे अक्सर ज्यादातर मोबाइल को देते हैं, इससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो रहा है। ऐसे में उनका सर्वांगीण विकास हो, तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे?
0: मोबाइल देखने से, गैजेट चलाने से बच्चे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी कमजोर हो
1: जी
0: जा रहे हैं।
1: विकृत हो रहे हैं।
0: वो थोड़ी सी भी कोई परेशानी होती है, उसको झेल नहीं पाते हैं,
1: बिल्कुल स्टेप
0: तुरंत वो गलत
1: ले लेते
0: स्टेप ले
1: हैं।
0: लेते हैं, तो ये गलत है। वो
1: जी
0: तभी इसीलिए ही गलत है कि उनको सही दिशा नहीं दी गई।
1: जी
0: जब बच्चा छोटा होता है, हम अपने ऊपर ही ले लेते हैं, हमें भी जब हम छोटे थे हमारे साथ क्या क्या हुआ, आज भी हमें सब चीज याद है,
1: जी
0: लेकिन हमें ये पता होगा कि दादा ने ये कहा था, हमें ताई जी ने ऐसे कहा था,
1: गुरु की शिक्षा याद
0: हाँ,
1: होगी।
0: गुरु की शिक्षा याद होगी, मारपीट याद होगी।
1: जी
0: तो वो तभी तो है जब हमें प्यार मिला, हम लोग उन लोगों से बात करते
1: जी
0: रहे, जब हमारे पास बात ही नहीं है कुछ करने के लिए,
1: बिल्कुल
0: बस,
1: सही बोल रहे हैं आप।
0: तो कहाँ से विकास होगा, ना मानसिक विकास होगा ना शारीरिक विकास होगा, बच्चा गलत दिशा में जाएगा ही
1: जी
0: जाएगा।
1: माता पिता को बच्चों का दोस्त होना बहुत जरूरी है
0: दोस्त
1: इसलिए।
0: होना बहुत जरूरी है, बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताना बहुत जरूरी है। यदि हम बच्चों को भगवान के प्रति आस्था देंगे, तो शायद मुझे लगता है कि बच्चे
1: मानसिक
0: कभी
1: शांति मिलेगी।
0: मानसिक शांति भी मिलेगी और कभी बच्चा गलत दिशा में जाएगा ही नहीं। दूसरा, हम योगा की भी बात कर सकते हैं। शुरू से ही बच्चों को योगा सिखाना चाहिए
1: जी
0: थोड़ा थोड़ा, क्योंकि योगा क्या है, बच्चों के माइंड को भी काम रखता है, शांति
1: जी
0: देता है। जब बच्चों को शुरू से ही योगा की आदत पड़ जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो, मतलब बड़े से बड़ा भी कोई हुआ तो वो झेल ले जाएंगे उस चीज
1: जी
0: को, गलत स्टेप नहीं उठाएंगे।
1: तो बहनों, बदलते परिवेश में बच्चों का लालन पोषण एक बड़ी जिम्मेदारी है। आधुनिकता और संस्कारों के बीच संतुलन बनाकर ही हम बच्चों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। तो रेणु जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई और हमसे आपने अपने विचार साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
0: धन्यवाद, मुझे भी बहुत खुशी हुई इस विषय पे भी बात करने से और आपसे मिलकर भी। थैंक
1: जी
0: यू सो मच।
1: मुझे भी बहुत खुशी हुई। नमस्कार
2: बहनों, अभी आपने सुनी ये भेंट वार्ता, जिसका विषय था बदलते परिवेश में बच्चों का लालन पालन। इस विषय पर श्रीमती रेणु कोठारी से बातचीत कर रही थी डॉक्टर अनिता तितलियाल। तो बहनों, आपने जानकारी को ध्यान से सुना होगा और भविष्य में इसका लाभ भी आप जरूर लेंगे। चलिए, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये सुंदर सा लोकगीत।

बहनों, आज के दौर में मोबाइल और इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। बैंकिंग हो, ऑनलाइन खरीदी हो, या बिजली का बिल भरना हो, या किसी को पैसे भेजने हो, सब कुछ अब मोबाइल से ही हो जाता है। लेकिन जहां सुविधाएं बढ़ी हैं, वहां साइबर अपराधियों की चालाकियां भी बढ़ गई है। हर दिन हजारों लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी सावधानी हमें बड़े नुकसान से बचा सकती है। तो उससे आपको कैसे बचना है, इस बारे में हम आपको बताते हैं कि किस तरह से साइबर फ्रॉड होता है। तो सबसे आम तरीका है फर्जी फ़ोन कॉल का। कोई खुद को बैंक अधिकारी, पुलिस, बिजली विभाग या किसी संस्कारी संस्था का कर्मचारी बताकर आपसे आपके बैंक खाते, एटीएम कार्ड और ओटीपी और आधार की जानकारी मांगता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी बैंक या सरकारी संस्था फ़ोन पर कभी भी आपका ओटीपी, सीवीवी या पासवर्ड नहीं पूछती है। और दूसरा तरीका होता है फर्जी लिंक का। आपको मैसेज आता है कि आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा, केवीआईसी अपडेट करें, या फिर कोई इनाम जीतने का लालच आपको दिया जाता है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, आपकी निजी जानकारी साइबर ठगों तक

पहुंच सकती है। इसलिए आपको साइबर ठगी से सावधानी अपनानी होगी बहनों, और कुछ उपाय का प्रयोग आपको करना होगा, जैसे अपना OTP, PTM, ATM पिन, CVV पासवर्ड या UPI पिन किसी के साथ आप साझा ना करें। किसी भी अनजान लिंक पर आप क्लिक करने से पहले उसकी सत्यता को जरूर जांच लें कि वो सही है या गलत है। इस तरह से केवल आधिकारिक वेबसाइट और विश्वसनीय मोबाइल ऐप का ही प्रयोग करें। मोबाइल और बैंकिंग ऐप का पासवर्ड मजबूत रखें और समय समय पर बदलते रहें। सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी जरूरत से ज्यादा आप साझा ना करें। यदि कोई बहुत आकर्षक ऑफर या इनाम का दावा करे तो पहले उसकी पुष्टि करें, और अगर गलती से आपके साथ साइबर ठगी हो जाए तो घबराइए नहीं। जितनी जल्दी कार्रवाई करेंगे आप तो उतनी जल्दी आपके पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। सबसे पहले आप अपने बैंक को तुरंत सूचित करें। इसके बाद राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत कॉल करें या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। तो इस तरह से आप साइबर ठगी से बच सकते हैं। और अब इसी संदेश के साथ बहनों, समय हो रहा है आप सभी से विदा लेने का, पर आप हमें पत्र लिखकर ये जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा। कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपको कैसी लगती है ये भी आप हमें जरूर बताइएगा। तो जल्दी से हमारे कार्यक्रम का पता भी लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम घर गृहस्थी, अनुभाग कृषि जगत, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून। हमारा पिन है 248001, और jagatkrishi@gmail.com पर आप हमें अपने ईमेल्स भी भेज सकते हैं। अब अपनी बहन सुरुचि वर्मा को अनुमति दीजिए फिर से आपके लिए नई नई जानकारियां लेकर आने के लिए। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखते रहिए। बहनों नमस्कार।

0: अभी पहले सुन रहे थे कार्यक्रम घर गृहस्थी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को है अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही सहकारिता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों की मदद करने के लिए है। श्री शाह ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी सहकारी समितियों का डेटा एक जगह उपलब्ध है। श्री शाह ने कहा कि 9 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति बनाई गई हैं।
3: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्रदान करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि का रुख है। सेंसेक्स 576 अंक बढ़कर 78,340 और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,438 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: पहले मुख्य समाचार। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार इस वर्ष 2 लाख किसानों को 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा रही है। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा, मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक, सुरक्षा और यातायात सहित विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा। और सेवा पखवाड़े के तहत अल्मोड़ा में आयोजित जिला स्तरीय विशेष कार्यक्रम में लोगों ने उठाया विभिन्न योजनाओं का लाभ। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल, और अब समाचार विस्तार से। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार इस वर्ष 2 लाख किसानों को 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि ये योजना किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। डॉक्टर रावत केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हरिद्वार में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लगभग 30 लाख किसान सहकारिता विभाग से जुड़े हैं। सहकारिता क्षेत्र में किए गए सुधारों का परिणाम है कि आज उत्तराखंड के सभी सहकारी बैंक मिलकर करीब 300 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ में है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने के लिए इस वर्ष प्रदेश में 55 नई सहकारी बैंक शाखाएं खोली जाएंगी।
1: हम लोग हमारे जिले में हर समिति में बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं, और मैं कह सकता हूँ कि सहकारिता विभाग आज पूरे देश में लगभग करोड़ों लोगों का विभाग हो गया है। उत्तराखंड में भी 30 लाख किसान हमसे जुड़े हैं, और इस साल हम पूरे प्रदेश के 2 लाख किसानों को 0% पे ऋण दे रहे हैं। आज हमारे सहकारिता के जितने हमारे बैंक है वो 300 करोड़ रूपए के प्रॉफिट में आ गए, और इस साल हम 55 नई शाखाएं अपने प्रदेश में खोले हैं।
0: मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है। संबंधित विभागों और एजेंसियों को सतर्क रहने और आपसी तालमेल के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन को लेकर कई उच्च स्तरीय बैठकें की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान प्रदेश की जनता को कोई परेशानी न हो, इस दिशा में सरकार काम कर रही है।
2: माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कई बार आपदा से जुड़े जितने भी अधिकारी हैं उनकी बैठक भी हो चुकी है, और मानसून पे आपदा के दौरान कहीं पर भी कृषि क्षेत्र में कोई भी परेशानी प्रदेश की जनता को नहीं होगी, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है।
0: बागेश्वर जिले में भिगेड़ी ग्राम सभा के गिवाई गांव के प्रगतिशील किसान दरबान सिंह परिहार ने बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर पलायन की समस्या से जूझ रहे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए प्रेरणा का काम किया है। कभी वीरान पड़ी भूमि पर आज सेब के लहलहाते बगीचे हैं, और कई स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। दरबान सिंह परिहार ने वर्ष 2006 में अपने पैतृक गाँव से पलायन कर चुके परिवारों की करीब 60 नाली बंजर जमीन भूमि खरीदी। आज उनके बगीचे में करीब 1000 सेब के पेड़ हैं। बगीचे से प्रत्येक सीजन में लगभग 70 से 80 क्विंटल सेब का उत्पादन हो रहा है। बगीचे की देखरेख, सिंचाई, तुड़ाई और पैकेजिंग जैसे कार्यों के लिए उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया है, जिससे कई परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। दरबान सिंह परिहार का कहना है कि अगर इच्छा शक्ति, मेहनत और आधुनिक कृषि तकनीकों का सही उपयोग किया जाए तो पहाड़ की बंजर भूमि भी बेहतर आय का साधन बन सकती है।
3: अभी मेरे पास जो है 2200 या 300 के आसपास एक्टिव पेड़ है मेरे पास, जो M9 बेसिस पर और 111 बेसिस पर है। तो इसमें ठीक है कि प्रोडक्शन भी आएगा, थोड़ा देख रेख तो चाहिए और लेबर लगता है, ये दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पर ये सक्सेस हो सकता है। पानी की आवश्यकता चाहिए। अभी लघु सिंचाई वालों ने एक टैंक बनाया, वहाँ पर देखा होगा, तो उसकी भी मदद मिल जाएगी। तो गर्मी में इसमें कम से कम 5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है एक दिन में एक पौधे के लिए, तो वो जरूरी होगा तब ये सर्वाइव कर पाता है।
0: उद्यान विभाग के सहायक विकास अधिकारी शैलेश तिवारी ने कहा कि दरबान सिंह का सेब उत्पादन उत्कृष्ट है, और जिले के अन्य युवाओं को उनसे प्रेरणा लेकर बागवानी व स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
4: सर्वप्रथम तो इनके द्वारा जो है 250 पौधे खुद M9 पर M9 वैरायटी पर लगाए गए थे। तत्पश्चात विभाग द्वारा इनके वहाँ वर्ष 2022-23 में M111 सीरीज में जो है बगीचे की स्थापना की गई, उसमें इनको 80% जो है राज सहायता दी गई थी और काफी अच्छी फ्रूटिंग में है। वर्तमान में इस स्कीम में जो है सब्सिडी घटकर 60% हो गई है, लेकिन काफी अच्छी स्कीम है। M111 पे, M9 पे या सीडलिंग बेस्ड पे जो पौधे है उसके जो है आप बगीचे लगा सकते हैं और विभाग से मदद ले सकते हैं। क्षेत्र के युवाओं से मैं यही कहना चाहूंगा कि आइए, आप यहाँ विजिट भी कर सकते हैं और बिहारी से संपर्क भी कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं कैसे इन्होंने अपने बगीचे का रखरखाव किया है, कैसे इसकी स्थापना किया, कैसे वे प्रेरणा लेकर इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं।
5: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
0: हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में भगवानपुर थाना क्षेत्र में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े थानों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुरक्षा, यातायात और समन्वय से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान कांवड़ मेले के दौरान अपनाई जाने वाली सुरक्षा रणनीति, आपसी समन्वय, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी, भीड़ प्रबंधन और यातायात संचालन की योजनाओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। अधिकारियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सूचना के त्वरित आदान प्रदान और किसी भी आपात स्थिति से संयुक्त रूप से निपटने की रणनीति भी साझा की। बैठक के बाद सभी अधिकारियों ने संयुक्त रूप से कांवड़ मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान यातायात व्यवस्था, बैरिकेडिंग, डायवर्जन, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संबंधित पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता रहे। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार

समन्वय बनाए रखते हुए किसी भी स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सेवा पखवाड़े के तहत अल्मोड़ा के मल्ला महल परिसर में जिला स्तरीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य, कृषि, उद्यान और समाज कल्याण समेत

0: जागरूकता की कहानी सुनाई और बताया कि किस प्रकार सरकारी योजनाओं से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
1: मैं ग्राम कटारमल में एक 4 कमरों का होम स्टे चलाती हूँ, जिसमें मैंने दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के अंतर्गत 30 लाख का लोन लिया था, जिसमें मुझे सब्सिडी और ब्याज का पैसा दोनों मिल चुका है। इसके लिए मैं प्रशासन, जिला प्रशासन और पर्यटन अधिकारी और समस्त पर्यटन विभाग का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ।
2: मैं 2024 में ग्रामोत्थान में भी जुड़ चुकी हूँ। ग्रामोत्थान में मुझे अभी 2026 में एक वेस्ट साइड इटरीज मिली है, जिसका नाम बोला जाता है कि सड़क किनारे भोजनालय, तो वो भी मुझे अभी मिला है। उसको भी हम अपने समूह के माध्यम से चलाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा चलता है। तो मेरा जो व्यवसाय है बहुत अच्छा चल रहा है।
0: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में गढ़ी कैंट स्थित घट्टी गोला क्षेत्र के मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने मोटर मार्ग पर सुरक्षात्मक कार्यों का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने और बरसात के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना या मार्ग अवरोध होने की स्थिति से समय से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार इस वर्ष 2 लाख किसानों को 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा रही है। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा, मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक, सुरक्षा और यातायात सहित विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा। और सेवा पखवाड़े के तहत अल्मोड़ा में आयोजित जिला स्तरीय विशेष कार्यक्रम में लोगों ने उठाया विभिन्न योजनाओं का लाभ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। समय 1:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: गीता दत्त और साथियों की आवाज़ें थी। फिल्म का नाम था मिस्टर एंड मिसेज 55। शब्द थे मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत ओपी नैयर का था। आइए अब आपको सुनवाते हैं कल्याण जानन जी के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम मर्यादा।
1: आजा के आ गई रुत।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
0: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

0: ये सर था लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम था मेरी हमदम मेरी दोस्त। शब्द थे मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। श्रोता, इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ।
1: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
0: आप सुन रहे हैं फिल्म 100.5 बिगाहस पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 1:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़से जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से क्लेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
0: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिम्पल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिवकुमारी और रामदुलारी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
0: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
2: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने

0: से पूछा था, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
1: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, डायमंड सीड किसे कहते हैं?
1: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है?
1: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं?
1: 8800-440-5599 और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण, श्रोता संवाद। विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
2: ये धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है, हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
2: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
0: जी,
2: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
0: जी,
2: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
0: जी।
2: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है इसका नंबर है 8448440632। इस 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटा के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे
0: जी।
2: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है, और इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से,

0: कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
1: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है,
0: जी,
1: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
0: जी,
1: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुनकर के, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है, और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार के नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
0: जी।
1: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग, और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
0: जी,
1: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
0: जी,
1: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी, और उस नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
1: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना, और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा
0: जी।
1: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
0: जी
1: विद्यार्थी को
0: संकोच
1: किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए
0: जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
1: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यानपूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
0: जी,
1: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी।
1: कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है
0: जी।
1: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन, या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती, जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
0: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
1: जी, रिजल्ट से
0: जी।
1: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है।
0: जी हाँ।
1: ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाए, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है।
0: जी।
1: आज के समय में जो हम बात करते हैं, वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई की ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं,
0: बिल्कुल
1: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
0: जी।
1: तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है।
0: जी।
1: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है, बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
0: तो आराम कर लीजिए,
1: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहे। क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
0: जी हाँ जी।
1: तो वो गेम जो भी रहे, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
0: जी, जी।
1: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
0: जी।
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई किया, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं कि आप ऐसा करिए कि आप कोई चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें। क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसके अलावा देखिए, विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया, जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है, मनोबल बढ़ता है, और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना, ये चीजें यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स, यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य में एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
0: तालमेल
1: जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
0: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ। और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
1: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
0: ऐसा होता
1: उसके
0: है।
1: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं। अगर आपको जानकारी हो तो जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है।
0: जी,
1: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए, इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे, तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना है इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार, सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं, उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, उसमें बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी
0: जी। तो डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
1: देखिए, कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है।
0: हाँ।
1: एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
0: हो सकता है,
1: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है।
0: जी,
1: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है।
0: जी,
1: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना।
0: हाँ,
1: है
0: बिल्कुल,
1: उसकी पहचान करने और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है।
0: जी, उसी को।
1: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं। जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है,
0: हाँ होती है,
1: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने

0: कोई प्रयास किया वो
1: प्रयास तो
0: सफल
1: किया।
0: नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला।
1: जी
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए गलती से भी कुछ सीखा ना,
1: हाँ होता है
0: तो इसका मतलब क्या हुआ,
1: जी
0: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है।
1: जी
0: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि है उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो
1: जी
0: क्रियाकलाप हैं वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें।
1: जी
0: अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है
1: थोप
0: जैसे
1: देते हैं।
0: थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
1: हाँ प्रोत्साहित करें।
0: प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज किसी भी विद्यार्थी का, गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें। और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है,
1: जी
0: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें। और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं, उनमें भी समय दें। और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल,
1: जी
0: नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो
1: जी
0: टाइम
1: बिल्कुल
0: टेबल के अनुसार उसका हम
1: जी।
0: काम करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे, और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं?
0: देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूं,
1: जी
0: 8-44-844-0632, 8-44-844-0632। ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है, जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 1-44-16। ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं।
1: जी
0: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansel@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं। और एनसीईआरटी के वेबसाइट पर यूट्यूब में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं।
1: जी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए, और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: In the quarterfinals, in another encounter, Naomi Osaka produced one of the biggest upsets of Wimbledon 2026, defeating world number one Aryna Sabalenka 6-2, 7-6 to reach her first quarterfinal. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi embarks on six-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand, says it will strengthen India's Act East policy as well as outlook towards free and open Indo-Pacific. Minister for Cooperation Amit Shah says cooperative movement is entering a new phase of expansion through reforms, digitization and professional management. Heavy rain affects normal life in Mumbai metropolitan region. Traffic disrupted on Mumbai-Pune expressway due to landslides. At least 10 people killed and over 46 injured in Kiev after Russia launches ballistic missile attack. England storm into FIFA World Cup quarterfinals with dramatic 3-2 victory over Mexico. And in Wimbledon tennis, Novak Djokovic beats Roman Safiulin of Russia to reach men's singles quarterfinals. Naomi Osaka also reaches women's singles quarterfinals by defeating world number one Aryna Sabalenka. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
3: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश

0: लेकर ग्राम तक इन 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
0: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का

0: साल में किया है।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। दो दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
3: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। जगन्नाथ
1: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
0: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
1: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमे या एलिजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में 3री बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मैक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों जय हिंद। हमारे सैनिक साथी देश के जांबाज मातृभूमि की सेवा में रात दिन लगे रहते हैं, इसके लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। और ऐसे ही थे कैप्टन अनुज नायर, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इनके बारे में और भी चर्चा करेंगे कार्यक्रम में, पहले सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत।

सैनिक साथियों, कैप्टन अनुज नायर का जन्म 28 अगस्त 1975 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता सतीश कुमार दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में विजिटिंग प्रोफेसर थे, जबकि इनकी माता श्रीमती मीरा नायर दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकालय में कार्यरत थी। अनुज नायर ने दिल्ली के आर्मी पब्लिक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और अनुज बेहद ही प्रतिभाशाली और होनहार थे। इनकी खेलों में बहुत ही रुचि रहती थी। इन्होंने बॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, मैराथन दौड़, एयरगन शूटिंग जैसे कई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। सैनिक साथियों, इसके बाद अपने दादा लेफ्टिनेंट बख्शीराम से प्रेरित होकर सशस्त्र सेना में भर्ती होने का इन्होंने निश्चय किया और इनका चयन एनडीए के खड़कवासला के लिए हो गया। इसके बाद इन्होंने आईएमए देहरादून में प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसके बाद ये जाट रेजिमेंट की 17 जाट बटालियन में इन्होंने कमीशन प्राप्त किया, जो साहसी सैनिकों में कई युद्ध सम्मान के लिए जाने जाते हैं।

0: सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। सैनिक साथियों, कैप्टन अनुज नायर को राजस्थान के श्री गंगानगर में नियुक्ति मिली, जहां इन्होंने वहां अपने क्षेत्र कौशल को निखारा और 1999 में इधर कारगिल युद्ध शुरू हो चुका था। कैप्टन अनुज को जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा के पास तैनात किया गया और पता चला कि बड़े स्तर पर पाकिस्तानी सैन्य और अर्धसैनिक बल घुसपैठ कर रहे हैं और ऐसे में हमारी सेना इन्हें खदेड़ने के लिए तैयार कर रही है। और उन्हें खदेड़ने के लिए कैप्टन अनुज समेत अनेक सैनिक टुकड़ी को तैयार किया गया और कर्नल यूएस बाबा की कमान में कैप्टन अनुज को मुश्को घाटी में तैनात किया गया और मुश्को में दुश्मन की गतिविधियों को रोकने और उनकी वापसी के लिए तेजी लाना इन सब के लिए महत्वपूर्ण था। वहीं कैप्टन अनुज को 23 जून 1999 को पदोन्नत किया गया।
1: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की

सैनिकों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। श्रोतो, इस प्रकार से उस क्षेत्र में कब्जा करने की रणनीति बनाई गई और ऑपरेशन के प्लान के अनुसार कई क्षेत्रों पर कब्जा जहां किया जा चुका था वहां हमले को मुक्त करने के लिए एक योजना बनाकर कार्य शुरू किया गया। ऐसे में 6 जुलाई की रात को पिंगल क्षेत्र में उस जगह पर कैप्टन अनुज ने और उनके कई साथियों ने जब 4 बंकर का पता लगाया तो उसके लिए इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया और ऐसे में बंकर पर इन्होंने हैंड ग्रेनेड से हमला किया और उसे निष्क्रिय किया। इस तरह से बंकर को खाली करने का इनका अभियान जारी रहा। कैप्टन नायर को एक बार ऐसा रहा कि वे उनको निशाना बनाया गया और कैप्टन अनुज नायर घायल हो गए। ऐसे में वो हर पल अपने साथियों के लिए लगातार हमले के लिए निर्देशित करते रहे, लेकिन वो गंभीर चोटों के बावजूद अपने कार्यस्थल पर डटे रहे, लेकिन अंत में गंभीर चोट के कारण वे देश के लिए शहीद हो गए। वहीं बंकर को दुश्मन से मुक्त कराया गया। सैनिक साथियों से लड़ाई के दौरान कैप्टन अनुज नायर समेत 28 अन्य सैनिक शहीद हो गए थे। कैप्टन अनुज नायर के असाधारण वीरता, बहादुरी और नेतृत्व क्षमता के लिए भारत सरकार द्वारा महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। सैनिक साथियों, सलाम करते हैं कैप्टन अनुज नायर और वीर शहीदों को जिन्होंने देश के लिए प्राण गंवाए।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 3 बजे हैं, आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप मानव डोभाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी जिले के बीरोंखाल विकास खंड में 3 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में क्षेत्र का चौमुखी विकास हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देहरादून में सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, सहकारिता के माध्यम से किसानों की खुशहाली, ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को सीमा पार उच्च शिक्षा कार्यक्रम के तहत पड़ोसी देश नेपाल के छात्रों को प्रवेश देने की स्वीकृति प्रदान की। इससे दोनों देशों के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 90 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 48 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों को समयबद्ध कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया। हरिद्वार में गीता कुटीर घाट पर गंगा के तेज बहाव में बह रहे पंजाब के एक युवक को जल पुलिस की टीम ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए सकुशल बचाया। सूचना मिलते ही टीम ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया और युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क, संबंधित विभागों और एजेंसियों को सतर्क रहने और आपसी तालमेल के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। और मौसम विभाग ने बागेश्वर जिले में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में भी कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 3:02 हुए हैं, आइए सुनते हैं गाने नए तराने।

ये सर थे बेनी दियाल और अदिति शर्मा की। फिल्म का नाम था मेरे ब्रदर की दुल्हन। गीत था इरशाद कामिल का और संगीत सोहेल सेन का था। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। प्रीतम, अमित मिश्रा, शिल्पा राव और साथियों की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम है ए दिले मुश्किल। गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने।

ये थी पलक मुच्छल और अरिजीत सिंह, फिल्म का नाम था आशिकी टू। गाने ने तराने का ये अगला गीत श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज़ भी, फिल्म का नाम है एजेंट विनोद। गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

ये सर थे कि क्या जयेश गांधी की फिल्म का नाम था आहिस्ता आहिस्ता। श्रोताओं, गाने नई तरानी प्रसारित किए जा रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत बिलाल सईद की आवाज में, फिल्म का नाम है बार बार देखो। कुमार के शब्द हैं और संगीत बिलाल सईद का।

0: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: समय 3:34 और 26 सेकंड हुए हैं। श्रोता सुन रहे हैं गानी नई तराने आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत अरमान मलिक की आवाज में, फिल्म का नाम है असहर।

बचना ए हसीनो, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म से गीत, आवाज़ें थी के और साथियों की। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फिल्मी गाना। आवाज़ें हैं अमिताभ भट्टाचार्य और अनुषा मणि की, फिल्म का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस।

ये आवाज़ें थी सुखविंदर सिंह, अलका याग्निक और साथियों की। फिल्म का नाम था बीवी नंबर वन। गीत को संगीतबद्ध किया था सुखविंदर सिंह ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं गानी नए तराने का ये अंतिम गीत अरिजीत सिंह, नीति मोहन और साथियों की आवाज़ में। फिल्म का नाम है कलंक। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार हैं प्रीतम।

श्रोता सुन रहे थे गाने नहीं तराने। हम आपको याद दिला दें, शाम 4:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा। एक कलाकार, आज के कलाकार होंगे अभिनेता रणवीर सिंह। FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 4 बजने को हैं। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे FM न्यूज़ हेडलाइंस।

ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप मानव डोभाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से टनकपुर नांदेड़ एक्सप्रेस, नांदेड़ मुंबई एक्सप्रेस और शाहजहांपुर तक विस्तारित टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का शुभारंभ किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोकभवन में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत गोद लिए गए 13 टीबी रोगियों को मासिक पोषण किट वितरित की। उन्होंने रोगियों से व्यक्तिगत संवाद कर उन्हें उपचार के दौरान नियमित दवा, पौष्टिक आहार और संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी जिले के बीरोंखाल विकास खंड में 3 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देहरादून में सहकारिता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली सहकारी समितियों को सम्मानित किया गया। आगामी 30 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज की। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने यात्रा से जुड़ी सभी मूलभूत व्यवस्थाएं 25 जुलाई तक पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड विशेष कार्यबल एसटीएफ ने बच्चों से संबंधित ऑनलाइन यौन शोषण व आपत्तिजनक सामग्री के प्रसारण के मामलों पर सख्त कार्रवाई करते हुए जून माह में राज्य के विभिन्न जिलों में 52 प्राथमिकी दर्ज की। एसटीएफ ने कहा है कि

0: से अपराधों के प्रति पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति है और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में बिना वैध लाइसेंस सार्वजनिक परिवहन सेवाएं संचालित करने वाले टूर ट्रैवल ऑपरेटरों के खिलाफ परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान 20 ऑपरेटरों का चालान किया गया। और मौसम विभाग ने बागेश्वर जिले में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में भी कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। शाम के 4:03 हुए हैं। लीजिए शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिए पार्थुराय चौधरी का संतूर पर बजाए राग हंसध्वनि।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पार्थ राय चौधरी का संतूर पर बजाय राग हंसधनी। FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। शाम के 4:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम एक कलाकार। श्रोतों, कार्यक्रम में एक कलाकार में आप सभी का स्वागत है। श्रोतों, उभरते फिल्मी सितारों में एक बहुत ही लोकप्रिय नाम है रणवीर सिंह, जिनका पूरा नाम है रणवीर सिंह भवनानी, जो हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 6 जुलाई 1985 को मुंबई में हुआ था। इन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ देते हुए सुनवाते हैं इनकी फिल्म से कार्यक्रम का ये पहला गीत।

श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम में कलाकार, आज के कलाकार अभिनेता रणवीर सिंह। श्रोताओं, इनके पिता का नाम जगजीत सिंह भवनानी और माता का नाम अंजू भवनानी है। इन्होंने मुंबई के एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और इसके बाद ही अमेरिका के यूनिवर्सिटी इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लू मिशन गठन में इन्होंने वर्ष 2008 में कला में डिग्री प्राप्त की और उसके बाद ही अभिनय की कक्षाओं में जाया करते थे। और बचपन से इन्हें अभिनेता बनने की ख्वाहिश थी और स्कूलों में ये उस समय कई नाटकों में वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लिया करते थे और यहीं से इनके मन में फिल्मों में जाने के लिए शौक बराबर आगे बढ़ा।

श्रोता, इस प्रकार से पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 2007 में ये मुंबई लौटी और इन्होंने वहाँ पर कई कंपनियों में कॉपीराइटर के रूप में कार्य किया और इस तरह से इन्होंने सहायक निर्देशक के रूप में भी कार्य किया। पर अभिनय के शौक के चलते इन्होंने उसे छोड़ दिया और छोटी छोटी भूमिकाओं के लिए ये बुलाए जाते थे। पर 2010 भी इनके जीवन में एक नया बदलाव आया जब इन्होंने 2010 में फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए ऑडिशन दिया और जिसके लिए चुने गए और यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में इनके अभिनय को खूब सराहना मिली और इस फिल्म में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। आइए आपको सुनवाते हैं इनकी फिल्म से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम में कलाकार, आज के कलाकार अभिनेता रणवीर सिंह। श्रोता, इस फिल्म की सफलता के बाद इन्होंने कई सारी फिल्मों में भूमिकाएं निभाई हैं और इन्होंने साथ ही जिनमें मुख्य रही हैं वो हैं लुटेरा, गोलियों की रासलीला रामलीला, बेफिक्री, दिल धड़कने दो, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, सिम्बा, सूर्यवंशी, जयेश भाई जोरदार, रोगी और रानी की प्रेम कहानी आदि। आइए आपको सुनवाते हैं इनकी फिल्म से कार्यक्रम का ये अगला गीत।

श्रोता, इस प्रकार से इन लगातार फिल्मों की सफलता के बाद इन्होंने वर्ष 2025 में सिंघम अगेन और वर्ष 2026 में धुरंधर जैसी फिल्मों में अभिनय किया और इन फिल्मों की लगातार सफलता के बाद इनका लगातार अभिनय और सफलताएं जारी है। आपको सुनवाते हैं इनके द्वारा अभिनीत फिल्म से कार्यक्रम में अगला गीत।

श्रोताओं, लगातार अभिनेता रणवीर सिंह की लोकप्रियता के बाद इनकी जो आदमकद मोम की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं वो हैं लंदन और सिंगापुर में, और साथ ही इनकी फिल्मों में योगदान के लिए इन्होंने 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया है। और ये फिल्म फेयर का पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है फिल्म बैंड बाजा बारात, बाजीराव मस्तानी, गली बॉय और पद्मावत आदि। श्रोताओं, आज इनका जन्मदिन है, एक बार फिर से इन्हें ढेरों जन्मदिन की बधाइयां देते हुए सुनवाते हैं इनकी फिल्म से कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। फिल्म का नाम है धुरंधर।

0: सिंह। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5 बजने को है, अब समय हो चला है समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि 3 देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन को एक नए चरण में प्रवेश मिला है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। यह देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के लिए राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य आपदा मोचन बल के साथ स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। खेलों में फीफा फुटबॉल विश्वकप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मेक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारे आज के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज रात्रि 9:15 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम स्पॉटलाइट और क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून का विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण शाम 7:50 पर प्रस्तुत होगा। अब से थोड़ी ही देर में प्रसारित होगा युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी 5:10 पर और आज डिजिटल मार्केटिंग करियर के विषय में बातचीत होगी। शाम 5:45 पर हमारे पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं के कार्यक्रम ग्राम जगत में आज चर्चा का विषय है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर और हमारे किसान साथी सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत शाम 7:00। 8:00 हिंदी वार्ता कार्यक्रम के अंतर्गत श्री कमल किशोर डुकलान द्वारा वार्ता, विषय है लोक परंपराओं में भारतीय ज्ञान।

हेमंत कुमार के स्वर में आप सुनेंगे गीत सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत रात्रि 8:15 बजे कवि गोष्ठी, रात्रि 10 बजे प्रतिभागी होंगे मीरा शर्मा, श्री दीपक अरोड़ा एवं श्री राकेश जैन। रात्रि 10:30 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। श्रोताओं, ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब नजर डालते हैं कल की तीनों सभाओं के कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर।

कल दिल्ली केंद्र से रात्रि 9:15 बजे कार्यक्रम स्पॉटलाइट एवं 10 बजे लखनऊ केंद्र से खेल दर्पण कार्यक्रम का प्रसारण होगा और कल शाम 7:50 पर हमारे क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून द्वारा प्रस्तुत होगा विशेष कार्यक्रम सप्ताह सार।

कल सुबह 7:30 बजे शैल संगीत के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे निशा के स्वर में गढ़वाली लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा 8:30 बजे एवं क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति जिले की चिट्ठी कल सुबह 9 बजे। सदाबहार फिल्मी गीत आप सुनेंगे कल सुबह 9:05 पर। सुबह 10:35 पर श्रोता सुनेंगे विविध कलाकारों के स्वर में ब्रज लोक संगीत और व्हाट्सएप फरमाइश का समय रहेगा सुबह 11 बजे और साथ ही आपकी फरमाइश रात्रि 10:30 बजे। दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत के अंतर्गत शोभा माथुर के स्वर में आप सुनेंगे गीत। 12:30 बजे हमारी बहनों के कार्यक्रम महिला जगत के अंतर्गत हमारी बहनें सुनेंगी स्वास्थ्य भेंट वार्ता पर आधारित कार्यक्रम मॉनसून में स्वच्छ रहे स्वस्थ रहे और संक्रमण से बचे। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र पर विशेष आप सुनेंगे 12:30 बजे। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत 4:02 पर आप सप्तक शर्मा द्वारा 3 ताल में तबला वादन सुनेंगे। गायक कैलाश खेर के गीत आप सुनेंगे एक कलाकार कार्यक्रम में कल 4:30 बजे। हमारे दैनिक कार्यक्रमों का समय वही युववाणी 5:10। हमारे पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम जगत 5:45 और आप सुनेंगे श्री विपुल नेगी से विनय ध्यानी की बातचीत। विषय है स्वस्थ शरीर का आधार पौष्टिक आहार और व्यायाम। 7:00 बजे हमारे किसान साथियों के लिए कार्यक्रम कृषि जगत के अंतर्गत 1 से 7 जुलाई तक चलने वाले वन महोत्सव सप्ताह पर आप सुनेंगे चर्चा। इसी के साथ हमारे आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का विवरण समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। 5:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: हर दिन लाता है अनुभवों की एक नई निशानी, बस नजर हो सजग और दिल में हो समझदारी की कहानी।
1: तो आइए हर कदम सोच समझकर बढ़ाएं, सकारात्मक सोच के साथ हर पल को बेहतर बनाएं। हेलो, हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। हम हैं आपके होस्ट और दोस्त, मैं शिवानी कंडवाल
0: और मैं अंशिका शर्मा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी ये खूबसूरत शाम मुस्कुराहटों के साथ बीत रही होगी।
1: और आइए इस शाम को और खूबसूरत बनाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला म्यूजिकल ट्रैक आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी प्रिंस।

0: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
1: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
2: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
1: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
0: दोस्तों, आज के समय में अगर कोई ऐसी स्किल है जिसकी मांग हर छोटी बड़ी कंपनी में है और जिसे सीखकर आप कम समय में अच्छी नौकरी या घर बैठे कमाई शुरू कर सकते हैं, तो वो है डिजिटल मार्केटिंग।
3: और अगर आप ऐसा करियर चाहते हैं जिसमें ग्रोथ हो, अच्छी सैलरी हो और फ्रीलांसिंग के भी भरपूर अवसर मिलें, तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार प्रसार करना, और आज के समय में ये सबसे ज़्यादा डिमांड वाला और तेज़ी से बढ़ता हुआ करियर भी बन चुका है।
3: बिल्कुल, और शिवानी, सबसे अच्छी बात ये है कि आप सिर्फ 3 से 6 महीने में इसकी ज़रूरी स्किल सीख कर जॉब के लिए तैयार हो सकते हैं।
0: बिल्कुल, और बात करें हम डिजिटल मार्केटिंग में मौजूद करियर विकल्पों की, तो दोस्तों सबसे पहले है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO एक्सपर्ट। इनका काम वेबसाइट या कंटेंट को गूगल के पहले पेज पर रैंक करवाना होता है।
3: और दूसरा विकल्प है दोस्तों सोशल मीडिया मैनेजर यानी SMM। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ब्रांड की मौजूदगी बढ़ाने और लोगों से जुड़ाव बढ़ाने का काम करता है।
0: इसके बाद आता है दोस्तों पे पर क्लिक यानी PPC या एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट। ये गूगल एड्स, सोशल मीडिया एड्स और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पेड विज्ञापन चलाने की जिम्मेदारी निभाते हैं।
3: और एक और महत्वपूर्ण विकल्प है दोस्तों कंटेंट मार्केटर या कॉपीराइटर। इसका काम वेबसाइट, ब्लॉग और सोशल मीडिया के लिए आकर्षक कंटेंट और विज्ञापन तैयार करना होता है।
0: और दोस्तों वहीं बात करें ईमेल मार्केटर की, तो ये ईमेल के ज़रिए ग्राहकों तक प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की जानकारी पहुंचाकर उनकी जो बिक्री होती है उसे बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं।
3: बिल्कुल शिवानी, और अब सवाल ये आता है कि डिजिटल मार्केटिंग को करियर के रूप में क्यों चुनें?
0: तो दोस्तों सबसे बड़ी वजह तो ये है कि आज लगभग हर छोटा बड़ा बिजनेस ऑनलाइन आ रहा है, और ऐसे में डिजिटल मार्केटर्स की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों इस विषय पर आगे भी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल अंशिका क्या कहती हो, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक हो जाए?
3: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं ये ट्रैक फिल्म गुंडे से नेहा भसीन और बप्पी लहरी की आवाज़ों में।

0: स्वागत है दोस्तों आपका। और गीत से पहले हम चर्चा कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाने के बारे में। और अगर आप चाहें तो किसी कंपनी में फुल टाइम नौकरी कर सकते हैं, या फिर घर बैठे बैठे फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क के ज़रिए भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। और साथ ही इस फील्ड में काम करने के समय और जगह दोनों में काफ़ी लचीलापन मिलता है।
1: और दोस्तों, अब बात करते हैं इस क्षेत्र में सफल होने के लिए ज़रूरी स्किल्स और टूल्स की, जिन्हें सीखना बहुत ज़रूरी है। और इन स्किल्स को आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या अपने आसपास के किसी भी अच्छे संस्थान से सीख सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है कैनवा। कैनवा का इस्तेमाल सोशल मीडिया पोस्ट और ग्राफिक डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है।
1: इसी के साथ गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल वेबसाइट की परफॉर्मेंस को समझने और ट्रैक करने में मदद करते हैं।
0: और दोस्तों, अगर बात करें सैलरी की, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो शुरुआत में आपको लगभग 3 लाख से 5 लाख रुपए सालाना का पैकेज मिल सकता है।
1: बिल्कुल। और जैसे जैसे दोस्तों आपका अनुभव और स्किल्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे आप मैनेजर या हेड जैसे पदों तक आप पहुंचते हैं, जहां 10 लाख से 20 लाख रुपए सालाना या उससे भी ज़्यादा सैलरी मिलने की संभावना इस क्षेत्र में रहती है।
0: तो दोस्तों, अगर आप कम समय में एक ऐसी स्किल सीखना चाहते हैं जिसकी आने वाले वर्षों में भी ज़बरदस्त मांग बनी रहे, तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए एक शानदार करियर विकल्प हो सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा अंशिका। सही ट्रेनिंग, लगातार प्रैक्टिस और नए ट्रेंड्स के साथ खुद को अपडेटेड रखकर अगर आप इस क्षेत्र में बेहतरीन करियर बना सकते हैं।
0: बिल्कुल। और इसीलिए अगर आपका सपना है दोस्तों एक अच्छी नौकरी पाना, फ्रीलांसिंग के ज़रिए कमाई करना, या अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना, तो आज ही डिजिटल मार्केटिंग सीखने की शुरुआत कीजिए। दोस्तों, कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, सुनते हैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का ये गाना अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में।

0: दोस्तों सोचिए, अगर आपकी सभी मेडिकल रिपोर्ट्स, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस और हेल्थ रिकॉर्ड एक ही जगह सुरक्षित मिल जाएं और ज़रूरत पड़ने पर सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में डॉक्टर के साथ शेयर भी हो जाएं, तो कितना आसान हो जाएगा ना।
1: हाँ बिल्कुल शिवानी, और यही सुविधा देता है आभा ऐप, यानी कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता।
0: तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आभा यानी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आखिर है क्या।
1: तो दोस्तों, आभा केंद्र सरकार की एक डिजिटल हेल्थ आईडी है। इसकी मदद से आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर की पर्चियां और दूसरे हेल्थ रिकॉर्ड एक सुरक्षित जगह ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर के साथ आसानी से शेयर भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और दोस्तों आभा पोर्टल नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी NHA का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ रजिस्ट्रेशन करने पर आपको 14 अंकों का एक यूनिक आभा नंबर मिलता है, और ये नंबर बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट नंबर की ही तरह काम करता है और आपके सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स को सुरक्षित डिजिटल रूप में जोड़कर भी रखता है।
1: यानी कि सारे मेडिकल रिपोर्ट सेफली सिक्योर्ड रखता है। और शिवानी, फायदे भी तो कितने हैं आभा कार्ड के।
0: हाँ अंशिका, एक तो सभी मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं एक ही जगह आपको सेफली सिक्योर्ड मिलते हैं, और पुरानी जो फाइल्स होती हैं और पर्चियाँ होती हैं उन्हें साथ लेकर लेकर जाने का कोई झंझट भी नहीं होता।
1: और तो और, डॉक्टर की अनुमति से अपनी रिपोर्ट और लैब टेस्ट कुछ ही सेकंड में ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं।
0: और दोस्तों कई हॉस्पिटल्स में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक भी आप कर सकते हैं, जिससे लंबी लाइनों में बचकर आपको काफ़ी समय की बचत भी हो जाती है।
1: बिल्कुल। और शिवानी, आयुर्वेद, होम्योपैथी और अन्य आयुष सेवाओं तक पहुंचने में भी आसानी हो जाती है।
0: सही कहा दोस्तों, आभा कार्ड बनवाना भी बिल्कुल मुफ्त है और इसे आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। अगर वेबसाइट से बना रहे हैं तो आभा की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना है, क्रिएट आभा नंबर पर आपको क्लिक करना है। पहचान के लिए आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आप चुन सकते हैं, अपना आधार कार्ड नंबर आपको डालना है और उसके बाद मोबाइल पर आए OTP से वेरीफाई करना है, और उससे आपकी प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाएगी।
1: और दोस्तों, अगर आप मोबाइल ऐप से बना रहे हैं तो सबसे पहले गूगल प्ले से आप आभा ऐप डाउनलोड करके अपनी आभा आईडी बना सकते हैं। और शिवानी, कई लोगों के मन में ना सवाल होगा कि आभा और आयुष्मान कार्ड एक ही है क्या। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नहीं, आभा और आयुष्मान कार्ड बिल्कुल भी एक नहीं है।
0: बिल्कुल, आभा कार्ड आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने और डिजिटल बनाने के लिए काम आता है।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, आयुष्मान कार्ड आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाला स्वास्थ्य बीमा कार्ड है। तो अगर आपने अभी तक अपना आभा कार्ड नहीं बनवाया है तो आज ही इसे मुफ्त में बनवाइए।
0: और अपने सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित और डिजिटल बनाइए। दोस्तों ये एक छोटी सी पहल है जो भविष्य में आपके इलाज को और भी आसान बना सकती है। तो इसी के साथ आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी डंकी।

0: वेलकम बैक दोस्तों। ज़रा सोचिए दोस्तों, एक ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ सफ़ेद बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती हो, जहाँ ना कोई शहर, ना कोई ट्रैफिक, ना बाज़ार, सिर्फ बर्फीली हवाएं, विशाल ग्लेशियर और अनगिनत पेंगुइन्स हों।
1: भाई शिवानी, सुनने में किसी फिल्मी दुनिया जैसा नहीं लग रहा है?
0: हाँ बिल्कुल,
1: लेकिन पता है दोस्तों, ये जगह सचमुच में हमारी धरती पर मौजूद है और इस जगह का नाम है एंटार्क्टिका। तो आइए आज बिना टिकट और बिना किसी खर्च के शब्दों के सहारे निकलते हैं एंटार्क्टिका की एक रोमांचक यात्रा पर।
0: दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि एंटार्क्टिका आखिर है क्या। तो दोस्तों एंटार्क्टिका दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी महाद्वीप है और ये पृथ्वी के साउथ पोल पर स्थित है और इसकी लगभग 98% सतह मोटी बर्फ़ से ढकी हुई है। और दोस्तों कई जगहों पर तो ये बर्फ़ 2 से 4 किलोमीटर्स तक मोटी होती है।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे तेज़ हवाओं वाला महाद्वीप भी कहा जाता है। यहाँ सर्दियों में तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इतनी ठंड कि कुछ ही मिनटों में पानी बर्फ बन जाए। लेकिन शिवानी, अब सवाल ये आता है कि क्या वहाँ कोई रहता है?
0: तो दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि एंटार्क्टिका का कोई स्थायी निवासी है ही नहीं। यहाँ केवल वैज्ञानिक, रिसर्चर्स और कुछ सहायक कर्मचारी कुछ महीनों या साल भर के लिए रिसर्च स्टेशंस पर रहते हैं और अलग-अलग देशों के वैज्ञानिक यहाँ जलवायु परिवर्तन, समुद्री जीवन, अंतरिक्ष और पर्यावरण पर रिसर्च करते हैं।
1: और अगर बात करें कि उनके खाने पीने की, तो क्योंकि अंटार्कटिका में खेती होती नहीं है, इसलिए अधिकांश खाद्य सामग्री दूसरे देशों से जहाज़ या विमान के माध्यम से पहुंचाई जाती है। वैज्ञानिकों के लिए चावल, दाल, पास्ता, सब्जियां, चाय, कॉफ़ी जैसी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। और ठंड से बचने के लिए लोग अधिक कैलोरी वाला भोजन खाते हैं ताकि शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिल सके।
0: और दोस्तों अब अगर संस्कृति यानी कल्चर की बात करें तो एंटार्क्टिका की अपनी कोई स्थानीय संस्कृति नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले बात की कि मूल निवासी ही कोई नहीं रहता वहाँ। लेकिन दुनिया के अलग-अलग देशों से आए वैज्ञानिक अपने अपने त्यौहार और परंपराएं मिलकर मनाते हैं। सोचिए एक ही जगह पर भारत, जापान, अमेरिका, फ्रांस और कई देशों के लोग साथ बैठकर खाना खा रहे हों और अपने अनुभव साझा कर रहे हों। बस यही इस देश की सबसे सुंदर बात है।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आपको अंटार्कटिका जाने का अवसर मिले तो सबसे पहले आप देखेंगे वहाँ के विशाल बर्फ़ के पहाड़, जिन्हें आइसबर्ग कहा जाता है। और वहाँ आपको हज़ारों की संख्या में पेंगुइन दिखाई देंगे, जो बर्फ़ पर चलते हुए किसी प्यारी सी परेड का हिस्सा लगते हैं। और इसके अलावा सील, व्हेल और कई समुद्री पक्षी भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये शब्दों वाली यात्रा पसंद आई होगी। और अगर कभी मौका मिले तो इस अनोखी दुनिया को अपनी आंखों से ज़रूर देखिएगा। आइए अब ले चलते हैं आपको म्यूजिकल दुनिया में। सुनवाते हैं आपको मीका सिंह, प्रकृति कक्कर की आवाज़ों में मुबारका फिल्म का ये ट्रैक।

0: दोस्तों, देखते ही देखते वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है कि आज की ये मुलाकात आपको पसंद आई होगी, और अगर आप भी अपने विचार या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी द्वारा निदेशक आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, पिन कोड है 248001।
1: दोस्तों, इसी के साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है youthddn@gmail.com, और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर भी संदेश भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। आपके संदेशों और सुझावों का हमें हमेशा इंतज़ार रहेगा। फिलहाल आज के लिए मुझे यानी शिवानी कंडवाल
0: और मुझे यानी अंशिका शर्मा को दीजिए इजाज़त। आपसे जल्दी मुलाकात होगी।
1: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:45 होने को है। प्रस्तुत है पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत कार्यक्रम सुनने वाले एक मेरा प्यार भरा नमस्कार। हाँ, आशीष चौहान सबका स्वागत करूं और स्वागत के साथ ही श्री महासु जी महाराज से ही प्रार्थना करूं कि हमारे जो इच्छा भी श्रोता है से सब यार राजी खुशी चाहे रोए, श्रोताओं राजी खुशी रोए भी चाहे और राजी खुशी आप सब भौंदे भी है। और जो हमारा इलाका कार्यक्रम है सा आप लोग पता ही है कि कौशा कौशा चलो आए, जैसे गीत है कड़वाली जौनसारी और कुमाऊनिया में आप लोगों की सुना दे। साथ ही साथ जो हमारी इलाके की चर्चाएँ हैं से ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती और जल संरक्षण के ऊपर। और श्रोताओं जो है कि हमारी वार्ता और भेंट वार्ता से ही है जनजातीय गौरवमयी संगीत विषय पर लोक गायक दरबान नेथवाल से विनय ध्यानी की बातचीत और साथ ही साथ हमारे विज्ञापन। श्रोताओं जैसे कि आप लोग आजकल लागी देख दे कि मौसम मुझ भी हेला बिया कणिक बदलाव देखने को लागी मिलता, जैसो कि हमें लागी देख दे कि पानी भी लागी लाग दो और गर्मी से भी हमोक कणिक राहत लागी मिलती। पर तत्त के साथ हमोक ऐजा भी पड़ता ध्यान रखना कि चुएल जो शैला भी पानी लागी लाग दो तो हमोक जब हम बारिश जाओ तो भी बरसात हो ही या पातों हो ही या वो की छतरी हो ही सही चीज़ हमोक अपने साथ पड़ दिन नहीं। और इत का विशेष ध्यान है जा कि जला जला जैसे पानी लागो तो हमोक आगे पड़ दे कि पानी लागी ही लाग दो कि लागो ना लागी की तो तुक जो है जी सावधानी पड़ती बोलत नहीं। और ओके जी जोसों एक सही है बेलाड़कोटी के स्कूल भी खुली गए तो स्कूलों के साथ साथ अब सबों के ही हमों के जो हमारे माँ बाप है त्यों का भी अभी त्यों के भी अभी स्कूल नहीं समझो जब लाड़कोटी के तो त्यों के वो सौंपो है तो त्यों भी अभी समय से वो पढ़ दो जोड़ो। और वो का त्यों के साथ भी अब जो हम अपने लाड़कोटी को स्कूल आके भेजो हैं तो त्यों को भी छतरी राखी एक साथ दे या पातों राखी दे कि भाई जोला पानी लागो तो ला तुम इतका ये लाया और आया उंडे तो पानी के लिए बीज दे भी ना आती। तो ये छोटी छोटी बात है अमुक जत का अमुक ध्यान पड़ता रखना। और श्रोताओं बाकी सब या जो है आप लोग अच्छे भी होंगे पो है और हमारे जो पहाड़ू है साहब काम निपटाई पा आलू का है और रो का काम जो हमारा का बोलो मार रोपाई का बोलो जो तू काम रोड़ियाई बोलो से वो भी निपटी पाओ अब धीरे धीरे कोणी कैसे ही बोचलो कोई की तो नाते से भी निपट पाए। और अब हमारे जौनसार बावर मोज या गढ़वाल मोज या कुमाऊ मोज तो अब हमारे मेड़े के शुरू हुई त्यौहार जो तू काम बोलो और त्यौहार छाई भी जरूरी है काई की इच्छा जब काम रखा करी तो सीधा है कि जब मेड़े हो तो तुतले हमारी जो पूरे महीने भर की जो हमारी ईद की थकान हो से बिल्कुल ख़त्म नट हो और से ऐसी ख़त्म की जब सब बेत का इंतजार करो कि जो हमारे अब यात्रा लग दी नुनाई होली और रोके मेड़े होले तो सब या जो हमारे बाहर के लोग है से वो बेचारे तो बात कर रखो कि जब भी हमारे बिला मेड़े होले तो वह हमें घर जाते। और मेड़ियों का एक खास एक जो हमारे त्यौहार है तो उसका खास एक बात है जी कि हमारे जो इच्छे भी लोग है से सब एक जगह कोठे हुई करी एक जगह अपने गीत लाओ और सब चीज़ें जो है मिला भी आपस में जो हमको कदी ना मिली ध्यान टूटिया रोई टूटिया या हमारे जी बाबा तो सब जो है तोला कोठे हो वहीं और तो एक एक गीत भी लाऊँ और सब जो संस्कृति हमारी सही भी देखूँ पो तो ये और यही चीज़ असम भी जरूरी है जहाँ मुई अपने संस्कृति बचाने है तो ये जिसनी चीज़ हमको करनी पड़ती। और श्रोताओं हम आप लोगों के साथ बनी रंदा भी और प्रोग्राम का मोर आगा से बढ़ाऊँ तो आओ हम आप लोगों जौनसार की तरफ न आओ सुनो एक जौनसारी गीत दुनिया सियाणा हारुल गोपाल दास व साथी के स्वर मुझ।

0: यार प्लीज जल्दी।
1: दूसरा कोई मैच है क्या?
2: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
1: हाँ यार उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
3: पर बैंकिंग में नहीं।
4: वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
3: सीनियर सबसे पहले, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं भी लेती है आप लोगों की सुनी रेबार और रेबार की आगे लेती सुनी चौंसारी हारूल दुनिया सियाणा। और जो मेरी बात लेती अब लोग लाई कि जो भी हमारे त्यौहार है तो जब से शुरू हो तो बेचनी हारूल आप लोगों का नहीं कोई चीज़ देखने को मिलो और कोई चीज लोग जो है गीतू पांडे लागो है हारूल मुझे आकाश जो है ध्यान टूड़िया पोचिंडा मोरत और लाइव मनोरंजक जो एवं सा अच्छा लागो सबुक। और श्रोताओं आज कहला का जो एक विषय हमारे हम बेरोसों हैं सब जाई खास भी और हम सबुक तो तुझ विचार भी चाहिए करो ना जल संरक्षण का। जल संरक्षण का जो अर्थ है सा या जा कि पानी का मुई कोशे जो है सोची समझी करी उपयोग चाहिए करो ना तत्का और पानी की जो बर्बादी है तो तुक रोकने हमुक सबुक प्रयास चाहिए करो ना। हेतु जो है पानी की धरती आज सीधे ऐसो की जैसे बोले ना कि जो अमुक पानी लागू है तो कोई चीज़ जरूरत हो अमुक पानी की तो कोई की ना कोई की अमुक तत्का को बचाओ कोश चाहिए करो ना। जैसे हम बोले ना कि पानी बाल्टिया राखी की छो तैच या कोई की ऐस दो कि गोडा धौसा करी तो तुम भी लागू सही अमुक जैसा गोडा करी तो पानी तो तू खेती ये तुक भी लागू हमारा तो ये तुक सबू कामुक बजाई सारे प्रयास चाहिए करो ना। पानी धरती का जीवन का एक आधार है। मनुष्य पशु पक्षी पेड़ पौधे और कृषि सभी आप पानी से निर्भर है। हेतु वजह से हर एक बूंद का महत्व है। पानी प्रकृति का एक अमूल्य उपहार है और जल संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक और सामाजिक दायित्व है। ऐला बढ़ती जनसंख्या औद्योगिकरण शहरीकरण तथा जल के अंधाधुंध दोहन के कारण पानी की जो समस्या है से एक गंभीर समस्या लागी बाजती और ऐसे समय मुझ पानी के संरक्षण का महत्व और भी बड़ी नोटो। पानी केवल पीने के वास्ते ना लगें बल्कि अमुक खेती करो उद्योग है विद्युत उत्पादन है स्वच्छता है और जो हमारे दैनिक जीवन के जो काम है तत्के तो वास्ते भी बिजाई पानी की आवश्यकता है। जब पानी के स्रोत नोटले सूखी तो मानव जीवन के साथ साथ संपूर्ण पर्यावरण भी संकट में नोटदाय तत्के तो वास्ते हर एक बूंद का संरक्षण बजाई आवश्यक है। आप लोग सोचो जामुक एक मिनट भी पानी ना मिली तो कोई चीज ताड़पुड़ी लागो तो कोई चाहे हुए और ये जी बात भी अमुक जो हमारे पढ़े लिखे लोग है त्यों सबुक समझाउनी चाहिए कि भाई जो पानी है सो पीने लायक पानी सो धरती आ गई बजाई कम है और सबुक हेतु चाहिए पर्दा करना कि अमुक हेतु कसो बचाना है और नई नई तकनीकियाँ लागी आँदी कि भाई पानी कैसे शो को हम बचाई ऐसो को करी और जो भी हमें छोटे छोटे काम करी कि जैसे कोई की नड़का हम खुला देखो तो सा हमारा अपना फर्ज है कि देना नड़का बंद देना करी या कोई की भी सीधे ही लगी पानी बंद हो तो तू काम ही देना बंद करी तो जो हमारे छोटे छोटे जो हमारे प्रयास है सा भी एक बड़ी सहायता नड़ दी। तो श्रोताओं समय रही छ बज करी एक मिनट और आवशण ऐला की जो हमारी वार्ता है जनजातीय गौरवमय संगीत विषय पर लोक गायक दरबान सिंह नेथवाल से विनय ध्यानी की बातचीत।
6: श्रोता भाई बंधु नमस्कार, मैं छू विनय ध्यानी और आज म्यारदगढ़ कार्यक्रम में छे सुदूरवर्ती क्षेत्र माणा नीति और इन बोले जाकर पूर्व जो चमोली को सीमांत क्षेत्र छ वख का लोकप्रिय और प्रसिद्ध लोक कलाकार लोक गायक श्री दरबान नेथवाल। नेथवाल जी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत।
7: ध्यानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अपन मीते हैं या मुनियोती और बहुत गदगद होएगी मीते हैं याद आएगी उत्तर प्रदेश का टाइम की जब हम एज ए बाल कलाकार रूम में आकाशवाणी लखनऊ या नजीमाबाद में गान चलते
6: हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वही का बाद जो प्रसिद्धि और लोकप्रियता अपन हासिल करी वो आप तो बहुत दूर तक ली गया। आज हम आपसे बातचीत कर ला जो आपका जनजातीय क्षेत्र छ वखा को जो गौरवमय लोक संगीत छ वे पर हम बात करना चाहना छो। तो सबसे पहले तो जो वखा को जनजातीय बोली भाषा को दुई लैन को एक गीत जो कि चाहे वो समर्पित हुआ इष्ट देवतों थे या कुछ खास शैली वखा को वही क्षेत्र की परिचय दिया तब हमें तो छू लगा लेना।
7: ध्यानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ते बड़ो गर्व हों कि मैं ठेठ सीमांत क्षेत्र नीति माणा बटी छ। हम हिमालय का वासी छना, हिमालय की पहचान या की टेल, चौर पूछ और मास्क मुखौटा। तो जुवखा डांडा कांडा पर्वत छना जुवखा, हम ऊ की पूजा करदा, हम ऊ बुग्यालों की पूजा करदा जख हमारा बाखरा गोरु चौर चरण ते जाता। तो प्रकृति प्रेमी होंदा जनजाति का लोग। तो वही पर एक टोणी लागने स्वासे परी जब याद रहने नामची खिम्मा हुंती ख्योरु महुंती

0: वाह बहुत सुंदर। यो जो हमारे जनजाति को गौरवमय संगीत और जन के अपन बोल छा कि सचमा हमारे पास हिमालय छ, हमारे पास भुग्याल छन, हमारे पास हमारा गोर बचुर छन, हमारे पास हमारा प्रकृति छ। सचमा प्रकृति की गोद बटे की निकलने ये जनजातीय संगीत बहुत दूर तक अपन प्रसिद्ध करा। आप ही बताओ कि आपकी जो संगीत यात्रा छ कन्मा और कख तक उपलब्धियों की यात्रा क्या रहे?
1: ध्यानी जी, बचपन बटी जनजाति की एक खूबसूरती ची और जनजाति की एक पहचान ची गीत संगीत नृत्य
0: क्या बात
1: और जंगा।
0: है।
1: तो हमारी परंपराओं में हमारा जो बार त्योहार, हमारा जो मेला खोला, हमारे जो घर का पूजा, हम जन हम बोला अब ये गीत माँ टोणी लागन स्वाच्य पर जब याद रहने नाम ची। ये गीत का थोड़ा अर्थ बताना
0: जी
1: चाहो,
0: बिल्कुल।
1: मेरा दिल में वाला एक पीड़ा होंगी बल टौणी टौणी बना
0: टीस
1: तीस जब याद रहना नाम छे, जब अपने गांव की याद आने।
0: वाह
1: हम दुनिया में कई भी जगह पर रहो, हम बड़ा बड़ा शहरों में रहो, हम विदेश में रहो, हम बड़ा बड़ा होटलों में खो अखो हम रहो, लेकिन जब भी शांति सुकून प्यार रपड़ापन की बात हो तो अपने गांव याद आ जा। वे माँ जिक्र आयो ची कि पीठ पर बोझा जीवल, पीठ पर बोझा ची और गोरु बाखरा हमारा चौर लग्या बाटा, कष्ट बहुत होंदो, मतलब पसीना छोड़ा लग्या रहना, लेकिन जब हम कहे छोड़ा मुँह कहे गदरा मुँह बैठ के पानी पियाना तो एक से सुंदर एक से सुकून कखी नहीं मिलतु।

0: तो बचपन बिटी में स्कूल लाइफ बिट शुरू करी मैं हमारो जनजाति छात्रावास मपड़ियों में
1: अच्छा
0: जोशी मठ में।
1: अच्छा
0: तो वह एक सरकार मैडम थे हमारी जो हमते संगीत पढ़ाउन थे, वो ब्लाइंड थे वो। तो वही जमाना में जब हम तो शास्त्रीय संगीत से कौन से आर्ट ने पढ़ी मीन होते वक, तो तब वो थे कि दरवान ऐसा है कोई गढ़वाली गाना सुहा। तो तब वही जमाना में जब कभी जनफ्यू लड़िया तो ये देखे थे औदियो मन में गीत सुने दिली या कोई और पोस्त तो कछो में मेरी बात या हमारे बहुटिया लोकपाल फूलों तो घाटी गया रंग पास हो। तो बहुत मतलब ये लगा कि ये प्रभावित बनता है। तो वही दौरान मेरे सौभाग्य है कि नित्यानंद मैठाणी जी उनमें तय पहली हमारा वक्त छात्रावास में एक रिकॉर्ड करी। तब मैंने चार गाना वही फ्यो लड़िया तो ये देखे थे औदी मनवा तेरह मेरे साथ एक यू पोस्त तो कछुमा लोकपाल फूलों तो एगेरी तू रहना का फुआ बासण लगे बहना मेरी बहना ये गाना। तीन धीरे धीरे धीरे फिर मैं जनी थोड़ा बहुत संभालित तो तब तो वक हुए के बाद कखरे गे नीति कखरे गे माणा एक श्याम सिंह पटवारी खजाना बड़ा बहुत अच्छा गीत है रानी
1: जी
0: राधिका लाली लक्ष्मा भोजपत्री पाते चौथरफी हिमालय बीच बद्रीनाथ जुगराजी राखी रे।
1: वाह, ये मध्य एक गीत हम सुन ला तब आपकी यात्रा था एथलिजोल में, कख रह गए नीति कख रह गए माणा श्याम सिंह पटोरी बल कख कख जी जाना। यू एक इन मसल च ना जो आज भी पूरा उत्तराखंड में एक पहचान रखत वो गीत दुई लाइन।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद हैं जी। यही से मेरी एक पहचान मिली मैं तो यार गीत से मतलब कखरे गिनती कखरे गिमान एक श्याम सिंह पटवारी कख कख जान कखरे गिनती कखरे गिमान एक श्याम सिंह पटवारी।

0: नीति मलारी बम पा गयो गाँव गाँव मा घूमी मी, नीति मलारी बम पा गयो गाँव गाँव मा घूमी मी, गजकोटी की छंग पीनी बस्ता कभी छोड़ी नी, माड़ा की मर छोड़ छयो बड़ू काम एक शम सिंह पटवारी कख कख जान, एक शम सिंह पटवारी कख कख जान।
1: बहुत सुंदर बहुत सुंदर। पूरी नीति और माणा की बात आपने चार पंगतों में सुना हम थे। फिर आपकी हुई यात्रा था जो कि संगीत की यात्रा च, और एक अद्भुत यात्रा च कि जब लोग गीतांग हुए तो अबट अबट चल जाते, लेकिन आपन अपन जनजातीय संगीत थे निछवाड़ और यहाँ खातिर ही आपक अलग पहचान च। तो वो एक बात का कि उत्तराखंड से भेरी विदेशों में कि आपन अपन जनजातीय संगीत थे लोकप्रियता दिले हुए कुछ याद आण होल के हाँ एक कार्यक्रम में निंदे जखमा में था लोकप्रियता मिल उपलब्धि रहे यहाँ पर।
0: हाँ बहुत सौभाग्य से मेरे देश विदेश हर जगह गयो मैं प्रोग्राम में, लेकिन सबसे अभी मैं तय बड़ो दुख होंद ना कि हमारे जो लोग सा हमारा थड़िया झुमेला मांगल जागर फोपति छोपति चैती गीत मन्नाड़ भट्याले घट्याले रांसे पवाड़े जागर, और ये जो शैली है चाहे हम कुमाऊँ की बात करना न्योली छपेली भगनौल हुड़की बॉल, तो ये सारी चीजें बात करना, हमने ना फोक संगीत ना एक दिंग का पुतली तक सीमित रख लिया।
1: बहुत सुंदर बात।
0: और हम ये नहीं समझ सकता कि मतलब हमारा ढोल ची हमारो हुड़को ची और हमारो डोंगर ची ये की शैली भी नहीं समझना हम लोग कि भाई डोंगर में क्या बजलो हुड़का में क्या बोलो और ढोल में क्या बोलो। तो ये नहीं, एक बहुत बड़ी वर्कशॉप है हैबिटेक सेंटर दिल्ली में, और वेमा में इतने जो हमारे पूरे 7 देशों की जनजातीय जो लोक कलाकार छे वेमा मीते भी बुलायो छे। तो वो जब पहली मिल और देश सुनी मिली श्रीलंका बटी भूटान बटी नेपाल बटी, तो जब उनको कल सुनी मिली उनको गीत सुनी मिली उनकी शैली सुनी उनका इंस्ट्रूमेंट, तो वो लोग ना अपना कल्चर में डूबिया लोग हमते पता नहीं, जबकि हमारी खान ची हमारा यहाँ मतलब आम लोक कलाकार थे जो लोग लोक कलाकार अब तक पीछे लंग होता वो तो पता ही नहीं कि हमारी लोक संगीत क्या ची हमारी लोक शैली क्या ची, वो तो सिर्फ ये मकसद ची कि बस लोगों को बारात में नचाओ डीजे में नचाओ लोग यहीं तक सीमित रह गए। वो छे तो वे दोनों एक कार्यक्रम था, वो जनजातीय कार्यक्रम छे, लेकिन मेरी बोली यार जनजाति माँ यूं नहीं समझना, तो भगवान बद्री विशाल का भूमिका रोण वाला
1: छा क्या बात
0: भगवती नंदा
2: नरुका नारायण हे नीलकंठ पर्वत जात गौसरु पृथ्वी हे उदंकारी कांठा जात फटिंग कोलिंग हे दूधारी नरसिंह जात प्रभु कुबेर नारायण जी हे भानु पंखी गरुड़ जात माँ भगवती माता मूर्ति तेरी शक्ति जात देवदार भोजपत्र की डाली हे घंटा कर्ण भूम्याल जात जाग

0: वो एक बाद मैंने डोर निकाली, धिन धिन रहता, धिन धिन रहता, मतलब वो लोग जितने ऑडियंस में थे, जितनी भी वो कुछ है, सब झूमे
1: क्या बात, अच्छा ही बात। वो लोग संगीत क्या है दरवान भाई, जय माँ की, लोग नचण नहीं बैठ जा कख भी वहां, ज्यादा देशों का नाम नहीं यहां पर, हर संगीत की आत्मा लोक ही छे और लोक संगीत में वो बात छे। अब एक सवाल आपसे ई करूं छू मैं कि जनाब बना चिन्ह के साथ थोड़ा चौंपला, इन्हीं अगर हम सीमांत क्षेत्र और खासकर एक जनजातीय क्षेत्र चमोली को जो छे आपक क्षेत्र छे उकमा रोंगपा को अपन नो
0: रोंगपा
1: है,
0: जी,
1: तो वो उमा क्या क्या गीत होने।
0: हमारा एक अगर नृत्य बोला तो हम पौना नृत्य, बहुत खूबसूरत,

0: நச்சானே லோ என்ன சரிசி சோஸ் பேந்து எனந்தாலோ பாப்பேந்து பஞ்ச நாகிலோ சாஷாகுத்து பேலா தாவா சண்கேல பஜானிலோ என்ன சரிசி. तो ये तो हमारा पौना नृत्य लसपताला आहा लसपताला यानी होंदो कि हमारे यो जब हम पहले जमाने में जब व्यापार होंचे और जो हमारा जानवर जो बुग्यावा में रोंचे बाखरा प्यारो में चौर प्यारो में सारावका का बैख जो छना जेंस लोग वो तिब्बत व्यापार में जनी अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में वो लोग तिब्बत व्यापार करके वापिस आंचे सारा बाकरा वापिस पूरा गोमा चहल कदम है तब हुनते साहब लासपा त्योहार तीन दिन को लासपा
1: नीति मा हमन लासपा मा जया छो हम बहुत बढ़िया कले के एक प्रवर्जन को कौथिक छ छोटू से जक मा भावनाएं भी छन अपन कूड़ियो था भगवान का भरोसा हम छोड़ी जाना छो ताला खोलना छो ताला लगाना छो है ना तो वो बात बहुत और अपना छोटा छोटा देवी देवता को बना छो भरे या ध्यान रखे या एक अद्भुत त्योहार परंपराएं हमारे ये जनजातीय क्षेत्र के छन। फिर एक वही सवाल जो मिल पैथर बिछवाड़ छा कि धरवान नेतवाल का दिमाग में कभी इनकेले न्याय कि गीतांत में सुंदर छू बढ़िया मेरा कंठ च बढ़िया मेरी संगीत की शिक्षा ली च मैं कुछ जरा कुछ और डिमडिमा टोल कुछ कह लो आपन मंच पर जब जब अपन क्षेत्र को प्रतिनिधित्व कर सच में देख लग चुके हाँ लोक कलाकार लोक वादक और लोक संस्कृति से जुड़े लोक कार्यक्रम देना छन कभी गोनिया कि मैं अबट भी चल जाऊं।
0: ध्यानी जी शुरू से पता नहीं माँ भगवती नंदा या जो हमारा फैला पंचनाग हमारा घन्याल देवता या हमारी हीरामणि या हमारी भगवती नंदा शुरू से मैं वे माहौल में रहा ना कि जो बाहर जब धिंका पुतड़ी मेरा गया छा नहीं मेरी इन बात नहीं पर लेकिन लेकिन ना मैं ऊपर में कभी मंच में जाऊँ तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में माँ भगवती नंदा का वो जाग रह जाता। एक मैं उदाहरण दे दूँ ना आपते कि एक बार यू कि तक हम लोग बोला ना कि बोला मैं वो छे एक इंटरव्यू में दिल्ली में के न्यूज चैनल उन्होंने कहा कि भाई आप लोग जब है जब दशहरा होता है कि हर जगह दशहरे में जो है गीत गाते हैं ये करते हैं लेकिन जनजाति में क्या कहूँ क्या होता है। मैंने कहा जनजाति में हमारे सामने फौजी हमारे यो है तो हमारे यो फौजी बोल कैसे गीत होते हैं तब तब सुनाई भी नहीं होते।

0: की घोड़। तो दशहरा हमारा ये जो हमारा हथियार छनाऊ छन ओ की पूजा होनी
1: क्या बात।
0: अपन मामा एक गीत सुनो तो मेरे को।
1: अच्छा
0: जनजाति गीत छे।
1: अच्छा
0: पाल्या पा तल पा तल क्या गाजो।
1: वाह वाह वाह।
0: बोलो पाल्या पा तो बोलो सो क्या दमकणो बोल सो पाल्या।

0: हमारा गायक आना है।
1: हाँ, बहुत मुख्य सवाल जी और बहुत आवश्यक सवाल भी जी, क्योंकि आज हमारा जो ये केंद्र छ ना दूरदर्शन आकाशवाणी, क्योंकि यूं तक उन कलाकारों की पहुंच नहीं जी, क्योंकि आजकल व्यवसायिक कलाकार जो बने छन लोग, वो लोग मतलब तुरंत स्टार बनने का वास्ता, जबकि जो आज हम जो सुनियो नो आज जो उत्तराखंड को संगीत नहीं छो,
0: बिल्कुल ठीक बना हर चीज की वक्त का नहीं देखे नहीं
1: छो, अब वो लोग वे का चक्कर मा, तो वो अब मूल लोक कलाकार छना जो गांव मा छना, जन हमारे एक विश्व धरोहर रमाण छी उनका की आप तो जाए छ,
0: बिल्कुल,
1: तो वो दास वो गान वाला लोग कक छ ना, चाहे हमारे एक मुखौटा नृत्य छी लाता मा,
0: बिल्कुल
1: वो जो हमारा चाचड़ी लग दी, वो जो हमारा दाखड़ी लग दी, तो वो कक सुनने लगी, तो मेरे लोगों तो यही भाई कि आ क्योंकि जो आप लोग गान लगे हैं ना वो एक लाइव ज्यादा नहीं थी, लेकिन जन्मी ने अभी एक दिगी सुना जी, वो मेरा दादा परदादा गाय वाला, मैं भी गान उची
0: वही लोग संगीत दरवान जी। और खास बात यह है कि अपन सुंदर सलाह भी दे कि अपना वाद्य अपना लोक संगीत की जो पकड़ छ वही था पकड़ी चल रहे थोर, तो शायद दरवान नैतवाद बना रहेला न थोर लोग उन बिसर जाना, हम तो एक सालों बटक आप तो सुनना छुआ और आज आपक दगर सुंदर छुई बत लगिन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप हमारे कार्यक्रम में,
1: बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानी जी, आपने मीते एक मुन न्यूति और ये मौका मीते आकाशवाणी में देने, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं विविध सुनिए आप लोग जनजातीय गौरवमयी संगीत विषय लोक गायक दरवान नेथवाल से विनय ध्यानी की बातचीत। श्रोताओं अब हम आप लोगों के गढ़वाल की तरफ ने और आओ सुनो एक गढ़वाली गीत मोहना तेरी मुरली बाजे प्रीतम बर्तवान के स्वर मुझ।

0: पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोताओं विलेती आप लोगों ने रेवार सुनी और रेवार की अगले तो सुनी मोहना तेरी मुरली बाजे प्रीतम भरतवाण के स्वर मुझ कड़वाली गीत। श्रोताओं अभिनव आप लोगों को कुमाऊं की और आओ सुनो यो कुमाऊनी गीत दया शंकर फुलारा के स्वर मुझ।

0: श्रोताओं अभी तो सुनिए आप लोग ही अलमोड़ा बजार कमला तया शंकर फुलार के स्वर मजे की कुमाऊनी गीत श्रोताओं समय रही प्रादेशिक समाचार का आओ सुनो थोड़ी देर मुझ प्रादेशिक समाचार और हमारा जो कार्यक्रम है 7:50 तक के आप लोग तलो कोई की न जाया आओ सुनो भी प्रादेशिक समाचार।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापन।
3: कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
4: वाह जी वाह, इतनी सारी चीजें एक पॉलिसी में संभव नहीं है।
3: संभव है PLI के साथ। सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ अब लिस्टेड कंपनीज के एम्प्लॉयर्स और सभी प्रोफेशनल्स जैसे CA, डॉक्टर, इंजीनियर और डिप्लोमा डिग्री होल्डर भी ले सकेंगे PLI पॉलिसीज में। 50 लाख तक के बीमे का फायदा और साथ में डाक विभाग का भरोसा भी। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग ऑन www.indiapost.gov.in।
5: चीफ पोस्टमास्टर जनरल उत्तराखंड डाक परिमंडल द्वारा जनहित में जारी।
6: दादू आपका तारा मतलब
7: बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा।
8: पापा ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका।
6: हाँ बैल मुझे मार मतलब
7: मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे।
9: अब ये कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना।
6: इसका मतलब
9: इन्हीं से पूछो।
8: समझा पापा।
9: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से टनकपुर नांदेड़ एक्सप्रेस और शाहजहांपुर तक विस्तारित टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का शुभारंभ किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत गोद लिए गए 13 टीबी रोगियों को पोषण किट वितरित की। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश में शीघ्र ही 8 नए सहकारी संघ गठित किए जाएंगे। और मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने नाबार्ड की उच्च स्तरीय समिति की बैठक ली। सभी विभागों को अपनी परियोजनाएं अगले 3 दिनों में पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से टनकपुर नांदेड़ एक्सप्रेस और शाहजहांपुर तक विस्तारित टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगी।
11: देवभूमि उत्तराखंड के टनकपुर से हुजूर साहेब नंदेड़ के लिए नई सर्विस चालू हुई। तराई के क्षेत्र में हमारे बहुत सारे सिख भाई और बहन जो रहते हैं उनकी साइड से लगातार डिमांड थी। श्री रमनीत सिंह बिट्टू जी, श्री जितिन प्रसाद जी और श्री टमटा जी लगातार उन्होंने डिमांड की थी। तो आज हुजूर साहेब नंदेड़ साहिब से शुरू हुई देवभूमि टनकपुर में, उत्तराखंड के टनकपुर में ये गाड़ी जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी डिमांड की थी, इसका एक आज से संचालन शुरू होगा। साथ ही पीलीभीत, आगरा, टनकपुर इन सबको जोड़ने वाली कुछ ट्रेन्स और भी शुरू हुई है।
10: वहीं टनकपुर रेलवे स्टेशन से केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह के साथ नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री टमटा ने कहा कि इन रेल सेवाओं के विस्तार से यात्रियों की आवाजाही और अधिक सुगम व सुविधाजनक होगी। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण पहल उत्तराखंड की रेल कनेक्टिविटी को नई मजबूती प्रदान करने के साथ साथ प्रदेश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को भी नई गति देगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज लोक भवन में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत गोद लिए गए 13 टीबी रोगियों को मासिक पोषण किट वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने रोगियों से व्यक्तिगत संवाद कर उन्हें उपचार के दौरान नियमित दवा, पौष्टिक आहार और संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। एक रिपोर्ट।
12: राज्यपाल ने कहा कि टीबी उन्मूलन केवल स्वास्थ्य विभाग का दायित्व तो नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। जन सहभागिता, जागरूकता, समय पर उपचार और पौष्टिक आहार के माध्यम से ही इस बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने सभी नागरिकों से इस जन अभियान से जुड़ने और टीबी मुक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक सक्षम नागरिक एक टीबी रोगी का निश्चय मित्र बनकर उसके उपचार व पोषण में सहयोग करे तो टीबी उन्मूलन के अभियान को और अधिक गति मिलेगी। गौरतलब है कि राज्यपाल की ओर से अब तक गोद लिए गए 79 टीबी रोगी पूरी तरह स्वस्थ होकर टीबी मुक्त हो चुके हैं। इस महत्वपूर्ण पहल को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 13 और टीबी रोगियों को गोद लिया है जिन्हें आज मासिक पोषण किट प्रदान की गई। इसके साथ ही राज्यपाल द्वारा निश्चय मित्र के रूप में गोद लिए गए टीबी रोगियों की कुल संख्या बढ़कर 92 हो गई है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविन्द्र सिंह।
10: उत्तराखंड विशेष कार्यबल एसटीएफ ने बच्चों से संबंधित ऑनलाइन यौन शोषण और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसारण के मामलों पर सख्त कार्रवाई करते हुए जून माह में राज्य के विभिन्न जिलों में 52 प्राथमिकी दर्ज की है। एसटीएफ ने कहा है कि ऐसे अपराधों के प्रति पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति है और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने लोगों से साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता व जिम्मेदारी का परिचय देने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री, संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि या अन्य साइबर अपराध की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन या राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दें।
13: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
10: सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में शीघ्र ही 8 नए सहकारी संघ गठित किए जाएंगे। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिला स्तर के बाद अब विधानसभा क्षेत्रों में भी सहकारिता मेलों का आयोजन किया जाएगा ताकि किसानों, काश्तकारों, कारीगरों और महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध हो सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज देहरादून में सहकार मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से किसानों की खुशहाली, ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार कर

0: करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश भर की 13 उत्कृष्ट सहकारी समितियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्राथमिक क्षेत्र पर जोर देते हुए ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के तहत अधिक से अधिक योजनाओं को शामिल करने के विभागों को निर्देश दिए हैं। आज सचिवालय में नाबार्ड की उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सभी विभागों को अपनी परियोजनाएं अगले 3 दिन में पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गतिमान परियोजनाओं की प्रतिपूर्ति के लिए भी प्रस्ताव शीघ्र अपलोड किए जाएं, ताकि समय से प्रतिपूर्ति जारी की जा सके। उन्होंने धीमी गति से चल रही परियोजनाओं पर नाराजगी जताते हुए कहा कि विभागीय सचिव परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा करते हुए कार्यों को पूरा करें। मुख्य सचिव ने कृषि बागवानी क्षेत्र में संपूर्ण लिंकेज के साथ 1 से अधिक क्लस्टर्स को शामिल करते हुए बड़े प्रोजेक्ट बनाने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने नाबार्ड से तकनीकी और विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध कराए जाने का भी अनुरोध किया। मुख्य सचिव ने उद्यान विभाग को पॉली हाउस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए सचिव स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा करते हुए लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि जो परियोजना पूरी हो चुकी है उनका प्रमाण पत्र और रिपोर्ट शीघ्र नाबार्ड को उपलब्ध कराया जा सके। हरिद्वार शहर स्थित शिव मूर्ति गली में बिना वैध लाइसेंस के सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का संचालन कर रहे टूर ट्रैवल ऑपरेटरों के विरुद्ध विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन नेहा झा ने बताया कि परिवहन विभाग की टीम ने विभिन्न ट्रैवल एजेंसियों और बुकिंग कार्यालयों का गहन निरीक्षण कर 20 ऑपरेटरों के विरुद्ध नियम अनुसार चालानी कार्रवाई की गई। सभी संबंधित संचालकों को भविष्य में वैध लाइसेंस प्राप्त किए बिना इस प्रकार का संचालन ना करने के निर्देश दिए हैं।
1: जितने भी टूर एंड ट्रैवल्स ऑपरेटर्स हैं, इनको टूरिज्म के साथ साथ आरटीओ विभाग से भी एक लाइसेंस लेना होता है, जिसमें सवारियों को इकट्ठा करने के लिए इनको परमिशन की जरूरत पड़ती है। तो आज हमारे द्वारा जब चेकिंग की गई तो लगभग 20 इस प्रकार के अवैध हमको शॉप्स मिली, जिनमें हमने नोटिस प्रोवाइड किए हैं और उनको बोला गया है कि जल्द से जल्द वो अपना लाइसेंस प्राप्त करेंगे। इनके जो चालान किए गए वो सारे चालान कोर्ट प्रेषित किए जाएंगे। जो जुर्माने की दर होती है वो 25,000 से लेकर 1,00,000 तक होती है और ये जुर्माना कोर्ट के द्वारा तय किया जाता है। तब तक इन सबको कहा गया है कि आप लोग टिकटों की बिक्री का कार्य नहीं करेंगे और इनकी दुकान एक तरीके से सीज कर दी गई है।
0: नई टिहरी में आज आयोजित जनता दरबार में लोगों ने पेयजल, सड़क, विद्युत, ग्राम पंचायत और भूमि मुआवजे से जुड़े कई मामले प्रशासन के समक्ष रखे। जिलाधिकारी निधिका खंडेलवाल ने आम जन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।
2: 59 की शिकायतें आज जनता दर्शन में आई हैं और मुख्यतः अगर हम देखेंगे तो काफ़ी मिक्स रही हैं। कुछ पुनर्वास की भी हैं, कुछ लोगों के सड़क से काटे से जो खतरा होता है उसकी हैं, और सबसे ज़्यादा कुछ SLO विभाग की भी हैं, क्योंकि लोगों के कुछ पुराने मैटर्स हैं जो काफ़ी पेंडिंग चले आ रहे हैं। उसमें लोगों को जवाब भी दिया गया है परंतु वो संतुष्ट नहीं है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से भी या विधिक राय लेके उसको हम निस्तारित कराएंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से टनकपुर नांदेड़ एक्सप्रेस और शाहजहांपुर तक विस्तारित टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का शुभारंभ किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोकभवन में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत गोद लिए गए 13 TB रोगियों को पोषण किट वितरित की। सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश में शीघ्र ही 8 नए सहकारी संघ गठित किए जाएंगे। और मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने नाबार्ड की उच्च स्तरीय समिति की बैठक ली। सभी विभागों को अपनी परियोजनाएं अगले 3 दिनों में पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: चेक। जाना पड़ेगा।
4: अरे गेम छोड़ के?
3: 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है?
4: अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए। RBI के ऑम्बुड्समैन को।
3: कैसे?
4: RBI अधिकृत बैंक, NBFC या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे RBI के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट, कंप्लेंट करेंगे क्या? RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: श्रोताओं, ग्राम जगत के कार्यक्रम के दूजे पारिये मुझे आप लोगों का शुभ काम आशीष चौहान स्वागत करूं। श्रोताओं, हेला एक खास दोस्त भी है, जैसे कि आप सबको पता है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 मुझ कोलकाता मुझना। तो उसके बाबा को नाम आशुतोष मुखर्जी, जो कि तला के समय मुझ प्रसिद्ध शिक्षाविद और न्यायाधीश था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान शिक्षाविद, वकील, राष्ट्रवादी नेता और राजनीतिज्ञ था। से 33 साल की उम्र मुझ कोलकाता यूनिवर्सिटी पुंडा सबसे युवा कुलपति बाजा और स्वतंत्र भारत की पहली सरकार मुझ उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री रहा। पर बाद मुझ तिनी नीतिगत मतभेद के कारण से इस्तीफा देना दी। तो उसका मानना था कि भारत मुझ समान संविधान राष्ट्रीय व्यवस्था छाई, से वो अपने विचारों खुली करी रखो था और देश के मुद्दों भी निर्भीकता से आवाज उठाओ था। 23 जून 1953 मुझ तस्कर निधन नोटा हुई। तसी का मैं राष्ट्रीय एकता के वास्ते समर्पित नेता के रूप मुझ याद करो। तो उसका जीवन हमुक राष्ट्रभक्ति, ईमानदारी, शिक्षा का महत्व और सिद्धांतों अड़िग रोने की प्रेरणा दो। तो श्रोता, हमुक भी अपने जीवन मुझ ईमानदारी, राष्ट्रवादी और अपने देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य है, तो तुझ अड़िग चाहिए रोनो और तो तुझ हमुक काम चाहिए करोनो कि हमारा देश है और हमारे देश के प्रति मेरा का दायित्व तो है, से हम सबुक सोचना चाहूँ। तो श्रोताओं, आओ आप लोगों को नो जौनसार की तरफ और सुनो एक हारुल, लेकिन तत् के आगे एक या रेबार।
7: रविंद्र, ये बताओ सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
8: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
7: सच में? क्या क्या है उसमें?
8: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
9: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से UK.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।

श्रोताओं अभिलते सुनी आप लोग जौनसारी हारोल नोक्टी देवी व साथी के स्वर मज। श्रोताओं हमारा का चुहला का कार्यक्रम ग्राम जगत है साथ ही का समाप्त हो मुख्य विदो इजाजत नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। समय है गढ़वाली प्रादेशिक समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बिटन गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचार उदगढ़, मी ममता बडोला। पहली मुख्य समाचार। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से टनकपुर ब्रिटेन महाराष्ट्र के नांदेड़ तक नई रेल सेवा का शुभारंभ कर भारतीय सेना के ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस परीक्षा परिणाम अगला 3 से 4 दिनों में घोषित करे जाए। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सहकारिता आंदोलन तय और ज्यादा सशक्त बनाने का आह्वान कर कैबिनेट मंत्री राम सिंह केड़न वाल मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन तय लेकर राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क छ। और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सेवा पखवाड़क अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल में 3 करोड़ रुपयों से ज्यादा की विकास योजना जनता तय समर्पित करें।

0: अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से चंपावत जिला के टनकपुर बटेन महाराष्ट्र के नांदेड़ तक नई रेल सेवा का शुभारंभ कर। ये मौके पर उनवाल की यह रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में रोणवाग सिख श्रद्धालुओं को लंबे समय बटेन चली आने वाली मांग ते पूरी करे।
1: आज देवभूमि उत्तराखंड के टनकपुर से हुजूर साहेब नंदेड़ के लिए नई सर्विस चालू हुई। तराई के क्षेत्र में हमारे बहुत सारे सिख भाई और बहन जो रहते हैं उनकी साइड से लगातार डिमांड थी। श्री रमनीत सिंह बिट्टू जी, श्री जितिन प्रसाद जी और श्री टमटा जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी डिमांड की थी।
0: टनकपुर में आयोजित कार्यक्रम तय संबोधित कर दो केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटन बाल की टनकपुर नांदेड़ एक्सप्रेस से पर्यटन व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क दे बढ़ावा मिलल। भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजित करेगी ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामों के परिणाम अगला 3 से 4 दिनों में घोषित करे जाए। भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा के अनुसार अभ्यर्थी अपु रिजल्ट भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकल। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों को केंद्रीय कैटेगरी और जोनल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा 25 और 26 जुलाई को रानीखेत के सोमनाथ मैदान में आयोजित करे जाए। ये दौरान अभ्यर्थियों को अभिलेखों को भी परीक्षण करे जाए। अभ्यर्थी अपर दगड़ सभी दस्तावेजों की मूल प्रत्येक दगड़ी उनकी 3 प्रतिलिपि और 20 पासपोर्ट साइज फोटो रखने की सलाह दी गई। दस्तावेजों बिना रैली ग्राउंड में प्रवेश नहीं दिए जाए। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत बोल की किसानों की समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प तय साकार करने को सरकार सहकारिता आंदोलन तय और ज्यादा सशक्त बनाने को प्रतिबद्ध है। हरिद्वार में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में उनवाल की उत्तराखंड में लगभग 30 लाख किसान सहकारिता विभाग से जुड़े हैं। उन बताया कि सहकारिता क्षेत्र में करे गए सुधारों को प्रणाम स्वरूप प्रदेश के सभी सहकारी बैंक सामूहिक रूप से लगभग 300 करोड़ रुपयों की शुद्ध लाभ में।
2: हम लोग हमारे जिले में हर समिति में बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि सहकारिता विभाग आज पूरे देश में लगभग करोड़ों लोगों का विभाग हो गया है। उत्तराखंड में भी 30 लाख किसान हमसे जुड़े हैं और इस साल हम पूरे प्रदेश के 2 लाख किसानों को 0% पे ऋण दे रहे हैं। आज हमारे सहकारिता के जितने हमारे बैंक है वो 300 करोड़ रूपए के प्रॉफिट में आ गए और इस साल हम 55 नई शाखाएं अपने प्रदेश में खोले हैं।
0: एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर रावतन बताया कि सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत 10 करोड़ रुपयों से ज्यादा के अलग अलग विकास योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड ते फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: कैबिनेट मंत्री राम सिंह केड़नवाल की मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन तय लेकर राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क छ। उन बताया कि सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों तय आपसी समन्वयक दगड़ सतर्क रहकर कार्य करने निर्देश दिए गए। श्री केड़नवाल की मुख्यमंत्री धामिक नेतृत्व में आपदा प्रबंधन तैयारी की समीक्षा कुणी कई उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित करी गई। उनवाल की मानसून के दौरान प्रदेशवासियों तक कई प्रकार का असुविधा निभा या कुण सरकार प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करनी छ।
4: माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कई बार आपदा से जुड़े जितने भी अधिकारी हैं उनकी बैठक भी हो चुकी है और मानसून पे आपदा के दौरान कहीं पर भी कृषि क्षेत्र में कोई भी परेशानी प्रदेश की जनता को नहीं होगी, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है।
0: कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराजन आज सेवा पखवाड़ा अंतर्गत पौड़ी गढ़वाला के बीरोखाल विकास खंड में 3 करोड़ 20 लाख रुपयों से ज्यादा की विकास योजनाएं जनता तय समर्पित कर। ये मौके पर उनवाल की सेवा पखवाड़ा केवल एक आयोजन नहीं बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास को सेतु छ। एक माध्यम से सरकार अपूर्व कार्यों से जनता समक्ष प्रस्तुत करनी छ और लोगों को समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास करनी छ। श्री महाराजन बाल की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चौपटा खाल विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से करे जाना छन। उन बताया कि क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई पंपिंग योजनाओं पर करोड़ों रुपयों की लागत से काम संचालित करे जाणु छ। ये दौरान कैबिनेट मंत्री अलग अलग जगहों पर जनसंपर्क भी कौरी स्थानीय लोगों की समस्या सुनी और अधिकारियों तय उन जल्द समाधान का निर्देश दिए। कैलाश मानसरोवर यात्रा को पहलू दल पिथौरागढ़ पहुंचने पर पारंपरिक और भव्य स्वागत करेगा।

0: ये दौरान ढोल दमाओं की धाप और छोलिया नृत्य माहौल था और ज्यादा भव्य बने दिया। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि पहलू दल में देशक अलग अलग राज्यों बिटेन आया 49 श्रद्धालु शामिल छन, जो मां 15 जननी छन।
1: टोटल 49 सदस्य इस पहले दल में हैं, जिसमें से 15 हमारी जो है वो महिलाएं हैं और सभी यात्री बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है उत्तराखंड में आके। मैं उनकी यात्रा की मंगल कामना करता हूं और ये कामना करता हूं कि अत्यंत मंगलकारी ये यात्रा उनके लिए रहेगी।
0: तीर्थयात्रियों ने उत्तराखंड में मिली आत्मीय स्वागत को राज्य सरकार और जिला प्रशासन का आभार जतान यात्रा तय अपूर्व जीवन का सौभाग्यपूर्ण अवसर बताए।
2: ओम नमः शिवाय। मेरा नाम हरिकृष्ण है और मैं 21 ईयर्स ओल्ड हूँ। बिल्कुल एक फर्स्ट बैच में हूँ। मैं और मेरे मदर कैलाश यात्रा में जा रही है और जब हम यहाँ आए तब हमें कैलाश और उसका जितना कितना महत्व है और क्या मतलब लोगों ने क्या क्या योगदान दिए, क्या क्या मीन्स ITBP जो काम कर रही है, आर्मी गवर्नमेंट कह दीजिए, कुमाऊं मंडल कह दीजिए, वो लोग मतलब हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं कि उसको शब्दों में तो आप बयां ही नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: ओम नमः शिवाय। मेरा नाम भूपेश पंत है। बहुत अच्छा लग रहा है जैसा उत्तराखंड में हमारा स्वागत हुआ। मैं पिथौरागढ़ का ही रहने वाला हूँ, पिथौरागढ़ में ही मेरी पढ़ाई वढ़ाई हुई है। बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा स्वागत सत्कार हो रहा है उत्तराखंड में। जैसे कि कहते हैं अतिथि देवो भव, तो वो सार्थक कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी और सारे अधिकारीगण।
0: देहरादून जिला के सहसपुर विकास खंड के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जननी आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश करना चाहिए। समूह महिलाएं स्थानीय किसानों से ताजी और ऑर्गेनिक साग भुजी खरीदी कर उनके सीमा द्वार स्थित ITBP के जवानों तक पहुंचाना छन। जिला प्रशासनक ई पहल से जनों तक घर बैठे रोजगार के नए अवसर मिलना छन। जिला परियोजना प्रबंधक सोनम गुप्ता ने बताया कि उड़ान क्लस्टर लेबल फेडरेशन के महिलाएं ITBP तय उनक मांगक 25% ऑर्गेनिक सब्जियों की सप्लाई करनी छन। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपर प्रमुख राष्ट्रीय नवाचार मंच नवाचार मंत्र को पंजीकरण का आखिरी तिथि 15 जुलाई तक बढ़े। मंत्रालय ने वाल की देश भर के नवोन्मेषकों को अत्यधिक उत्साह से दिग्ध यू निर्णय लिया गया। मंत्रालय ने वाल की आधिकारिक नवाचार मंत्र पंजीकरण पोर्टल पर अब तक हजारों इच्छुक उद्यमियों और नवोन्मेषकों पंजीकरण करें। आखिर में मुख्य समाचार एकदम फिर। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज वर्चुअल माध्यम से टनकपुर ब्रिटेन महाराष्ट्र का नांदेड़ तक नए रेल सेवा का शुभारंभ कर भारतीय सेना का ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस परीक्षा परिणाम अगला 3 से 4 दिनों में घोषित करे जाए। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सहकारिता आंदोलन तय और ज्यादा सशक्त बनाने का आह्वान कर कैबिनेट मंत्री राम सिंह केड़नवाल की मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन तय लेकर राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क छ और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सेवा पखवाड़ा अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल में 3 करोड़ रुपये से ज्यादा विकास योजनाएं जनता तय समर्पित कर एक दगड़ी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।

ट्रेन 100 दशमलव 5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए अब सुनते हैं किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सुन रहे हैं कृषि जगत और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त शिप्रा। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि आज के समय में खेती के साथ पशुपालन किसानों की आय का एक मजबूत सहारा बन चुका है। लेकिन कई बार हम अच्छी नस्ल के पशु तो खरीद लेते हैं, उन्हें अच्छा चारा भी देते हैं, फिर भी उम्मीद के अनुसार दूध नहीं मिल पाता या पशु बार बार बीमार पड़ जाता है।

कभी सोचा है? इसकी एक बड़ी वजह पशुशाला का सही प्रबंधन भी हो सकता है। दरअसल पशु भी हमारी तरह एक साफ, सुरक्षित और आरामदायक वातावरण चाहते हैं। अगर उनके रहने का स्थान साफ सुथरा और हवादार होगा तो वे स्वस्थ रहेंगे और उनका उत्पादन भी बेहतर होगा। सबसे पहले बात करते हैं पशुशाला के स्थान की। देखिए, पशुशाला हमेशा ऐसी जगह बनानी चाहिए जहाँ पानी जमा ना हो और धूप व ताज़ी हवा आसानी से आती जाती रहे। इससे नमी कम रहती है और बीमारियों के फैलने की संभावना भी घट जाती है। फर्श मजबूत और थोड़ा ढलानदार होना चाहिए ताकि पानी और गंदगी आसानी से बाहर निकल सके। अब जरा सोचिए, अगर घर की सफाई कई दिनों तक ना हो तो कैसा लगेगा? ठीक यही बात पशुओं पर भी लागू होती है, इसलिए पशुशाला की रोज़ाना सफाई बहुत ज़रूरी है। गोबर और गंदगी को समय पर हटाने से मक्खियाँ और मच्छर कम होते हैं और पशु संक्रमण से बचे रहते हैं। अब बात करते हैं खान पान की। स्वस्थ पशु वही है जिसे समय पर संतुलित आहार और साफ पानी मिले। हरा चारा, सूखा चारा और संतुलित दाना उनकी आवश्यकता के अनुसार दें। खासकर गर्मियों में यह ध्यान रखें कि पशुओं को हर समय स्वच्छ और ठंडा पानी उपलब्ध हो। किसान भाइयों और बहनों, पशुओं की नियमित स्वास्थ्य जांच भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। समय समय पर टीकाकरण कराना, कृमिनाशक दवाई देना कई गंभीर बीमारियों से बचाता है। यदि कोई पशु सुस्त दिखे, खाना कम खाए या बीमार लगे तो उसे दूसरे पशुओं से अलग रखें और बिना देर किए पशु चिकित्सक से सलाह लें। एक और छोटी लेकिन बहुत उपयोगी आदत है रिकॉर्ड रखना। अगर आप अपने पशुओं के टीकाकरण, दूध उत्पादन, बीमारी और उपचार का रिकॉर्ड लिखकर रखें तो भविष्य में उनकी देखभाल करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो साथियों, आज की चर्चा से बस इतना ही याद रखिए कि पशुपालन में केवल अच्छा चारा ही नहीं बल्कि अच्छी पशुशाला, नियमित सफाई, संतुलित आहार, समय पर टीकाकरण और उचित देखभाल भी उतनी ही ज़रूरी है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं और अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ आइए अब लेते हैं एक संगीतमय विराम, फिर जारी रखेंगे अपनी बातों का सिलसिला।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम बात कर रहे थे पशुशाला प्रबंधन की। इसी क्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर नीलकांत से हमारे सहयोगी विकास चमोली की बातचीत, जिसमें वे हमें बताएंगे कि बरसात के मौसम में पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में हमें किन बातों का ख्याल रखना होता है। आइए सुनते हैं ये बातचीत।
2: नमस्कार किसान साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं कृषि विज्ञान केंद्र धनौरी हरिद्वार के प्राध्यापक डॉक्टर नीलकांत। और डॉक्टर साहब से आज हम बात करने वाले हैं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के विषय में, क्योंकि बरसात का मौसम है और इस समय अक्सर हम देखते हैं कि तरह तरह की बीमारियां पशुओं को हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है उत्पादन में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। जैसे कि पशु स्वास्थ्य प्रबंधन की आज हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि बरसात में जो इस तरह की समस्याएं आम तौर पर देखी जाती हैं, इसके पीछे क्या कारण है?
3: किसान भाइयों, राम राम। जैसा हम जानते हैं कि मौसम का बदलाव, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, ये तीनों ही मनुष्य और पशुओं के लिए कष्टकारी होते हैं। एकाएक मौसम चेंज होता है तो इसमें इस तरीके के जो कीड़े हैं, व्याधियां हैं, वो इस तरीके से पनपते हैं, उन्हें अनुकूल मौसम मिल जाता है। बरसात के समय में विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जो सूक्ष्म जीव हैं या कीड़े हैं, अट्टे हैं, चीचड़ हैं, मक्खियां हैं, जू हैं, किल्ली हैं, इनका प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि इन्हें अपनी बढ़वार के लिए एक अनुकूल वातावरण मिलता है। गर्मी के साथ साथ इन्हें जो है एक नमी मिलती है, जिससे इनकी बढ़वार तेजी से होती है और पशुओं में ये संक्रमण को तेजी से बढ़ाते हैं।
2: जी, अब जैसे आपने बताया कि इस तरह के जो कीड़े हैं या चिचड़ी, अंटे, इनके पनपने का बहुत अच्छा माहौल ही रहता है, तो स्वच्छता कितनी जरूरी है? क्योंकि पशु बाड़े में हम देखते हैं कि कई बार वही पशु गोबर कर रहा है, वही मलमूत्र सब इकट्ठा हो रहा है, इस

0: जैसे भी इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं।
1: देखो किसान भाइयों को मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि पशु स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 50% योगदान साफ सफाई का रहता है।
0: जी
1: अगर आपके पशु स्वच्छ वातावरण में रह रहे हैं, गौशाला बढ़िया पक्की है, साफ सफाई हो रही है नियमित रूप से, और गोबर और मूत्र कहीं इकट्ठा नहीं हो रहा है उनके आसपास, और पशुशाला में ऐसी वातावरणीय परिस्थितियां हैं जहां हवा का संचार बढ़िया हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में पशुओं कम बीमार पड़ते हैं, उनको ये अट्टे किलनी जूं ये सब की समस्याएं कम से कम रहती हैं। तो ऐसे में पशु स्वस्थ भी रहता है, उसका उत्पादन भी बढ़ता है। तो पशुओं का स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है,
0: जी
1: इसलिए हम किसान भाइयों से आग्रह करते हैं कि अपनी पशुशाला की ऐसे सफाई करें जैसे आप अपने घर में रहते हैं, अपने लिए करते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा जैसे बरसात में हम अगर रोगों की बात करें तो किस किस तरह के रोग होने की संभावना इन दिनों रहती है?
1: देखिए बरसात से पहले और बरसात के बाद में अगर हम रोगों की बात करें तो जो बरसात में आते हैं वो कुछ ज़्यादा ही संक्रामक होते हैं। जैसे भैंसों में अक्सर हमको हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया देखने को मिलता है, जिसे हम हिंदी भाषा में गलघोटू कहते हैं।
0: जी
1: और इसमें मैं किसान भाइयों को एक बात इससे पहले ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पास दो तरीके के रोग होते हैं, एक संक्रामक रोग, एक असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या है कि जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं।
0: जी
1: अब पशु साथ साथ चरते हैं, साथ साथ एक चराई में खाना खाते हैं और साथ साथ एक चराई में पानी पीते हैं, तो ऐसी दशा में उनके जो पशुओं की लार से या पशुओं के आपस में कांटेक्ट होने से कई तरीके के रोग पनपते हैं। तो इस तरीके के पशु जो एक से दूसरे में रोग फैलाते हैं या पशुओं से मनुष्यों में भी रोग आते हैं, तो ऐसे रोग उनको संक्रामक रोगों की श्रेणी में रखते हैं हम लोग। और जो एक पशु में होता है लेकिन दूसरे में नहीं होता, उसे असंक्रामक की श्रेणी में रखते हैं। तो ये जो पशुओं का रोगों का वर्गीकरण है, इसमें संक्रामक रोगों से बचाव के लिए हम किसान भाइयों को सलाह देना चाहेंगे कि किसान भाई टीकाकरण अवश्य कराएं, और सामान्य तौर पर टीकाकरण कराना पूरे हर्ड का या पूरे गांव का जरूरी होता है। तो पशुपालन विभाग इसमें बड़ी सुविधा दे रहा है आप लोगों को,
0: जी
1: तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप जो है नियमित रूप से टीकाकरण करवाएं। जैसे गर्मियों के शुरू में मार्च अप्रैल में आप लोग खुरिया या खुरपका मुंहपका जिसे कहते हैं उसका टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। वैसे तो साल में 4 बार की बात कही जाती है, अगर आप 2 बार भी करवा लें होली और दिवाली पर, याद रख लें कि होली के बाद और दिवाली से पहले हमको जो है ये खुरपका मुंहपका का टीकाकरण कराना है। और बरसात के शुरू में मई या जून के माह में आप जो है गलघोटू का टीकाकरण करा लें, तो रोगों से बचाव ही उनका इलाज है, क्योंकि जब संक्रमण हो जाता है तो उसके बाद हम द्वितीय स्तर के इलाज करते हैं, और वो फिर जो है पशुओं में तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका होता है, चाहे उनका उत्पादन घट जाए और कई बार छोटे बच्चों में मृत्यु भी देखने को मिलती है, और कई बार समय बहुत कम रह जाता है कि पशु इतने संक्रामक रोग से ग्रसित हो जाते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम होता है उन्हें बचाने का। तो पशुओं को टीकाकरण जो है सबसे अच्छा उपाय है। दूसरा असंक्रामक रोगों की बात मैं कर रहा था, तो असंक्रामक रोगों में जैसे बदहजमी बरसात के दिनों में काफ़ी देखने को मिलती है। होता क्या है कि हमारे पशु चरागाह में जाते हैं, अगर कहीं दलदली ज़मीन है या मतलब इस तरीके की ज़मीन है जहाँ पर जो है पानी खड़ा हुआ है, ऐसी जगह से घास खाते हैं, तो पशु स्नेल्स भी साथ में खा जाते हैं। एक घोंगा होता है कीड़ा, वो भी चला जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि इन संक्रमित चारे को खाने से पशुओं का लीवर ख़राब हो जाता है, उन्हें दस्त लग जाते हैं, पतला गोबर करते हैं। तो इसके लिए लीवर टॉनिक तो हम सजेस्ट करते ही हैं, साथ ही इसको हम किसानों से अनुरोध करते हैं कि आप जो है बरसात के दिनों में चरागाहों में ले जाने से बचें, और अगर संभव हो जहाँ तक चारे को काट के और बढ़िया से देख के भाल के तब खिलाएं।
0: जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने संक्रामक रोगों की बात करी कि इनमें टीकाकरण हमारे जो पशुपालक साथी हैं उनको कराना चाहिए, तो क्या सरकार इसमें मुफ्त टीकाकरण करवाती है?
1: हाँ, सरकार की एक कैस्केड योजना है, उसके तहत जो है सरकार मुफ्त टीकाकरण कराती है। बस किसान भाइयों से अनुरोध ये रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पशुओं को एक जगह पे इकट्ठा कर लें, ताकि पशुपालन विभाग को जो है सुविधा हो, उनके चिकित्सकों को सुविधा हो, और वो टीकाकरण मुफ्त होता है। और ये सरकार की बहुत ही अच्छी महत्वाकांक्षी योजना है, और पशुपालन विभाग की कोशिश पूरी रहती है कि भाई सारे पशुओं का टीकाकरण कर दिया जाए।
0: जी डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा जैसे आपने बताया कि कई तरह के संक्रामक रोग इन दिनों हो जाते हैं, अगर कोई पशु इन रोगों से ग्रसित है तो पशुपालक को सबसे पहले क्या करना होगा?
1: देखिए जैसे सबसे पहले अगर कोई संक्रमण हो गया पशु को, तो इसकी सूचना तुरंत जो है अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा

0: असहज है, दूध उत्पादन कम कर रहा है, इसका खाने में मन नहीं लग रहा है, इसकी मजल जो है, नथुना जो है, सूख गया है, तो ऐसी स्थिति में किसान को चाहिए कि वो तुरंत अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशुओं के बताएं, उसके बारे में जानकारी दें और उसका इलाज कराएं।
1: जी डॉक्टर साहब, कई बार हम देखते हैं कि पशुपालक अक्सर घर में ही इलाज करना शुरू कर देते हैं, घर की ही तमाम चीजें करते हैं, तो ये कितना फायदेमंद और कितना नुकसानदायक हो सकता है?
0: देखिए, परंपरागत तरीके से किसान भाई हमेशा जो है अपने पशुओं का इलाज करते रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बदहजमी,
1: जी
0: तो इसके लिए अगर बदहजमी हो जाए, पेट खराब हो जाए या पेट जो है सूख जाए, तो किसान को पता लग जाता है, वो अपने देसी इलाज करते हैं और वो बहुत फायदेमंद भी होते हैं कई बार। जैसे अजवाइन का काढ़ा पिला देते हैं पेट खराब हो रहा है तो, या मतलब अजवाइन और नमक मिला के खिला देते हैं, तो इस तरीके के जो घरेलू इलाज है, या पेट चल गया है तो गर्म रोटी दे देते हैं, बासी रोटी देते हैं मोटे अनाज की, तो वो भी फायदेमंद करता है। जैसे जाड़े के दिनों में अगर पेट चल जाए तो कम से कम बथुआ का, बेथू जिसे बोलते हैं पहाड़ों में, उसकी जो है चटनी बना के कम से कम आधा किलो एक बार में खिलाते हैं, रोटी के साथ खिलाते हैं, तो बड़ा फायदेमंद रहता है। तो इस तरीके के किसान घरेलू इलाज करते भी हैं और वो फायदे भी करते हैं। तो इसको एक तरह से नकारा नहीं जा सकता कि किसानों का जो अनुभव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो
1: जी
0: काफी हद तक जो छोटे मोटे इलाज हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं सर्जिकल प्रॉब्लम है, कहीं मेडिसिन की अत्यंत आवश्यकता है, या पशु का जो है स्वास्थ्य इतना खराब हो गया कि भाई अब संभाले नहीं संभलेगा, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति ना आ पाए इससे पहले ही आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से जरूर संपर्क कर लें।
1: जी डॉक्टर साहब, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार बहुत ज़रूरी है, और इस समय क्योंकि हरा चारा अक्सर बहुतायत में हमारे किसान साथी पशुओं को देते हैं, तो कैसा आहार इन दिनों अपने पशुओं को देना होगा?
0: देखिए, हमारे यहाँ जो व्यवस्था है भारतवर्ष में, वो लो इनपुट लो आउटपुट की व्यवस्था है। हम कम खर्चा करना चाहते हैं अपने जानवरों पर, और कम मिल जाए तो हमें संतोष रहता है। लेकिन है क्या कि अब जो है वातावरण बदल रहा है, जो औद्योगिक गतिविधियां हैं वो बढ़ रही हैं, आप दूध मांस या मतलब उनकी चमड़ी या उनके फर या उनसे उन मिलने वाले जो भी उत्पाद हैं पशुओं से, अब वो जो है व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखे जाने लगे हैं। तो हमारा किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि आप जो है हरे चारे पर ही अवलंबित ना रहें, उसको जो है हरे चारे को ज़्यादा बहुतायत में ज़्यादा खिलाओगे तो फायदा कम नुकसान ज़्यादा होगा। होता क्या है कि हमारे किसान भाई लालच कर लेते हैं कि हमें जो है सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हम हरे चारे से ही कर दें, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको हमेशा 30 से 40% आपको हरा चारा रखना चाहिए और 60% 70% आपको जो है सूखा रखना चाहिए। उससे होगा क्या कि पशु का जो है हाजमा दुरुस्त रहेगा, उसका पेट भी भरेगा और उसको जो खाया है वो भी लगेगा, प्लस उसके साथ में हरे चारे और इनके साथ में किसान भाई संतुलित पशु आहार का विशेष ध्यान रखें। संतुलित पशु आहार के लिए आप लोगों को जो है घर में ही आप बना सकते हैं। इसके लिए एक बड़ा ही साधारण सा तरीका मैं बताऊंगा कि अगर आपको 1 क्विंटल अपने घर में संतुलित पशु आहार जो रखना है, तो उसके लिए आपको 30 किलोग्राम अनाज का दलिया ले लें, 30 किलोग्राम अनाज का छिलका ले लें, अनाज का छिलका जैसे दालों का छिलका हो सकता है या धान का भूसी हो सकती है वो ले लें, अनाज कोई सा भी हो सकता है, तो अनाज का दलिया, अनाज का छिलका और खल, खल सरसों की आमतौर पर मिल जाती है, इनको जो है 3 हिस्सों में 30-30 किलो बांट लें, तो 90 किलो हो गया। अब 10 किलो की बात बची, तो 10 किलो में 7 किलोग्राम गुड़, 1 किलोग्राम नमक और बचा हुआ 2 किलोग्राम खनिज मिश्रण जो बाजार से मिलेगा वो लाके इसमें मिलाएं, पशु चिकित्सा इकाइयों पर मिल जाता है वहां से ले लें, और कहीं कैंप लगा हुआ है तो वहां से ले लें। तो और ये जो है थोड़ा सा 150 से 200 रुपये के बीच में अच्छा जो है हमें खनिज मिश्रण मिल जाएगा, बाकी चीज़ें गाँव स्तर पर मिल जाती हैं।
1: जी
0: तो किसान भाई इस तरीके से मिश्रण बना के अगर पशु को खिलाएंगे तो उन्हें अवश्य फायदा होगा, और ये संतुलित पशु आहार जहाँ एक तरफ विटामिन मिनरल्स खनिजों की कमी को पूर्ति करता है, उनके प्रजनन में भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो पशुओं का प्रजनन अच्छा रहेगा, पशुओं का उत्पादन अच्छा रहेगा, पशुओं का जो है उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनके शरीर पर चमक रहेगी, और तो इसलिए पशुओं को संतुलित पशु आहार देना बहुत ही आवश्यक है।
1: जी तो डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप हमारे तमाम पशुपालकों तक पहुंचा रहे हैं, और पशुपालक इस बातचीत को बड़े ध्यान से भी सुन रहे होंगे क्योंकि काफी लाभदायक है उनके लिए। अंत में डॉक्टर साहब क्या कहेंगे हमारे पशुपालक साथियों से?
0: देखिए, हम पशु स्वास्थ्य प्रबंधन की आज बात कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि पशुओं का जो स्वास्थ्य है
1: जी
0: उनकी बीमारियों की रोकथाम सबसे जरूरी है, उसके बाद उनका इलाज आता है। अगर आपके पशु स्वस्थ रहेंगे, अच्छा उत्पादन देंगे, आपको भी जो है कष्ट नहीं होगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप समय से टीकाकरण कराएं, पशुओं की स्वच्छता का ध्यान रखें, उनको उचित आहार दें, संतुलित आहार दें, और समय समय पर पशु चिकित्सक से परामर्श करते रहें तो इससे

0: आपको जो है पशुपालन जो है एक बेहतरीन तरीके से करने में मदद मिलेगी।
1: जी, तो डॉक्टर नीलकांत, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के विषय में हमारे तमाम पशुपालकों तक पहुंचाई। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो अभी हमने सुनी भेंट वार्ता। अपनी चर्चा जारी रखने से पहले आइए आनंद लेते हैं इस लोकगीत का।

साथियों, जब भी हम ऐसी सब्जी की बात करते हैं जो कम जगह में अच्छी आमदनी दे सकती है, तो शिमला मिर्च का नाम सबसे पहले आता है। आजकल इसकी मांग केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं, बल्कि छोटे शहरों और स्थानीय मंडियों में भी लगातार बढ़ रही है। होटल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड सेंटर और घरों में इसका इस्तेमाल रोज़ होता है। ऐसे में इसकी खेती सही तरीके से की जाए तो यह किसानों के लिए कमाई का अच्छा जरिया बन सकती है। लेकिन अक्सर किसान भाई पूछते हैं कि अच्छी पैदावार के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है। इसका सीधा सा जवाब है, फसल की शुरुआत सही होनी चाहिए। अच्छी गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज चुनिए और पौध तैयार करने में थोड़ी सावधानी बरतिए। मजबूत और स्वस्थ पौधे ही आगे चलकर अच्छी उपज देते हैं। शिमला मिर्च को ऐसा मौसम पसंद है जहाँ ना ज़्यादा गर्मी हो और ना ही बहुत अधिक ठंडा। लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए अनुकूल माना जाता है। यदि खेत की मिट्टी दोमट हो, पानी आसानी से निकल जाए और पीएच लगभग 6 से 7 के बीच हो, तो पौधों की बढ़वार काफ़ी अच्छी रहती है। खेत तैयार करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट मिट्टी में ही मिला दें। इससे मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है और पौधों की जड़ों को अच्छा पोषण मिलता है। जब पौध लगभग 1 महीने की हो जाए, तब उसे उचित दूरी पर खेत में लगा दें। दूरी बनाए रखने से पौधों को धूप और हवा अच्छी तरह मिलती है और रोग लगने की संभावना भी कम हो जाती है। अब सोचिए, अगर किसी पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिल जाए तो क्या होगा? बिल्कुल सही, उसकी जड़ें खराब हो सकती हैं। इसलिए शिमला मिर्च में सिंचाई हमेशा आवश्यकता के अनुसार करें। खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए, लेकिन मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहनी चाहिए। यही संतुलन अच्छी फसल की पहचान है। इसी तरह खेत को खरपतवार से मुक्त रखना भी जरूरी है। समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहने से पौधों को पूरा पोषण मिलता है और उनकी बढ़वार बेहतर होती है। यदि उर्वरकों का प्रयोग करना हो तो संतुलित मात्रा में और कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही करें। किसान भाइयों और बहनों, फसल चाहे कोई भी हो, कीट और रोगों से सावधानी हमेशा जरूरी होती है। शिमला मिर्च में भी कभी कभी कुछ कीट दिखाई देते हैं। इसके अलावा पत्तियों के मुड़ने या झुलसा रोग की समस्या भी हो सकती है, इसलिए खेत का नियमित निरीक्षण करते रहें। तो साथियों, कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि यदि शुरुआत अच्छी हो तो मिट्टी उपयुक्त हो और पौधों को संतुलित खाद और पानी मिले, खेत की नियमित देखभाल होती रहे और कीट रोगों पर समय रहते नियंत्रण किया जाए, तो शिमला मिर्च की खेती निश्चित रूप से अच्छी आय देने वाली फसल साबित हो सकती है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। और इसी के साथ अब वक्त हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का। पर जाने से पहले हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, जो बताने के लिए आप हमें पत्र भेज सकते हैं। और पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र देहरादून 248001। तो मुझे यानी शिप्रा को इजाज़त दें। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब समय हो गया है कुमाऊनी प्रादेशिक समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी मां प्रादेशिक समाचारों दगड़े में कुसुम लता पिलखवाल। पहली मुख्य समाचार। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज वर्चुअल माध्यमल टनकपुर बटी महाराष्ट्र नादेर ताले नई रेल सेवा शुभारंभ करो। भारतीय सेना ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस परीक्षा परिणाम अगिल 3/4 दिनों में घोषित करी जल। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल सहकारिता आंदोलन के और ज्यादा मजबूत बनाक विनती ले करी। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैडाल को मानसूनक दौरान आपदा प्रबंधन के लिए राज्य सरकार पूर्व तरीकल सचेत छू और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराजल सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल में 3 करोड़ रुपए हबी सकरक विकास योजनाएं जनता के समर्पित करी। अब समाचार विस्तारल। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज वर्चुअल माध्यमल चंपावत जिले टनकपुर बटी महाराष्ट्र नादेर ताली नई रेल सेवा शुभारंभ करो। यो मौके पर उन्होंने कहा कि यो रेल सेवा उत्तराखंड तराई क्षेत्र में ऋण व सिख श्रद्धालुओं को लंब बखत बटी चली आ रही मागन के पुर करोल।
2: आज देवभूमि उत्तराखंड के टनकपुर से हुजूर साहेब नंदेड़ के लिए नई सर्विस चालू हुई। तराई के क्षेत्र में हमारे बहुत सारे सिख भाई और बहन जो रहते हैं

0: उनकी साइड से लगातार डिमांड थी। श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी, श्री जितिन प्रसाद जी और श्री टमटा जी के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी डिमांड की थी।
1: टनकपुर में आयोजित कार्यक्रम के संबोधित करण बखत केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटाल को कि टनकपुर नादिर एक्सप्रेस बटी पर्यटन व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क के बढ़ावा मिलल। भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजित करी गई ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामक परिणाम अगिल 3/4 दिन में घोषित करी जल। भर्ती कार्यालय अलमाड़क अनुसार अभ्यर्थी अपूर जल्ट भारतीय सेना के आधिकारिक वेबसाइट में देख सकल। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंडक सभ्य जिलों केंद्रीय कैटगरी और जोनल कैटगरी अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 25 और 26 जुलाई के रानीखेतक सोमनाथ मैदान में आयोजित करी जल। यो दौरान अभ्यर्थियों अभिलेखों के लिए परीक्षण करी जल। अभ्यर्थी अपू दगड़ सभे कागजातक मूल प्रतीक दगड़ उनर 3 प्रतिलिपि और 20 पासपोर्ट साइजक फोटो रखने के लिए सलाह दी जा रहे। कागजातक बिना रैली ग्राउंड में प्रवेश नहीं दी जाल। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल को कि किसानों की समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत तक संकल्प के साकार करने के लिए सरकार सहकारिता आंदोलन के और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए वचनबद्ध छो। हरिद्वार में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना 5 साल पूर्व होने उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लगभग 30 लाख किसान सहकारिता विभाग बटी जुड़ी छन। उन्होंने बताया कि सहकारिता क्षेत्र में करी गई सुधारों के परिणाम स्वरूप प्रदेश तक सभी सहकारी बैंक सामूहिक रूप से लगभग 300 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ में छी।
2: हम लोग हर जिले में और हर समिति में बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि सहकारिता विभाग आज पूरे देश में लगभग करोड़ों लोगों का विभाग हो गया है। उत्तराखंड में भी 30 लाख किसान हमसे जुड़े हैं और इस साल हम पूरे प्रदेश के 2 लाख किसानों को 0% पे ऋण दे रहे हैं। आज हमारे सहकारिता के जितने हमारे बैंक है वो 300 करोड़ रूपए के प्रॉफिट में आ गए और इस साल हम 55 नई शाखाएं अपने प्रदेश में खोले हैं।
1: एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर रावतल बता कि सहकारिता सप्ताह अंतर्गत 10 करोड़ रुपए हबी सकरक अलग अलग विकास योजनाओं लोकार्पण और शिलान्यास करेगो।
3: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के यो बुलेटिन अपुलोग आकाशवाणी देहरादून केंद्र बैठे सुनने लग रहा। इन समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड में उपलब्ध छन। ताजा समाचार निकले जी अपुलोग हमर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता।
1: कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैडाल करो कि मानसूनक दौरान आपदा प्रबंधन के लिए राज्य सरकार पूर्ण तरीकल सतर्क छो। उन्होंने बताया कि सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को आपसी मेलजोलक दगर जागरूक रहकर काम करने के निर्देश दी जा रही। श्री कैडाल को कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में आपदा प्रबंधक तैयारियों की जाँच कर है, कई उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित कर ली। उन्होंने कहा कि मानसूनक दौरान प्रदेशवासियों के कोले प्रकारक असुविधा नहीं हो यह लीजिए सरकार प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई पक्क करने।
4: माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कई बार आपदा से जुड़े जितने भी अधिकारी हैं उनकी बैठक भी हो चुकी है और मानसून पे आपदा के दौरान कहीं पर भी कृषि क्षेत्र में कोई भी परेशानी प्रदेश की जनता को नहीं होगी, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है।
1: कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराजल आज सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत पौड़ीगढ़वालक बीरूखाल विकासखंड में 3,20,00,000 रुपए हबे ज्यादा विकास योजना जनता के समर्पित करी। यो मौके पर उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा केवल एक आयोजन नहीं छू बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वासक सेतु छू। यह एक माध्यम सरकार अपू कामों के जनता के सामने प्रस्तुत करूँ और लोगनक समस्याओं के समाधानक गारंटी देने का प्रयास करूँ। श्री महाराजल कहो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र में विकासक काम तेजी करी जानी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई पंपिंग योजनाओं पर करोड़ों रुपये की लागत काम संचालित करी जानी। यह दौरान कैबिनेट मंत्री अलग अलग जगहों पर जनसंपर्क लेकर स्थानीय लोगों की समस्याओं के सुनो और अधिकारियों के उन्हें जल्द समाधानक निर्देश ले दी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पहली दलक पिथौरगढ़ पहुंचने पर पारंपरिक और भव्य स्वागत करेगो। यह दौरान ढोल दमाऊ थाप और छोलिया नृत्यल माहौल के और ज्यादा भव्य बने दी। जिलाधिकारी आशीष भटगाइल बता कि पहली दल मां देशक अलग अलग राज्यों बटी आई 49 श्रद्धालु शामिल छी, जिनमा की 15 सैनी छी।
5: टोटल 49 सदस्य इस पहले दल में हैं, जिसमें से 15 हमारी जो हैं वो महिलाएं हैं, और सभी यात्री बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है उत्तराखंड में आके। मैं उनकी यात्रा की मंगल कामना करता हूं और ये कामना करता हूं कि अत्यंत मंगलकारी ये यात्रा उनके लिए रहेगी।
1: तीर्थ यात्रियों उत्तराखंड में मिली आत्मीय स्वागत तक लीजिए राज्य सरकार और जिला प्रशासनक आभार के जता, यात्रा के अपू जीवनक सौभाग्यपूर्ण अवसर बता।
6: नाम हरि कृष्ण है और मैं 21 इयर्स ओल्ड हूँ, बिल्कुल फर्स्ट बेच में हूँ। मैं और मेरे मदर कैलाश यात्रा में जा रही है, और जब हम यहाँ आए तब हमें कैलाश और उसका जितना कितना महत्व है और क्या मतलब लोगों ने क्या क्या योगदान दिए, क्या क्या मीन्स ITBP जो काम कर रही है, आर्मी गवर्नमेंट कह दीजिए, कुमाऊं मंडल कह दीजिए, वो लोग मतलब हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं कि उसको शब्दों में तो आप बयां ही नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
7: ओम नमः शिवाय। मेरा नाम भूपेश पंत है। बहुत अच्छा लग रहा है जैसा उत्तराखंड में हमारा स्वागत हुआ। मैं पिथौरागढ़ का ही रहने वाला हूँ, पिथौरागढ़ में ही मेरी पढ़ाई वढ़ाई हुई है। बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा स्वागत सत्कार हो रहा है उत्तराखंड में। जैसे कि कहते हैं अतिथि देवो भव, तो वो सार्थक कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी और सारे अधिकारीगण।
1: देहरादून जिलक सहसपुर विकास खंडक स्वयं सहायता समूह बटी जुड़ी श्रेणियों आत्मनिर्भरता नई मिसाल पेश कर रहे। समूह श्रेणी स्थानीय किसानों बटी ताजी और जैविक साफ सब्जी खरीद बे उनके सीमा द्वार स्थित IDBP जवानों ताले पहुँचा नहीं। जिला प्रशासनक यह पहल श्रेणियों के घर बैठे रोजगारक नई मौक मिल नहीं। जिला परियोजना प्रबंधक सोनम गुप्ताल बता कि उड़ान क्लस्टर लेवल फेडरेशनक श्रेणी ITBP उन्हें मांगक 25% जैविक साफ सब्जियों सप्लाई कर नहीं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय अपू प्रमुख राष्ट्रीय नवाचार मंच नवाचार मंत्रक लीजी पंजीकरणक आखिरी तारीख 15 जुलाई ताले बढ़े है। मंत्रालय को की देश भरक खोजकर्ताओं बहुत ज्यादा रुचि के देखते हुए यह निर्णय लीजिए जरो। मंत्रालय को की आधिकारिक नवाचार मंत्र पंजीकरण पोर्टल पर अब ताले हजारों इच्छुक उद्यमियों और खोजकर्ताओं पंजीकरण करे है। आखिर में मुख्य समाचार एक बार आई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज वर्चुअल माध्यमल टनकपुर बटी महाराष्ट्र नादेड़ ताले नई रेल सेवा शुभारंभ करो। भारतीय सेना ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस परीक्षा परिणाम अगले 3/4 दिनों में घोषित करी जान। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल सहकारिता आंदोलन के और ज्यादा मजबूत बनानक विनती ले करी। कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैडाल को मानसूनक दौरान आपदा प्रबंधन के लिए राज्य सरकार पूर्व तरीकल सचेत छू, और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराजल सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल में 3 करोड़ रुपये हबेर सकरक विकास योजनाएं जनता के समर्पित करी। जो के दगड़ी कुमाऊनी मां प्रादेशिक समाचारों ये अंक ये खत्म हूँ। नमस्कार।
8: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुनते हैं फिल्म सांवरिया से संगीतकार समीर अंजान के मोंटी शर्मा के इस गीत को, जिसे लिखा है समीर अंजान ने, स्वर शांत।

श्रोताओं, गीतकार इरशद कामिल के इस गीत को संगीतबद्ध किया प्रीतम ने। स्वर था अरिजीत सिंह का और फिल्म थी यारियां। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आइए अब सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून का विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी देहरादून के विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, उत्तराखंड यानी देवभूमि, हिमालय की गोद में बसा ये ऐसा राज्य जहां प्रकृति की अनुपम छटा है तो चुनौतियां भी कम नहीं है। कहीं पहाड़ों से पलायन की चिंता है तो कहीं छोटे छोटे खेत किसानों की आय बढ़ाने में बाधा बनते हैं। कहीं जंगलों की सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी है तो कहीं जलवायु परिवर्तन नई चुनौतियां लेकर सामने खड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्तराखंड अब नई सोच और नई तकनीक के साथ आगे बढ़ रहा है। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं रागिनी बंजोला और आज के ज्ञान दर्पण में हम बात करेंगे ऐसे तीन महत्वपूर्ण पहलों की जो आने वाले समय में उत्तराखंड के विकास की नई तस्वीर गढ़ सकती हैं। सबसे पहले बात करेंगे हिमालयी राज्यों से समन्वय और नीति निर्धारण परिषद की, फिर जानेंगे हिमकास्ट मोबाइल ऐप के बारे में और आखिर में समझेंगे कि नई चकबंदी नीति किस तरह पहाड़ों की खेती में बदलाव ला सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और पूर्वोत्तर के पर्वतीय राज्यों की समस्याएं लगभग एक जैसी हैं? इन राज्यों में ऊंचे पहाड़ हैं, सीमित कृषि भूमि है, मौसम पल पल बदलता है और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में क्या इनके लिए वही योजनाएं कारगर हो सकती हैं जो मैदानी राज्यों के लिए बनाई जा रही हैं? तो जवाब है नहीं। ये सोच लेकर 24 अप्रैल 2026 को देहरादून में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हिमालयी राज्यों से समन्वय एवं नीति निर्धारण परिषद की पहली बैठक आयोजित हुई और इस बैठक का उद्देश्य था सभी हिमालयी राज्यों को एक साझा मंच देना ताकि पहाड़ों की समस्याओं पर मिलकर विचार किया जा सके और उनके समाधान भी साझा रूप से तलाशे जाएं। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि हिमालयी राज्यों की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां देश के मैदानी इलाकों से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए इनके विकास की नीतियां भी अलग सोच के साथ तैयार की जानी चाहिए। बैठक में 5 ऐसे विषय तय किए गए जिन्हें आने वाले समय की प्राथमिकता माना गया। सबसे पहला विषय था जल सुरक्षा। हिमालय को भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है, लेकिन विडंबना यह है कि पहाड़ों में ही कई पारंपरिक जल स्रोत तेजी से सूखे जा रहे हैं। अब इन प्राकृतिक जल स्रोतों की वैज्ञानिक मैपिंग की जाएगी और उन्हें दोबारा जीवित करने का प्रयास होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। दूसरा विषय था सतत पर्यटन। उत्तराखंड में हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी है, लेकिन यदि पर्यटन अनियंत्रित हो जाए तो पर्यावरण का दबाव भी बढ़ जाता है। इसलिए परिषद ने ऐसे पर्यटन मॉडल पर जोर दिया है जिसमें प्रकृति भी सुरक्षित रहे और स्थानीय लोगों की आय भी बनी रहे। होमस्टे, स्थानीय गाइड, स्थानीय उत्पाद और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन इसी सोच का हिस्सा है। तीसरा विषय है विकास और पर्यावरण में संतुलन। श्रोताओं, आपको हमें सभी को सड़कें भी चाहिए, सुरंगें भी बनानी है, बिजली परियोजनाएं भी जरूरी हैं, लेकिन विकास ऐसा हो जिससे पहाड़ों का प्राकृतिक संतुलन न बिगड़े। इसलिए अब बड़े विकास कार्यों से पहले हिमालय क्षेत्रों की कैरिंग कैपेसिटी यानी वाहन क्षमता का वैज्ञानिक आकलन करने पर जोर दिया जाएगा। और चौथा विषय है पलायन रोकना। उत्तराखंड के अनेक गांव आज भी खाली हो रहे हैं, युवा रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जा रहे हैं। परिषद का मानना है कि यदि गांवों में ही रोजगार के अवसर बढ़ें, जैविक खेती को बढ़ावा मिले, स्थानीय उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग हो तो लोग अपने गांव में रहकर भी बेहतर जीवन जी सकते हैं। और पांचवा विषय आपदा प्रबंधन। हिमालय क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के प्रति बेहद संवेदनशील है। बाढ़, भूस्खलन, बादल फटना और ग्लेशियरों से जुड़ी घटनाएं, इनसे निपटने के लिए अब हिमालयी राज्यों के बीच रियल टाइम डेटा साझा करने की व्यवस्था विकसित की जाएगी ताकि समय रहते चेतावनी मिले और जान माल का नुकसान कम किया जा सके। श्रोताओं, नीतियां तभी सफल होती हैं जब उनका लाभ सीधे लोगों तक पहुंचता है और आज के दौर में तकनीक इस काम को आसान बना रही है। उत्तराखंड में भी वन विभाग ने एक ऐसी ही नई डिजिटल पहल शुरू की है जिसका नाम है हिमकास्ट मोबाइल ऐप।
आइए अब जानते हैं ये ऐप आखिर क्या है और इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा। कल्पना कीजिए, अगर आपको लकड़ी खरीदनी हो या नीलामी में भाग लेना हो या लकड़ी के परिवहन के लिए परमिट बनवाना हो, तो क्या आप हर बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाएंगे? अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विकास निगम की रजत जयंती के अवसर पर हिमकास्ट मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है और ये ऐप उत्तराखंड वन विभाग और वन विकास निगम की एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है। इसका उद्देश्य है वन उपज के व्यापार को पारदर्शी, सरल और तेज बनाना। अब व्यापारी मोबाइल से ही लकड़ी की ई नीलामी की जानकारी देख सकेंगे, ऑनलाइन बोली लगा सकेंगे, डिपो में उपलब्ध लकड़ी का स्टॉक और उसकी कीमतें जान सकेंगे और सबसे बड़ी बात, ट्रांजिट पास और परमिट के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा ने पूरी प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया है। इससे न केवल लोगों का समय बचेगा बल्कि बिचौलियों की भूमिका भी कम होगी। इससे न केवल लोगों का समय बचेगा बल्कि बिचौलियों की भूमिका भी कम होगी। डिजिटल व्यवस्था होने से अवैध कटान और वन तस्करी पर भी प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी, यानी तकनीक अब जंगलों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। श्रोताओं, तक

0: तकनीक से काम आसान हो सकता है, लेकिन पहाड़ों की असली ताकत है खेती और गांव। उत्तराखंड के अधिकांश पर्वतीय इलाकों में खेती आज भी लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन है, लेकिन यहाँ एक ऐसी समस्या है जो वर्षों से किसानों के सामने चुनौती बन गई है, और वो है बिखरी हुई खेती। जरा सोचिए, अगर किसी किसान की जमीन एक ही जगह होने के बजाय चार या पांच अलग-अलग टुकड़ों में बंटी हो, तो खेती करना कितना मुश्किल होगा। हर खेत तक पहुंचना, सिंचाई करना, मशीनों का इस्तेमाल करना और फसल की लागत कम रखना, सब कुछ कठिन हो जाता है। उत्तराखंड के अधिकांश पर्वतीय जिलों में यही स्थिति है, और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने उत्तराखंड स्वैच्छिक एवं आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति 2026 को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य है छोटे छोटे बिखरे खेतों को आपसी सहमति से व्यवस्थित करना, ताकि खेती आसान, आधुनिक और लाभदायक बन सके। लेकिन यहाँ एक बात सबसे खास है, ये चकबंदी जबरन नहीं होगी। सरकार ने इसे पूरी तरह स्वैच्छिक बनाया है, यानी किसी भी गांव में चकबंदी तभी शुरू होगी जब वहां के लोग कम से कम 75% भूमि स्वामी लिखित रूप से अपनी सहमति देंगे। यानी फैसला सरकार का नहीं है, गांव के लोग मिलकर करेंगे। और अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए, तो पहले चरण में राज्य के 11 पर्वतीय जिलों के प्रत्येक जिले से 10-10 गांव चुने जाने हैं, और यहीं से इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। यदि ये सफल रहा, तो आगे इसे दूसरे क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। अब चकबंदी भी हाईटेक होगी, क्योंकि पहले जमीन की पैमाइश में काफी समय लगता था, कई बार विवाद भी हो जाते थे, लेकिन अब ड्रोन सर्वेक्षण, डिजिटल मैपिंग और जीआईएस तकनीक की मदद से पूरी प्रक्रिया अधिक सटीक और पारदर्शी होगी। इससे किसानों का भरोसा भी बढ़ेगा और विवाद भी कम होगा। आखिर इससे फायदा क्या होगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो जब खेत एक जगह होंगे तो आधुनिक कृषि मशीनों का उपयोग आसान होगा, जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, बागवानी और औषधीय पौधों की खेती बड़े स्तर पर की जा सकेगी, लागत घटेगी, उत्पादन बढ़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, गांव में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यानी ये केवल चकबंदी नहीं, बल्कि पहाड़ों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्रोताओं, आज हमने उत्तराखंड की तीन ऐसी पहलों के बारे में जाना जो देखने में भले ही अलग-अलग लगती हैं, लेकिन इनका उद्देश्य एक ही है, एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित उत्तराखंड का निर्माण। एक ओर हिमालयी राज्यों से समन्वय और नीति निर्धारण परिषद पहाड़ों की साझा चुनौतियों का समाधान खोजने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर हिमकास्ट मोबाइल ऐप तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा मिल रहा है। नई चकबंदी नीति खेती को आधुनिक, लाभकारी और युवाओं के लिए आकर्षक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि इन पहलों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन होता है, तो आने वाले वर्षों में उत्तराखंड न केवल विकास के नए आयाम स्थापित करेगा, बल्कि पर्वतीय राज्यों के लिए भी एक आदर्श मॉडल बन सकता है। तो श्रोताओं, इसी उम्मीद के साथ आज के ज्ञान दर्पण में रागिनी बिंजोला को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून का विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8 बज रहे हैं, समय है हिंदी वार्ता का, और आज आप सुनेंगे डॉक्टर ममता सिंह द्वारा वार्ता। विषय है ललित कलाओं का कौशल विकास में योगदान।
2: आज कला और कौशल विकास, इस विषय पर आपसे विचार साझा कर रही हूँ। कला शब्द को अगर व्याख्यायित करें, कला संस्कृत की क धातु से बना है। ये शब्द कला शब्द कलाति इति कलम, अर्थात आनंद देने वाली कला है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब कला की बात की, तो उन्होंने कहा कि भावों की अभिव्यक्ति कला है। जब रूसी दार्शनिक टॉलस्टॉय ने कला के विषय में लिखा, तो उन्होंने संप्रेषण को ही कला माना, और जब प्लेटो और अरस्तु ने कला को संदर्भित किया, तो उन्होंने कहा कि सत्य की अनुकृति ही कला है। महान दार्शनिक क्रोचे ने संवेदना को कला से जोड़ा। वास्तव में कला केवल आनंद देने वाली ही नहीं, केवल मनोरंजन करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मानव के मन की अभिव्यक्ति ही कला है। वास्तव में कला जीवन को सौंदर्य प्रदान करती है। इसके मानसिक और बाह्य दोनों ही पक्ष हैं और ये दोनों ही पक्षों को आनंदित करने वाली है। आप मन के भावों को अभिव्यक्त करते हैं तो मानसिक पक्ष सामने आता है। जब आप बाह्य पक्ष की बात करेंगे तो इसे बहुत ही साधारण शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं कि आपका घर है, आपका शयन कक्ष है, भोजन कक्ष है और वहाँ एक सुंदर चित्र भी है तो और अच्छा, वरना आवश्यकता तो आपकी बिना चित्र का अगर कोई कक्ष है तो पूरी हो ही रही है। वास्तव में हम कहें तो कहेंगे हम कला जीवन है। जहाँ कला का अभाव है वहाँ जीवन निस्सार मान सकते हैं। विविध भाषाओं में कला शब्द को किस प्रकार व्याख्यायित किया गया, समझाया गया, अगर हम इस संदर्भ में देखें तो संस्कृत भाषा में, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, क लाती इति कला, अर्थात क धातु से इसकी उत्पत्ति को माना गया है। फ्रेंच भाषा में बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ल आर्ट, ये शब्द इसके लिए रखा गया। इटालियन भाषा में इसे ल आर्ते कहा गया और जब स्पेनिश की बात आई तो वहां एल आर्ते कहा गया। अंग्रेजी में 12वीं शताब्दी में सबसे पहले कला के लिए आर्ट शब्द का प्रयोग हुआ। इसके अलावा जब हम जर्मनी में देखते हैं तो उस भाषा में इसे कुंस्त कहा गया, लैटिन भाषा में इसे कोग्नेस्को कहा गया। इन सभी शब्दों का एक रूप हम देखेंगे तो उसका हमारे सामने जो पक्ष आता है वो उसका मतलब होता है कि मानवीय कुशलता, अर्थात जानना। केवल कौशल ही नहीं, ज्ञान भी कला को संदर्भित करता है। यदि हम कला को और विस्तृत रूप में समझना चाहें तो जब हम देखते हैं कि कला का विकास, इसे किस प्रकार हम आपको समझें, हम समझें, कला मानव की चिरसंगनी रही है। जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, कला का विकसित रूप हमारे सामने आया है। यदि हम भारत के संदर्भ में कला के विकास को देखें तो प्रागैतिहासिक काल से हम उसका प्रारंभ देख सकते हैं, जब मनुष्य गुफाओं में रहता था, कंदराओं में रहता था, जंगली जीवन एक बिता रहा था। न भाषा थी, न शब्द थे, न गीत थे, न चित्र थे, लेकिन उस वक्त भी मनुष्य जो सीमित साधन थे, कोयला हुआ, कोई जला पत्थर हुआ, उसके माध्यम से अपनी भावों की अभिव्यक्ति गुफाओं की दीवारों पर, छतों पर करता था। और वो चित्र हम आज देखते हैं प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के माध्यम से, और भोपाल में भीमबेटका है, पचमढ़ी है और अनेक राज्यों में प्रागैतिहासिक कालीन चित्र हम देखते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जब मनुष्य सभ्य भी नहीं था तब भी वो कलाकार था। इसके बाद जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता को देखते हैं तो वहाँ हम एक ऐसी नगरीय सभ्यता का दर्शन करते हैं जो नदियों के किनारे पनपी, और उसने ये बताया कि आज के जितने भी स्मार्ट सिटी हैं, बड़े बड़े महानगर हैं, वो भी सिंधु घाटी की सभ्यता के नगरों के सामने फीके हैं। हम जानते हैं कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ऐसे तमाम शहर रहे जहाँ एक बहुत ही सभ्य सभ्यता, नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, जिसमें बड़े बड़े भवन, बहुत सुंदर बर्तनों पर चित्रकारी, इसके अलावा अलग अलग धातुओं से बनी मूर्तियों को भी हम देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में। और उसके बाद जब धीरे धीरे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी बना, नगर बसने लगे, गाँव बनने लगे, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि अनेक उत्कृष्ट कलाओं के दर्शन हमें होते गए। अजंता की गुफाएं भारतीय कला के स्वर्ण युग के रूप में सामने आती हैं। जब आप देखते हैं कि बौद्ध विहारों में आप ऐसे कलाकारों के चित्रों को देखते हैं जिन्होंने शायद कला का कहीं कोई प्रशिक्षण नहीं लिया, शिक्षा नहीं ली, लेकिन वो चित्र आज भी विश्व में प्रसिद्ध हैं और उत्कृष्ट शैली के चित्र माने जाते हैं। अपभ्रंश काल भारत की सभ्यता में, भारत की संस्कृति में एक ऐसे वक्त का दर्शन कराता है जब बाहरी आक्रमण भारत पर हुए और धर्म और दर्शन की रक्षा के लिए चित्रों का निर्माण पुस्तकों में होने लगा और अधिक संख्या के कारण चित्रों में गिरावट हमें दिखाई दी। इसके बाद राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी और उसके बाद बंगाल स्कूल तक आते आते आप पहचान

ये बहुत ही एक एक क्षण में कि किस प्रकार कला ने तत्कालीन समाज को, तत्कालीन परिस्थितियों को अपने चित्रों में, अपनी मूर्तियों में दिखाया। बंगाल स्कूल जो भारत में पुनर्जागरणकालीन कला के रूप में माना जाता है, जिस वक्त पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और उस वक्त कलाकारों ने भी अपनी कला के माध्यम से उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया और कला के माध्यम से बताया कि हम अपनी भारतीय संस्कृति के पुनः संरक्षण और संवर्धन के लिए सजग होंगे और संपूर्ण विश्व को ये एक संदेश देंगे कि भारतीय संस्कृति कितनी महान और प्राचीन है। धीरे धीरे जब कला ने अंतर्राष्ट्रीय रूप प्राप्त किया और अनेक माध्यम, संचार के माध्यम विकसित हुए और सभी कलाकारों से कलाओं का आपस में आदान प्रदान प्रारंभ हुआ, तो आधुनिक कला का रूप सामने आया जहां उसने एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त किया। और वर्तमान समय की जो एक भागदौड़ है, जो भौतिक लिप्सा है, भोगवादी प्रवृत्ति है, युद्ध है, उन्माद है, ये तमाम पहलू हमें आधुनिक कला में दिखाई देते हैं, आधुनिक काल के रूप में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कला मानव के विकास के साथ साथ कला का विकसित रूप हमारे सामने आता रहा। यदि हम प्राचीन भारत में कला का स्वरूप कैसा रहा इन संदर्भों को देखें, तो हम ये देखते हैं कि प्राचीन भारत में वैदिक काल से ही कला को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहा। ऋग्वेद में हम देखते हैं कि कला परमेश्वर का ही तत्व रूप है, ऐसा वर्णन वहां किया गया। भरत मुनि ने जब नाट्य शास्त्र लिखा तो उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि न तज ज्ञानम न तज शिल्पम न सा विद्या न सा कला, अर्थात कोई ज्ञान, कोई शिल्प, कोई विद्या ऐसी नहीं है जो कला ना हो, और नाट्य में इन सभी का प्रयोग होता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया कि शिल्पों में संसार का ही प्रतिरूप होता है। कह सकते हैं हम कि कला समाज का दर्पण है, जो आज हम कहते हैं, शतपथ ब्राह्मण ने उसे शताब्दियों पहले प्रतिपादित किया। तैतरीय उपनिषद की बात करते हैं तो वहां हम देखते हैं कि दिवात शिल्पम अवतरम, अर्थात शिल्प जो है स्वर्ग से उतरा, यानी स्वर्ग से उतरी है कला, और इस प्रकार ईश्वरीय रूप कला का तैतरीय उपनिषद हमारे सामने रखते हैं। भारत में कला को आध्यात्मिक, दार्शनिक रूप में अधिक संदर्भित किया गया। काव्यादर्श में प्रख्यात दार्शनिक दंडी कहते हैं, कला कामर्थ सश्रया। और जब भर्तृहरि, जो प्रसिद्ध संस्कृत नाट्यकार रहे हैं, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया कि साहित्य संगीत कला विहीन, अर्थात कला से विहीन मनुष्य पृथ्वी पर साक्षात पशु के समान है। वात्स्यायन ने कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन किया, और जिसमें साहित्य, संगीत, मूर्ति कला, चित्रकला, नृत्य कला के साथ साथ वस्त्र पहनना, केश संवारना, खाना बनाना, बोलना, जीवन के समस्त कार्यों में कला की महत्ता को बताया और कहा कि संपूर्ण जीवन कलामय है। जीवन की कोई भी क्रिया कला मुक्त नहीं हो सकती। आप कोई भी कार्य जीवन का कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, यदि उसमें कलात्मकता है, कुशलता है, तो वह श्रेष्ठ क्रिया होगी और आपके जीवन को भी उत्कृष्टता प्रदान करेगी। जब हम कला और कौशल विकास की बात करें, तो जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा कि कला शब्द कौशल से, कुशलता से जुड़ा है। कोई भी क्रिया जो कुशलता से की गई है, उसे हम कला के रूप में संदर्भित मान सकते हैं। वैदिक काल में शिल्प शब्द का प्रयोग कला तथा उद्योगों के लिए समान रूप से प्रयोग होता था। जर्मन भाषा में जब हमने बात की कि इसके लिए कुंस्त शब्द प्रयोग किया गया, तो कुंस्त शब्द का जो अर्थ है वह कुशलता पूर्वक की गई क्रिया ही है। व्यक्ति में कौशल विकास को तीव्र करने के लिए किसी भी कला की साधना और अभ्यास आवश्यक है। आज तकनीक व सौंदर्य शास्त्रीय नियम मिलकर जीवन को सरल

0: व सुंदर दोनों ही बना रहे हैं। कला और विज्ञान का श्रेष्ठ उदाहरण आप कंप्यूटर पेंटिंग के रूप में देख सकते हैं, और आज तो एआई के माध्यम से कला ने अपने नए ही रूप को धारण कर लिया है, जहां प्रतिदिन आप एक नई दुनिया का दर्शन करते हैं। कलात्मक कौशल व्यक्ति के रोजगार के नवीन अवसर भी प्रदान कर रहा है। उत्तराखंड के संदर्भ में आप देखेंगे तो आप एपण कला का उदाहरण देख सकते हैं। धार्मिक उत्सवों और घर पर सजाने वाली कला, जिसे उत्तराखंड की लोक कला के रूप में जाना जाता है एपण, आज अनेक कलाकारों के जीवन यापन का माध्यम बन रही है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया कि कला को कौशल के साथ, कुशलता के साथ जोड़ा गया, और जब कलाकार ने ऐसा किया तो निश्चित ही उसे प्रशंसा भी मिली और बाजार भी मिला, जहां वो अब स्वयं को आत्मनिर्भर बना पाया। जब आपकी कला के माध्यम से एस्थेटिक सेंस अर्थात सौंदर्यात्मक दृष्टि विकसित होती है, तो आप अपने गुण को, कौशल को निखारते हैं, संवारते हैं, और कला कौशल विकास के साथ साथ सामाजिक विकास का आधार बनती है। आज संपूर्ण विश्व में कला और कौशल संयुक्त रूप से नए समाज का निर्माण कर रहे हैं, और भारत भी, भारत के कलाकार भी उससे पीछे नहीं हैं। आज कला कौशल आपके सम्मुख एक ऐसे नए कलात्मक संसार का आधार रखते हैं, जहां आप आनंदित भी हो सकते हैं और अपने जीवन को भी सुंदर बना सकते हैं, साथ ही साथ एक विकसित समाज का आधार भी आप निर्मित करते हैं।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना हिंदी वार्ता कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर ममता सिंह द्वारा वार्ता। विषय था ललित कलाओं का कौशल विकास में योगदान। श्रोताओं, आपको याद दिलाते चलें, आज रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम कवि गोष्ठी। प्रतिभागी होंगे मीरा शर्मा, श्री दीपक अरोड़ा एवं श्री राकेश जैन। साथ ही रात्रि 10:30 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। इसके साथ ही साथ श्रोताओं, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कल सुबह 11 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का, और साथ ही साथ रात्रि 10:30 बजे कल पुनः आपकी पसंद का कार्यक्रम आपकी फरमाइश रात्रि 10:30 बजे। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। रात्रि के 8:15 होने को है, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत हरिहरन के स्वर में गीत।

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आपने सुने हेमंत कुमार के स्वर में गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून के कार्यक्रम FM 100.5 MHz पर। आइए फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुनते हैं गीतकार इरशद कामिल के इस गीत को, जिसे संगीतबद्ध किया है AR रहमान ने, स्वर दीपाली सहाय का, और फिल्म है मैं वापस आऊंगा।

आशा भोसले और उदित नारायण के स्वर में आपने ये गीत सुना। फिल्म थी प्यार तो होना ही था, संगीत जतिन ललित का और गीत लिखा था समीर अनजान ने। और साथ ही आइए अगला गीत सुनते हैं। एक बार पुनः गीतकार हैं समीर, संगीत पद किया है संजीव दर्शन ने, स्वर है कुमार सानू का, फिल्म है दीवाने।

0: कुमार सानू, अलका याग्निक और उदित नारायण के स्वर में आपने ये गीत सुना फिल्म दीवाने से, और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। समय हो चला है समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी।

0: आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरि ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
4: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
5: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
6: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए, और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
7: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
8: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच आईएमडी ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ. जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ. अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों

0: भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askar के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6th स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Jakarta on the first leg of his three-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Prime Minister Modi pays tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, says his vision continues to guide modern India. Ram Janmabhoomi Tirth Trust accepts resignations of General Secretary Champat Rai and Trust member Dr. Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as Interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. Huge crowd gathers in Tehran to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in round of 16 match at Arlington in US tonight. Prime Minister Narendra Modi arrived in Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated the relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A report from a correspondent from Jakarta covering Prime Minister's visit.
2: a vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances were organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. Members of the Indian diaspora also greeted him enthusiastically. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. The discussions are expected to focus on strengthening cooperation in trade, investment, defense, maritime security, digital technology and cultural exchanges, further reinforcing the comprehensive strategic partnership between India and Indonesia. Speaking to Akashvani, members of the Indian diaspora expressed excitement over the Prime Minister's visit and voiced confidence that it would further strengthen bilateral ties and create new opportunities for trade and investment. Shrindip Andashgupta, Jakarta, Indonesia.
1: Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of the 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said the thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India.
3: आज देश की धरती पश्चिम बंगाल की धरती अपने एक महान सपूत एक महान देशभक्त भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: The Prime Minister said Dr. Mukherjee fiercely opposed the talk of two constitutions, two prime ministers and two flags in the country. He said Shyama Prasad Mukherjee understood very well that the essence of nation building is in the building of institutions. He said Dr. Mukherjee laid the foundation for such national institutions which became India's economic strength for decades to come. Union and Home Minister Amit Shah participated in the 125th birth anniversary program of Shyama Prasad Mukherjee in Kolkata. We have more from a correspondent.
4: The whole nation is celebrating the 125th birth anniversary of Shyama Prasad Mukherjee. On this occasion, Union Home Minister Amit Shah joined a chain of events in Kolkata. Home Minister Amit Shah visited Shyama Prasad Mukherjee's ancestral home in Kolkata and paid his tribute. Before this, he participated in the groundbreaking ceremony for erecting 125 feet statue of Shyama Prasad Mukherjee. Earlier in the morning, West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari paid floral tributes at the statue of Shyama Prasad Mukherjee in an event at Red Road in Kolkata. Kollan Laha for Akashvani News, Kolkata.
1: Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav today laid the foundation stone of the Dr. Shyama Prasad Mukherjee Smart Industrial Park in Sadgari, Bhopal. More than 200 leading industrialists and investors from across the country attended the event. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has accepted the resignations of